मीडियम वेव 254.45 मीटर अर्थात 1179 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही साथ मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पे। ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 19वीं तिथि। तदनुसार 9 जून सन 2026 हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है। श्रोताओं, स्वीकारें हमारा नमस्कार।

हम आकाशवाणी रीवा से बोल रहे हैं। प्रातः 6 बजने वाले हैं। सुनिए समाचार अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर देश भर में विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को की थी। इसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और अच्छी गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्षों में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब भारत के 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हैं। इससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि यह पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक के लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुई आग की दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमारस्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। यह फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया है। हालांकि दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष संघर्ष विराम चाहते हैं और शांति वार्ता जारी है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि उनका देश कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के प्रति प्रतिबद्ध है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेनू कटारिया। Union Home Minister Amit Shah will launch the Land Port Management System LPMS in New Delhi today. This initiative reflects the government's commitment to smart border management, aiming to enhance efficiency, transparency and security in cross-border trade and passenger movement through technology-driven solutions. In Andhra Pradesh, 8 people succumbed to their injuries while 6 others were injured in a major fire accident at the Visakhapatnam steel plant of Rashtriya Ispat Nigam Limited yesterday evening. The accident occurred at around 4:15 p.m. during casting operations at Caster 2 of Steel Melt Shop 1. The injured have been admitted to the hospital and are undergoing treatment. Rashtriya Ispat Nigam Limited has initiated an investigation into the accident. In addition, a 3-member external inquiry committee headed by the director in charge of the Bokaro steel plant of Steel Authority of India Limited has been assigned to probe the incident. Union Steel Minister H.D. Kumaraswamy and Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu visited the Visakhapatnam steel plant accident site last night. Mr. Kumaraswamy announced a compensation of 25 lakh rupees for the kins of the deceased and 10 lakh rupees for the injured. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives in the fire incident. President Murmu extended her condolences to the families of those who lost their lives in the accident. Vice President C.P. Radhakrishnan prayed for the strength and courage to the bereaved families and wished for the speedy recovery of those injured. Prime Minister Modi has announced an ex gratia of 2 lakh rupees for the next of kin of each of the deceased and 50,000 rupees for the injured from the Prime Minister's National Relief Fund. He noted that the local authorities are providing all possible assistance to those affected. Iran and Israel have announced a halt in attacks against each other following an appeal by US President Donald Trump for an immediate ceasefire. However, Tehran has warned that it will resume military action

हम आकाशवाणी के रीवा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः 6:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम सुप्रभातम। आरंभ करते हैं देशगान से।

समूह स्वर में आप सुन रहे थे देश की महिमा का गान। अब प्रस्तुत है हरिओम शरण के स्वर में सुप्रभातम का अगला भजन, रचना रविदास की।

0: आप सुन रहे थे असित देसाई से नरसी मेहता का भावपूर्ण भजन। इस अंतिम प्रस्तुति के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम सुप्रभातम संपन्न हुआ। मीडियम वेव और मोबाइल एप्लीकेशन पे ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। प्रातः 6:35 हुए हैं। समय है खेती किसानी से संबंधित विषयों पर जानकारी का कार्यक्रम कृषि संगीत के अंतर्गत। आज का विषय है फल वृक्षों की उन्नत प्रजातियां।
1: भैलो, आज कृषि संकेत में फल वृक्षन के उन्नत प्रजाति के बारे में जिन बहिले आम। आम के उन्नत प्रजातिन में बम्बई हरा, पीला, गोपाल भोग, गुलाब खास, हिमसागर, स्वर्णरेखा आदि जो उन्हें तो अंग्रेजी फसलन वाली प्रजातियाँ ही मध्यम फसल दे वाली प्रजातिन में सुंदरजा, दशहरी, लंगड़ा, जरदालू, कृष्ण भोग, हुस्ने आरा, अलकांसो और बदामी हबुस मुख्य रूप। पिछली फसल दे वाली प्रजाति में चौसा, नीलम, फजली, निशान और गुलभोग हैं। हर साल फसल वाली जाति में नीलम, मल्लिका और आम्रपाली किस्म विकसित हो गई हैं। यह मेर से दूसर जाति के जैसे समानी जौन देर से औती हैं और अचार के खातिर बहुत उपयुक्त होती हैं। निरंजन आम के एक ठे ऐसा प्रजाति है जौन बेमौसमी हैं। इनखर वृक्ष जून जुलाई में नियमित करत हैं और फल अक्टूबर में तोड़े लायक हो जात। अमरूद, अमरूद के उन्नत प्रजाति में इलाहाबादी, सफेदा, रूरदार लखनऊ 49, बेहर कोकोनर सहारनपुर से विकसित हैं। सुडीन माइल्ड फ्ले डस्ट जेली बनाने के खातिर यह निकही होती। चित्तीदार इलाहाबादी, बेदाना नागपुर से है, बेदाना सहारनपुर, नासिक में भंडारण क्षमता अधिक है। सफ़ेद जाम इलाहाबाद के, कोहरी सफेदा, इलाहाबादी सफेदा, ग्वालियर 27 मुख्य रूप से हैं। कटहल, कटहल के कौनो स्थायी किस्म नहीं आए। मुलायम गूदा वाली किस्म में ख्वाजा उत्तर प्रदेश के, कड़े गूदे वाली किस्म में रुद्राक्षी दक्षिण भारत में और सिंगापुर श्रीलंका में मिलती हैं। नींबू, नींबू वर्गीय फलन के अंतर्गत मुख्य रूप से संतरा, माल्या, लेमन, लाइम और मौसमी के खेती की जाती। संतरा के किस्म में ख्वाजी, कुर्ग, किन्नो और बुटवल मुख्य रूप से हैं। माल्टा के किस्म में हेमलिन, माल्टा, कामन, पाइन, एबिल, बैलेंसियन, लेट और बल्ड रेट। नींबू के किस्मन में तंत लेमन, सील्डलेस लेमन, कागजी काला खट्टा नींबू, बत शंकर राजा मुंदरी खट्टा नींबू मुख्य रूप से हैं। पपीता, पपीता के उन्नत प्रजाति में पूसा नन्हा, पूसा डवार्क, पूसा डिलीसियस, बत पपीता, पूसा मैजिस्टी, पूसा जाइंट्स, बड़वानी पीला मुख्य रूप से हैं। बेर, बेर के उन्नत प्रजाति में बनारसी, बेकाटा, दंदन, जोगिया, उमरान, कैथली और दूधिया हैं। अनार, अनार के उन्नत किस्म में होलका, गणेश, पेपर सेल, स्वेनीरू, रूबी मुख्य रूप से हैं। आमला, आमला के उन्नत प्रजाति में बनारसी, कृष्ण, NA9, कंजन, चकैया, डैसिस, हवी झूल, नरेंद्र आमला 7, फासिस वृक्ष के चयन जौन है तो प्रतापगढ़ से लीनगा रहा। यह मेर से जौन है तो फलदार वृक्षन के निकही प्रजाति हैं।
0: अभी कृषि संकेत का प्रसारण हो रहा था। प्रातः 6:40 हुए हैं। आइए अब सुने रामचरितमानस से पाठ। स्वर अनुराधा पौडवाल का।

सीता जी की माता के मन में संशय पैदा हुआ कि देखने में सुकुमार बालक राम उस प्रचंड धनुष को कैसे तोड़ सकेंगे। इस पर राम जी के महत्व को जानने वाली एक चतुर सखी ने रानी को समझाया, हे रानी, तेजस्वी व्यक्ति देखने में छोटा हो सकता है, किंतु वो वस्तुतः छोटा नहीं होता। मतवाले गजराज को छोटा सा अंकुश अपने वश में कर लेता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता जिस मंत्र के वश में हैं, वो भी तो अत्यंत छोटा होता है। इसलिए देवी, संदेह त्याग दीजिए। सखी के वचन सुनकर रानी की उदासी मिट गई और विश्वास बढ़ गया। उधर उसी समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से विभिन्न देवताओं से विनती करने लगी। अपने हृदय की बढ़ती व्यग्रता को पहचान कर सीता जी सकुचा गईं और सोचने लगी कि यदि तन मन वचन से मेरे चित्त की श्री रघुनाथ जी के चरणों में अनुरक्ति है तो वे मुझे अवश्य अपनाएंगे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने निश्चय कर लिया कि या तो वे श्री राम को ही वरेंगी अथवा स्वयं का अस्तित्व ही समाप्त कर देंगी।

अनुराधा पौडवाल के स्वर में आप सुन रहे थे रामचरितमानस से पाठ। ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। प्रातः 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

0: आज प्रातः 7:30 पे सुनिएगा समसामयिक घटनाओं पर आधारित हमारा दैनिक स्तंभ आज सवेरे, जिसका अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करते हैं। प्रातः 9:30 पे प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम शब्द सागर। प्रातः 10 सुनिएगा जिले की चिट्ठी। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
2: 8700001424।

किसान भाइयों का अपना कार्यक्रम चौपाल प्रसारित होगा सायं 7:21 पर। फिल्म संगीत का प्रसारण होगा प्रातः 7:20 पर और 8:30 पे।

आज 8:30 में फिल्म संगीत के अंतर्गत आप आनंद ले सकेंगे देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्मी गीतों का, सुगम संगीत का आनंद लिया जा सकेगा प्रातः 10:05 पे। श्रोताओं, हमारे केंद्र से प्रसारित कार्यक्रमों के साथ साथ आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र एवं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से जानकारी व मनोरंजन से भरपूर विविध कार्यक्रम सुने जा सकेंगे।

0: इसी के साथ कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। प्रस्तुत हैं संस्कृत भाषा के समाचार, जिनका अनुप्रसारण आकाशवाणी से, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।
1: संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। राष्ट्रपति भवने गतसायं आयोजितस्य रक्षा अलंकरण समारोहस्य समये राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः शौर्य पुरस्कारान् प्रदत्तवती। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन वर्यः, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः, अन्ये केन्द्रीय मंत्रिणः, सशस्त्र सेनायाः वरिष्ठाधिकारिणश्च अस्मिन् अवसरे उपस्थिताः आसन्। राष्ट्रपतिः समारोहस्य समये रक्षा सैन्य दलानां, केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षक बलानां, राज्य केन्द्र शासित प्रदेशयोः आरक्षकेभ्यश्च 7 कीर्तिचक्राणि, 15 वीरचक्राणि, 39 शौर्यचक्राणि च प्रदत्तानि। जम्मूनगरस्य अन्तर्राष्ट्रिय सीमायां कर्तव्यपारायणतावधौ प्राणत्यागं कृतवन्तौ बीएसएफ इत्यस्य आरक्षकं दीपक चिंगखम इत्यमुम, उपनिरीक्षकम मोहम्मद इम्तियाज इत्यमुम च मृत्योपरांतम वीरचक्रम प्रदत्तम। आंध्र प्रदेशे गतसायं राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड इत्यस्य विशाखापत्तनम स्टील प्लांट इत्यत्र महते अग्निदुर्घटनायां 8 जनाः मृताः, अन्ये 6 जनाः च व्रणिताः अभवन्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन वर्यः, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू च अस्यां दुर्घटनायां मृत जनानां प्रति शोकं प्रकटितवन्तः। एतदतिरिच्य प्रधानमंत्रिणा प्रत्येकस्य मृतकस्य निकटवर्ति सदस्यस्य कृते 2,00,000 रूप्यकाणां, व्रणितानां कृते 50,000 रूप्यकाणां च अनुग्रह राशेः घोषणा कृता। केन्द्रीय गृहमंत्री अमितशाहः अद्य नवदिल्ल्यां भूपत्तन प्रबंधन व्यवस्थायाः LPMS इत्यस्य उद्घाटनं करिष्यति। गृहमंत्रालयेन उक्तं यत् LPMS इत्यस्य आरम्भः भारतस्य आधुनिक तंत्रज्ञान सक्षम सीमा प्रबंधन व्यवस्थायाः कृते महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। 47-2,000 वर्षपर्यन्तं व्यापारसौकर्यं, सम्पर्कं, राष्ट्रियसुरक्षां, विकसितभारतस्य दृष्टिकोणं च सुदृढं कर्तुं लक्ष्येन सह एतत् मञ्चः संरेखितः अस्ति। केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मलासीतारामनः पश्चिमबङ्गस्य विकासयात्रां त्वरितं कर्तुम् उपायेषु विचारं कर्तुं पश्चिमबङ्गस्य मुख्यमन्त्रिणा शुभेन्दु अधिकारिणा सह नवदिल्ल्यां मेलनं कृतवती। राज्यविभिन्नेषु क्षेत्रेषु ऋणप्राप्तिविषये, सर्वकारस्य योजनानां कार्यान्वयनस्य विषयेऽपि चर्चा जाता। वित्तमन्त्री सीतारामनः अघोषयत् यत् राज्यसर्वकारेण सह निकटसमवायेन प्रधानमन्त्री मुद्रायोजना, प्रधानमन्त्री जनधनयोजना, प्रधानमन्त्री जीवनज्योति बीमायोजना, प्रधानमन्त्री सुरक्षाबीमायोजना, अटल पेन्सन योजना, प्रधानमन्त्री स्वनिधि योजनादीनां नवीकृत सन्तृप्ति अभियानं प्रत्येकं योग्यं लाभार्थिम् आच्छादयितुं क्रियते। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः उक्तवान् यत् नवान्वेषणैः वैश्विक सहभागित्वेन अन्ताराष्ट्रिय आपणे प्रवेशस्य विस्तारेण च आगामिषु 5 वर्षेषु भारतस्य औषध निर्माण उद्योगस्य आकारः द्विगुणितः भविष्यति। श्रीगोयलवर्यः ह्यः नवदिल्ल्यां फार्मास्यूटिकल क्षेत्रस्य वैश्विक राजदूतसम्मेलनं 26,000 ग्लोबल ड्रग रेगुलेटर्स कॉन्क्लेव तथा 26,000 फार्मा एंड हेल्थ केयर इत्यस्य अन्ताराष्ट्रिय प्रदर्शन्याः पूर्वालोकन समारोहं च सम्बोधयन् इदमुक्तवान्। केन्द्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी वर्यः अवदत् यत् नरेन्द्र मोदिनः सर्वकारस्य 12 वर्षेषु भारतस्य अंगारखनन क्षेत्रयोः महतीं परिवर्तनम् अभवत्। महिला क्रिकेट क्रीडायां यूनाइटेड किंगडम देशस्य कार्डिफ नगरे 28,000 वर्षस्य आईसीसी महिला 20-20 विश्व चषक क्रीडायाः प्राक् ह्यः प्रथमायां पूर्वाभ्यास क्रीडायां भारतेन वेस्ट इंडीज दलं 26 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्ष में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में कल फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हो चुके हैं, जिससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। असम की प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई के लिए रवाना की गई है। श्री गोयल ने कहा कि इस साल से तेजपुर लीची को वैश्विक पहचान मिलेगी, किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त होगा और पूर्वोत्तर भारत के कृषि उत्पादों के लिए नए अवसर खुलेंगे। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हुए हैं। इनमें 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार ये हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमारस्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने भी मुख्य सचिव, जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। दुर्घटना की जांच जारी है। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक संपन्न हो गई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले शामिल थीं। अमरीका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की 5 दिवसीय बैठक आज से इंदौर में। खेती किसानी पर होगा मंथन। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर आज प्रदेश भर में आयोजित होंगे विशेष मातृत्व स्वास्थ्य शिविर। HPV टीकाकरण अभियान में मध्य प्रदेश शीर्ष राज्यों में शामिल। और प्रदेश के कई जिलों में प्री मानसून गतिविधियों ने पकड़ा जोर। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की 5 दिवसीय बैठक आज से इंदौर में शुरू होगी। इसमें 20 देशों के कृषि मंत्री और अधिकारी शामिल होंगे। कल भोपाल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस आयोजन को भारत और विशेष रूप से इंदौर सहित मध्य प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण अवसर बताते हुए इसकी रूपरेखा साझा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अध्यक्षता में हो रहा यह आयोजन खाद्य सुरक्षा, सतत कृषि, छोटे किसानों के सशक्तिकरण और कृषि नवाचार जैसे वैश्विक मुद्दों पर ठोस दिशा तय करेगा।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि सुरक्षित मातृत्व प्रत्येक महिला का अधिकार है। राज्य सरकार गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रदेश की सभी गर्भवती महिलाओं और उनके परिजनों से अपील की है कि वे 9 जून को आयोजित विशेष प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान शिविरों में पहुंचकर निःशुल्क जांच, परामर्श और उपचार सुविधाओं का लाभ अवश्य लें। उन्होंने कहा कि गर्भावस्था दी समय पर जांच और उच्च जोखिम स्थितियों की शीघ्र पहचान से मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है और सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित किया जा सकता है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा है कि इस अभियान को जन आंदोलन के रूप में संचालित करते हुए प्रत्येक गर्भवती महिला तक गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाए, जिससे मातृ और शिशु मृत्यु दर में और कमी लाई जा सके। मध्य प्रदेश HPV टीकाकरण अभियान में शीर्ष राज्यों में शामिल है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने अभियान से जुड़े चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, ANM शिक्षकों, जिला प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें सफलता के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि अभियान राज्य की बेटियों को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाकर सुरक्षित भविष्य देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वास्थ्य अमले, सहयोगी विभागों की प्रतिबद्धता, सतत मॉनिटरिंग के परिणाम स्वरूप प्रदेश में 7.63 लाख से अधिक पात्र बालिकाओं का सफलतापूर्वक HPV टीकाकरण किया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व

0: अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग द्वारा उद्यम स्वरोजगार योजना में दी जाने वाली सब्सिडी व ऋण सहायता सुलभ और समय में देकर उसके उपयोग की निगरानी भी की जाए। विभाग अपनी विभागीय प्रक्रिया को पूरी कराने के अलावा संबंधित हितग्राही को बैंक से समुचित सब्सिडी ऋण दिलाने में भी हितग्राही का सहयोग करे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल विभाग की योजनाओं और गतिविधियों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को सरकार द्वारा दी जा रही छात्रवृत्तियां उसी वर्ष तय तारीख तक आवश्यक रूप से वितरित कर दी जाएं जिस वर्ष में वो छात्रवृत्ति दे है। विभागीय अधिकारी इसके लिए स्कूल शिक्षा उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों से बेहतर समन्वय करके काम करें। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर परिषद की सहमति ली जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव से हंस 2028 की तैयारियों के लिए गठित मंत्रिमंडलीय समिति और योजना तथा आर्थिक सांख्यिकी विभाग की बैठक भी लेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि मतदान सबसे पवित्र अधिकार है, उससे कोई भी पात्र मतदाता वंचित नहीं रहे। साथ ही कोई भी अपात्र मतदाता मतदान के अधिकार का उपयोग नहीं कर सके। उन्होंने भारतीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा में कहा कि नाम जोड़ने और हटाने का कार्य निर्धारित समयावधि में पूरा करें। प्रारूप मतदाता सूची में दावे आपत्ति 15 जून तक लिए जाएंगे। दावे आपत्तियों का निराकरण 25 जून तक किया जाएगा और फोटोयुक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 18 जुलाई को किया जाएगा। प्रदेश में जलगंगा संवर्धन और सतत पर्यावरण प्रबंधन के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान संचालित किया जा रहा है। इसको वैज्ञानिक तथा तकनीक आधार प्रदान करने की दिशा में मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जल स्रोतों के संरक्षण, पुनर्जीवन और भूजल प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से मेपकास द्वारा विभिन्न वैज्ञानिक दस्तावेज और एटलस तैयार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जलगंगा संवर्धन अभियान वर्ष 2026 के अंतर्गत मेपकास द्वारा उपग्रह छायाचित्रों पर आधारित महत्वपूर्ण वैज्ञानिक दस्तावेज भूजल एटलस अंतर्जली तैयार किया गया है। इसके तहत भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर जिलों के भूजल एटलस तैयार कर संबंधित विभागों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे भूजल प्रबंधन और जल गुणवत्ता का आकलन प्रभावी होगा। क्रिकेट में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 से पहले खेले गए अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। ब्रिटेन के कार्डिफ में कल खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। भारत का अगला अभ्यास मैच कल मेजबान इंग्लैंड से होगा। वहीं विश्व कप में भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत रविवार को एजबिस्टन में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से करेगी। प्रदेश के कई जिलों में प्री मानसूनी गतिविधियां जोर पकड़ चुकी हैं। मौसम विभाग ने राज्य के ग्वालियर, सागर, शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर, भोपाल संभागों के कई जिलों में आंधी, गरज चमक और बारिश का अलर्ट जारी किया है।
2: मौसम यही साथियों में रोज सुंदर में के अनुमान है की प्रदेश में सीधा जुड़ते हैं।
0: अब कुछ समाचार संक्षेप में।
2: धन्यवाद सर। आपका नाम?
0: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे होने के अवसर पर आज कंडवा और श्योपुर जिलों में हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष प्रसव पूर्व जांच शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। आगर मालवा
2: आज मेरा सर के बोर्ड में कितने कैंडिडेट
0: को निर्देश दिए हैं कि जिले में प्राकृतिक और जैविक खेती के रकबे में वृद्धि के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। मंदसौर में मिशन समीक्षा बैठक आयोजित की गई। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत विभाग में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। धार जिले में आगामी दिनों में विभिन्न धार्मिक

0: रहा फिर
1: त्योहार
0: लंच ब्रेक के
1: जुलूसों
0: बाद
1: के
0: इंटरव्यू?
1: संबंध में
0: बढ़िया रहा
1: अतिरिक्त
0: सर, ऐसे कोई
1: संबंध में अतिरिक्त
0: क्या
1: जिला
0: क्या प्रश्न
1: दंडाधिकारी
0: बने
1: ने
0: आप जैसे
1: आगामी
0: इंटर
1: कानून
0: किए
1: व्यवस्था और
0: यार।
1: लोक शांति बनाए रखने
0: बस
1: के
0: आइए
1: लिए
0: बैठिए, बोला उन्होंने,
1: प्रतिबंधात्मक
0: उसके बाद में
1: आदेश
0: बैठ
1: जारी
0: गया।
1: किए हैं।
0: और उसके बाद
1: शिवपुरी
0: में
1: जिले
0: मेरा
1: में
0: सर ने सिर्फ
1: कलेक्टर
0: दो ही
1: अर्पित
0: प्रश्न पूछे
1: परमार ने
0: मुझसे,
1: नवीन
0: उसके बाद
1: तहसील और
0: में
1: एसडीएम
0: क्या प्रश्न
1: कार्यालय का
0: पूछे।
1: औचक निरीक्षण
0: मेरा सर ने
1: किया।
0: बोला कि आपने
1: कटनी में भी
0: बीएससी के बाद
1: मलेरिया
0: एमए क्यों
1: निरोधक
0: किया
1: माह के अंतर्गत
0: और
1: जिले में
0: शोध
1: जनजागरूकता
0: का विषय
1: बढ़ाने के
0: गीतांजलि
1: उद्देश्य
0: श्री है, तो
1: से
0: ये गीतांजलि श्री
1: मलेरिया
0: कौन है
1: जागरूकता रथ को
0: उनके बारे में
1: रवाना
0: उन्होंने
1: किया
0: मुझसे
1: गया।
0: पूछा, तो
1: डिंडोरी
0: मैंने
1: जिले
0: उनको
1: के
0: बता
1: ग्रामीण
0: दिया।
1: क्षेत्रों में
0: यानी कि
1: पेयजल
0: शोध
1: व्यवस्था
0: का
1: को
0: आपका जो भी
1: सुदृढ़ बनाने
0: टॉपिक
1: के
0: है
1: उद्देश्य
0: और जो
1: से
0: पर्सनैलिटी
1: समस्या
0: उससे जुड़ी
1: ग्रस्त
0: हुई है, उसके
1: स्थान
0: बारे
1: में
0: में काफी
1: सार्वजनिक उपयोग
0: आप
1: हेतु
0: पूछे कि बिल्कुल, अगर
1: 46
0: आपने पीएचडी को
1: नवीन
0: मेंशन किया हुआ तो आपसे प्रश्न
1: नलकूप
0: 100%
1: खनन और
0: पूछे जाएंगे।
1: हैंडपंप स्थापना कार्यों की
0: और
1: स्वीकृति
0: फिर इसके
1: प्रदान
0: बाद
1: की गई
0: आगे
1: है।
0: एक्सपर्ट,
1: इस बुलेटिन में बस इतना ही।
0: आगे
1: अगला
0: एक्सपर्ट ने
1: बुलेटिन
0: फिर
1: दोपहर 2:10
0: हिंदी के एक
1: मिनट पर।
0: दो क्वेश्चन
1: नमस्कार।
0: पूछे उन्होंने, जैसे हिंदी में उन्होंने मुझसे भारतीय काव्य शास्त्र पे विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव सहयोगात्र भरत मुनि का जो रस सूत्र है उसके बारे में पूछा, साथ ही साथ अभिनव गुप्त जी ने जो टीकाएं लिखी है उनके बारे में मुझसे पूछा, और उसके बाद फिर पाश्चात्य काव्य शास्त्र से एक दो प्रश्न हुए हैं, और उसके बाद में उन्होंने पुनः जो
1: मोबाइल
0: दूसरे मेंबर थे
1: एप्लीकेशन
0: उन्होंने
1: न्यूज
0: जैसे
1: ऑन
0: पीएचडी
1: एआईआर और
0: विषय
1: मीडियम
0: मुझसे
1: वेब
0: पूछा
1: पर ये
0: कि
1: आकाशवाणी का
0: शोध क्या होता है,
1: अभिवकील
0: शोध
1: है।
0: प्रविधि क्या होती है, शोध प्रविधि में विषय
1: प्रातः
0: कौन कौन से
1: सात
0: होते
1: बज
0: हैं
1: के 20 मिनट
0: और
1: हुए
0: इसका
1: हैं।
0: क्रम क्या है, शोध समस्या की पहचान करना, परिकल्पना, निर्माण, ये सब सारी चीजें उन्होंने मुझसे पूछी जो कि मैंने उनको
2: आपका पीएचडी भी चल रहा है।
0: जी पीएचडी चल रहा है मेरा।
2: मतलब जिनका पीएचडी चल रहा है शोध से संबंधित चीजें तो अच्छे से रिसर्च स्टेप रिसर्च के प्रकार जो भी
0: टाइप्स ऑफ रिसर्च रिसर्च मेथोडोलॉजी और उसमें आपने किस प्रकार की पद्धति का उपयोग किया है वो सब सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़ना है, और साथ ही साथ जो भी आपका विषय है उस विषय को बहुत गंभीरता से पढ़ने की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि
3: मेरे प्यारे
0: वो
3: देशवासियों
0: एकदम से आपके शोध के शीर्षक से न पूछकर आपने जो काम किया है उसके अंदर वो पूछना चाह रहे हो कि
2: एक्चुअल वर्क आपने परफॉर्म
0: किया, जो एक्चुअल वर्क परफॉर्म किया है कि इसके भविष्य में क्या उपाध्यता हो सकती है, कैसे क्या है समाज को, मतलब आपका शोध किस प्रकार प्रभावित करेगा, कैसे परिवर्तन लाएगा, ये सारी चीजें उन्होंने मुझसे पूछी,
3: जिसका पहला शब्द ही
0: और फिर आगे मुझे एक दूसरे
3: भावनाओं का उफान लगा।
0: भाषा विज्ञान के बारे में पूछा, उन्होंने पूछा भाषा क्या होती है, और
3: इस
0: उसके बाद में उन्होंने भाषा विज्ञान एमए के मेरे जो सारे विषय थे
3: ऊर्जाएं
0: उन सभी
3: सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है, यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, हमें ऐसा ही भारत बनाना। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा, इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव #वंदेमातरम150 के साथ जरूर भेजिए #वंदेमातरम150। मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।

0: इस पारंपरिक रागमाला को हमने अपने श्रोताओं के लिए चुना था फिल्म बाजार से। आवाज उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान, शाहिदा खान और रूना प्रसाद की। संगीत खयाम का।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
2: सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी रीवा है। प्रातः 7:30 हुए हैं। सुनिए दैनिक कार्यक्रम आज सवेरे, अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
5: विशाल सर।

0: मैंने आपकी डायबिटीज वाली काफी वीडियोस देखी हैं, मोस्टली बिकॉज मेरे डैड को पिछले 16 साल से डायबिटीज है और काफी कुछ ट्राई करा बट ऐसा कुछ फर्क ही नहीं आया।
1: ओके, और उसको रिवर्स करने के लिए आप क्या कर रहे हो?
0: सर, मेडिकेशन चल रही है और काफी डॉक्टर विजिट्स चल रहे हैं, रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है, बट समझ ही नहीं आ रहा कुछ।
1: नहीं, मैंने पूछा उसको।

0: 20 साल से डायबिटीज है।
1: नमस्कार, आदाब और सुप्रभात। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह की ताजगी से भरा आपका अपना पसंदीदा न्यूज मैगजीन कार्यक्रम आज सवेरे। श्रोताओं, नई सुबह हो चुकी है, कल की नाकामियों को भूलकर आगे बढ़ने का वक्त है, क्योंकि असद भोपाली साहब कह गए हैं रास्ता साफ है और शौके सफर जिंदा है, हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो शहर जिंदा है। तो उठिए और अपने सफर पर निकलिए। और असद भोपाली साहब की बात हो ही गई है तो बता दें कि आज का हमारा ये सफर बेहद खास है, क्योंकि आज हमारे कार्यक्रम के आखिरी सेगमेंट में असद भोपाली साहब के साथ साथ कई प्रमुख हस्तियों के नाम हैं। इससे वीरता, संघर्ष, सुर और नारी शक्ति का एक ऐसा कारवां गुजर रहा है कि जिसे सुने बिना आप रह नहीं पाएंगे। हमेशा की तरह हम देश और दुनिया के मुख्य समाचार, मौसम का हाल और आज का इतिहास भी लेकर आए हैं। तो ज्ञान, वीरता, हौसले और सुरों के महासंगम में हमारे साथ बने रहे। कार्यक्रम आज सवेरे के इस अंक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त जया भारती, अपनी सहयोगी रेनू कटारिया के साथ। गुड मॉर्निंग रेनू।
2: गुड मॉर्निंग जया, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। एंड जया, यू हैव ऑलरेडी अपडेटेड आवर लिसनर्स अर्ली मॉर्निंग व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू हैव इन आज सवेरे इन दिस प्रोग्राम ऑफ हाफ एन आवर। बट फर्स्ट लेट अस बिगिन विद सम न्यूज एंड देन मूव ऑन टू द अदर सेगमेंट्स।
1: बिल्कुल
2: जी।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीक की सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।
2: India will host key meetings of the BRICS Agriculture Working Group and BRICS Agriculture Ministers in Indore, Madhya Pradesh from today till the 13th of this month. Addressing a press conference in Bhopal yesterday, Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan said, BRICS has become a powerful global platform. He said, BRICS nations hold around 42% of the world's agricultural land and also account for 45% of global food production. The meeting will be centered around farmers' income, employment, livelihood, agricultural credit and market access, food security, agricultural trade, climate adaptation and agri-innovation will be the key themes.
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे।
2: Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India's pharmaceutical industry is projected to double in size over the next 5 years, driven by innovation, global partnerships and expanding international market access. Mr. Goyal said this while addressing the Global Ambassador Meet on the Pharmaceutical Sector and the Curtain Raiser Ceremony of the Global Drug Regulators Conclave and International Exhibition of Pharma and Healthcare in New Delhi yesterday. He noted that India has signed 9 free trade agreements in recent years and now has trade agreements covering more than 50 countries, providing preferential market access across most of the developed world.
1: कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश के कोयला और खनन क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुआ है। हैदराबाद में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि भारत का कोयला उत्पादन रिकॉर्ड 1 अरब टन तक पहुंच गया है और देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक बन गया है। उन्होंने बताया कि कोयला क्षेत्र में लगभग

0: 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिला है।
1: Moving on to some international news, in the United States, a federal judge has ruled that the fee of $1 lakh for H-1B applications imposed by President Donald Trump was unlawful. U.S. District Court Judge Leo Sorokin in Boston, Massachusetts, said in a ruling that the policy imposes a tax on H-1B petitions without the requisite delegation by the Congress. U.S.-based Indian diaspora advocacy groups have welcomed the federal court's decision, contending that it was appropriate for preserving U.S. competitive edge in innovation and entrepreneurship. The H-1B program is one of the most sought-after U.S. work visas that allows American companies to hire skilled global talent. Trump's order proposing a UST of $100,000 annual fee per H-1B worker left many uncertain about visa reforms and new requirements.
0: और अब चलते हैं खेल जगत की ओर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने इंग्लैंड और वेल्स में होने वाले आगामी महिला T20 विश्व कप के लिए कमेंटेटर्स की सूची जारी कर दी है और इस बार कमेंट्री टीम में कई दिग्गज महिला खिलाड़ियों के नाम भी शामिल हैं, जिनमें भारत की पूर्व कप्तान मिताली राज, अंजुम चोपड़ा और वेदा कृष्णमूर्ति के नाम प्रमुख हैं। इनके साथ दिनेश कार्तिक और चेतन स्प्रू भी कमेंट्री पैनल का हिस्सा होंगे। महिला T20 विश्व कप का 10वां संस्करण शुक्रवार से शुरू होगा। उद्घाटन मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच बर्मिंघम के एस्बेस्टन मैदान पर खेला जाएगा।
1: एंड इन मेंस क्रिकेट, इंडिया ए विल टेक ऑन श्रीलंका ए इन द ओपनिंग मैच ऑफ द ट्राई नेशन ए सीरीज एट द रंगिरी डम्बोला इंटरनेशनल स्टेडियम इन श्रीलंका दिस मॉर्निंग। द मैच विल बिगिन एट 10 AM इंडियन टाइम। Tilak Verma, led Men in Blue, will be up against host Sri Lanka and Afghanistan in the triangular contest. India A will next face Afghanistan A at the same venue on Thursday. All the matches will be played in Dambulla, with the final match scheduled on 21st of this month.
0: और अब रुख करते हैं कुछ प्रमुख महानगरों का और जानते हैं वहां का हाल। तो शुरुआत चेन्नई से करें रेनू।
1: बिल्कुल करते हैं। एंड सम गुड न्यूज फ्रॉम चेन्नई मेट्रो। तमिलनाडु हैज रिकॉर्डेड 68 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स ऑफ प्रे अक्रॉस द स्टेट एज पार्ट ऑफ अ मेजर सर्वे एम्ड एट क्रिएटिंग बेसलाइन डेटा for long-term conservation. The study covered 49 forest divisions and involved 3,643 participants, including forest officials, researchers, and members of the Tamil Nadu Raptors Research Foundation. Surveys were conducted during both day and night. State Forest Secretary Supriya Sahu said the main goals were to establish data for long-term monitoring, identify key raptor habitats, and map their current distribution across the state.
0: अब समय है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के समाचारों का। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल दिल्ली में यमुना जीर्णोद्धार के मुद्दे पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि साफ और स्वच्छ यमुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का संकल्प है और सभी को मिलकर इसको जल्दी पूरा करना है। बैठक में तय किया गया कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष के अंत तक 99 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। अब तक 128 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन चुके हैं। श्री शाह ने बल देकर कहा कि यमुना जीर्णोद्धार परियोजना में कार्य प्रगति की हर 20 दिन में समीक्षा की जाएगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली की डेयरियों के अपशिष्ट को यमुना में जाने से रोकने के लिए दिल्ली नगर निगम और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जाएगा, जिससे अपशिष्ट गोबर गैस और खाद में तब्दील होंगे। इस बीच दिल्ली से एक और खबर है कि दिल्ली को स्वच्छ, हरित और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह समझौता कल लोक निर्माण विभाग, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के बीच हुआ। यह पहल धूल रहित सड़कों, शहरी हरियाली और वैज्ञानिक सड़क प्रबंधन को बढ़ावा देगा।
1: मूविंग ऑन टू बेंगलुरु मेट्रो जया, Karnataka Home Minister Priyank Kharge has directed senior police officials to issue notices to pubs, bars, breweries, clubs, restaurants and other liquor serving establishments to strictly prevent the sale of alcohol to underage individuals. The decision follows a study conducted in four educational institutions in Bengaluru involving more than 4,090 students. The study found that 33% of surveyed young adults consumed alcohol, while nearly 18% used tobacco, significantly higher than the national averages. The minister directed strict age verification at entry points and before serving alcohol, mandatory age proof checks, strong action against establishments violating rules, and CCTV compliance to prevent underage access to such venues. So parents, be alert, because most of the times Jaya, kya hota hai ki the kids at home are a little different from the kids when they are with their peers and with their friends.
0: Ji.
1: So the parents have to be alert over here and take notice of this.
0: Ji. अब चलते हैं महाराष्ट्र की ओर. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि धारावी पुनर्विकास परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र की संस्कृति और आजीविका को संरक्षित करते हुए निवासियों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना है. सिंगापुर और हांगकांग के आवास मॉडल से प्रेरित होकर इस योजना का लक्ष्य 2028 तक पात्र निवासियों को 10,000 घर उपलब्ध कराना है. धारावी के प्रसिद्ध मिट्टी के बर्तन बनाने के केंद्र कुम्हारवाड़ा के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. योजनाओं में चमड़ा, वस्त्र पुनर्चक्रण, मिट्टी के बर्तन और खाद्य प्रसंस्करण जैसे स्थानीय उद्योगों को भी समर्थन देना भी शामिल है. और युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है महाराष्ट्र से कि एनसीसी महाराष्ट्र ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत युवाओं के लिए इंटर्नशिप पहल शुरू की है. लेमन ट्री होटल्स के सहयोग से पुणे में 15 जून और मुंबई में 16 जून को प्लेसमेंट कैंप आयोजित किए जाएंगे. योग स्नातकों और एनसीसी कैडेटों को इंटर्नशिप के अवसर, व्यावहारिक कार्य अनुभव और मासिक वजीफा मिलेगा.
1: And carrying on with some more good news, the southwest monsoon has officially entered Telangana, making its initial onset in the southern district of Jogalamba Gadwal yesterday. According to the India Meteorological Department, IMD, conditions remain highly favorable for the monsoon to advance into the remaining parts of Telangana, Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh over the next 2 to 3 days. The Hyderabad Meteorological Centre has forecast light to moderate rainfall across isolated areas of the state through Wednesday. However, residents in certain southern and eastern districts should prepare for isolated heavy downpours. The IMD has also warned of thunderstorms, lightning and gusty winds reaching speeds of 40 to 50 km per hour. Maximum temperatures across the state are expected to hold steady during this period.
0: और अब बात करते हैं जॉय सिटी कोलकाता की. महापौर के इस्तीफे के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता नगर निगम बोर्ड को भंग कर दिया है और आयुक्त स्मिता पांडे को प्रशासक नियुक्त किया है. वह सभी नागरिक कार्यों का प्रबंधन करेंगी और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेंगी. निगम की शक्तियां 6 महीने तक या नवनिर्वाचित पार्षदों के कार्यभार संभालने तक लागू रहेंगी. तो ये थे अब तक के मेट्रो समाचार. श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर जया और रेनु के साथ. कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब जानते हैं कि मेट्रोज में मौसम कैसा रहने वाला है. तो सबसे पहले बात दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम की. तो रेनु, जहां देश भर में मानसून आगे बढ़ रहा है कई हिस्सों में, उस बीच दिल्ली में तो गर्मी का प्रकोप जारी है.
1: बट आई सॉ सम क्लाउड्स इन द मॉर्निंग टुडे जया, एंड इट वाज सच अ नाइस फीलिंग कि आज जरूर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है.
0: नहीं, लेकिन आज बारिश का ऐसा कोई अनुमान नहीं है. हालांकि दिन के समय तेज सतही हवाएं चलेंगी. शहर में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, यानी कि तेज धूप रहेगी आज भी.
1: Yes.
0: अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और बारिश या गरज के साथ तूफान का अनुमान है. शहर में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. और जॉय सिटी कोलकाता में आज तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार हैं. आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं रेनू से.
1: एंड इट्स गोइंग टू बी क्लाउडी थ्रू आउट ऑल द थ्री मेट्रोज जया. Chennai is expected to have partly cloudy sky with possibility of moderate rain or thunderstorm. The minimum temperature was 30 degrees Celsius and the maximum will be around 39 degrees. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The minimum temperature was 22 degrees Celsius and the maximum will be around 30 degrees. And Hyderabad is also expected to have generally cloudy sky.

0: with moderate rain, the temperature will hover between a minimum of 24 degrees and a maximum of 36 degrees Celsius.
1: श्रोताओं, अब वक्त आ गया है अतीत के पार उन प्रमुख घटनाओं को याद करने का जिन्होंने आज के दिन अपनी एक विशेष पहचान दर्ज की. आज 9 जून 2026 है और
0: एंड एज ऑलवेज ऑल द डेट्स दैट वी हैव आर सो मच इम्पोर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द हिस्ट्री. सो बिगनिंग विद द ईयर इन 1902 ऑन दिस डे दैट इज 9th ऑफ जून द ऑटोमैट रेस्टोरेंट द फर्स्ट रेस्टोरेंट विद फूड vending machines opened in Philadelphia. In 1946, Bhumi Bol Adulya Dej was crowned as King Ram the Ninth of Thailand, going on to become one of the longest reigning monarchs in world history.
1: और आज के दिन 1934 में कार्टून चरित्र डोनाल्ड डक पहली बार डिज्नी वॉल द्वारा निर्मित एनिमेशन फिल्म द वाइज लिटिल हैंड में दिखाई दिया. और इसके कुछ दिनों के बाद वर्ष 1962 में गोवा की मुक्ति के बाद वहां लागू सैन्य प्रशासन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर एक नागरिक सरकार को सत्ता सौंपी गई थी.
0: In 1964 on this day, लाल बहादुर शास्त्री took the official oath as the second Prime Minister of India following the passing of जवाहरलाल नेहरू. शास्त्री gave the quotation जय जवान जय किसान which motivated the war affected Indians to boost their morale.
1: और इसके कुछ दिनों के बाद वर्ष 2004 में जर्मन इलेक्ट्रॉनिक संगीत बैंड क्राफ्टवर्क ने पहली बार भारत में मुंबई के एक विशेष समारोह में लाइव प्रदर्शन किया था, जिसने देश में इलेक्ट्रॉनिक संगीत के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा.
0: जी,
1: और अब समय है उन प्रमुख व्यक्तियों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन.
0: जी,
1: तो सबसे पहले हम याद कर रहे हैं फिल्म फेयर अवार्ड विजेता मशहूर गीतकार असद भोपाली साहब को. उन्हें ऐसे गीतकार में शुमार किया जाता है जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में 40 साल का लंबा संघर्ष किया. आज ही के दिन साल 1990 में हिंदी सिनेमा के ये अजीम शायर हमसे रुखसत हुए, जिनकी कलम से लिखे गाने आज भी हर धड़कन की आवाज है. याद कीजिए फिल्म पारसमणि का वो सदाबहार गीत.

अभिनेता सलमान खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म मैंने प्यार किया के लिए लिखे गीत कबूतर जा के लिए असद साहब को प्रतिष्ठित फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। अपने करियर में उन्होंने करीब 400 गाने लिखे जो आज भी गीत प्रेमियों के दिलों में जिंदा है। उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए चलिए सुनते हैं उन्हीं का लिखा एक और बेहद खूबसूरत तराना।

0: such beautiful music, such beautiful lyrics. ये वाले गाने हम आज तक याद करते हैं और साथ साथ we keep humming. You know, they were such beautiful songs. So, today is the birthday of John Christopher Depp II or Johnny Depp, who is an American actor, producer, and musician. He was nominated for 10 Golden Globe Awards, winning one for Best Actor for his performance of the title role in Sweeney Todd, the Demon Barber of Fleet Street, and has been nominated for 3 Academy Awards for Best Actor, among other accolades. He's regarded as one of the world's biggest film stars, and his most commercially successful films are the Pirates of the Caribbean series, the Fantastic Beasts film series, Alice in Wonderland, Charlie and the Chocolate Factory, and The Tourist. But here we have a small dialogue from the movie Pirates of the Caribbean. Let's listen in to that.
1: Hang on a minute.
2: I just need to understand something.
1: Right, so you will fight against them, they will fight against you, all on account of him wanting to kill him. Where is the sense?
2: Exactly.
1: I say, let them fight each other. Or we lay back, watch, have a drink, play some wages. Hey!
2: Hi.
3: तो सुरों के महफिल में वापस से लौटेंगे, लेकिन उससे पहले जैसा हमने कार्यक्रम की शुरुआत में वादा किया था कि हम वीरता के कारवां में भी जाएंगे, तो इतिहास के पन्नों में कुछ तारीखें सिर्फ कैलेंडर का हिस्सा नहीं होती बल्कि वो हमारे वजूद और आजादी की गवाही देती है। आज 9 जून है और आज ही के दिन साल 1900 में महज 25 साल की उम्र में एक ऐसा नायक हमसे दूर चला गया जिसने अंग्रेजों की हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी धरती के पिता भगवान बिरसा मुंडा की। जिस उम्र में लोग अपना करियर ढूंढते हैं, धरती आबा बिरसा मुंडा ने उस उम्र में जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए उलगुलान यानी एक महाक्रांति की शुरुआत कर दी थी। उन्होंने झारखंड के जंगलों से अंग्रेजों और जमींदारों के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। वो सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, वो आदिवासियों के लिए भगवान थे। उन्होंने समाज को कुरीतियों से निकाला, अंधविश्वास को दूर किया और लोगों को सिर उठाकर जीना सिखाया। आज ही हम उन 3 शूरवीरों को भी याद कर रहे हैं जिनकी रगों में सिर्फ और सिर्फ इंकलाब दौड़ता है और जिन्होंने आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज गुजरात के ग्रैंड ओल्ड मैन अब्बास तैयबजी की पुण्यतिथि है जिन्होंने गांधी जी के साथ दांडी मार्च का नेतृत्व किया। तो वहीं आज ही के दिन वीर क्रांतिकारी हरिकिशन सरहदी और दिनेश चंद्र मजूमदार ने अपनी महज छोटी सी उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। सलाम है भारत के इन वीर सपूतों को जिनकी शहादत से आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं।
0: Very true, Jaya. You know what? These dates are not just etched in the calendars, but there is so much more that happened on these days in history if we look back. So today is the birthday of Aaron Benjamin Sorkin, who is an American screenwriter, director, producer, and playwright. His works include The Broadway's plays A Few Good Men, The Farnsworth Invention, and To Kill a Mockingbird, the television series Sports Night, The West Wing, Studio 60, On the Sunset Strip, and The Newsroom, and the films A Few Good Men, The American President, Charlie Wilson's Bar, Moneyball, and Steve Jobs. And for writing The Social Network, he won the Academy Award for Best Adapted Screenplay, among other awards. And he made his feature directorial debut in 2017 with Molly's Game, which he also wrote. And these sequences consist of single tracking shots of long duration involving multiple characters engaging in conversation as they move through the set. Characters enter and exit the conversation as the shot continues without any cuts. So there is so much that, you know, Jaya, we can learn from these people who are real directors. Mm-hmm. So here Aaron Sorkin is talking about what is your idea of a TV show or a movie. So let's listen in to him over here.
4: My first series was Sports Night. I was thinking of that as a feature, that it would be broadcast news but set at ESPN. But all the stories that I was thinking of were short stories. They weren't long. And I said that to my agent, who said, well, it sounds like you're describing a television series. So that's how that happened. And so generally, if it's the place that you're attracted to, whether it's the White House or a newsroom or a cable sports show. If it's the place that you're attracted to, that's a TV series. If the characters, metaphorically speaking, die at the end of the story, if there's no more story after that, then it's a feature.
3: और जब आपने डायरेक्टर की बात की है तो हम भी श्रोताओं को मिलाना चाहेंगे हिंदी सिनेमा के उस जादूगर से जिसने सिल्वर स्क्रीन पर सस्पेंस और मेलोड्रामा की एक नई परिभाषा लिखी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिग्गज फिल्म निर्देशक राज खोसला साहब की। आज उनकी भी पुण्यतिथि है। उन्हें देवानंद जैसे अभिनेताओं की सफलता के लिए श्रेय दिया जाता है। उन्हें बॉलीवुड में न्यू नोयर यानी सस्पेंस क्राइम फिल्मों का उस्ताद भी माना जाता है। उन्होंने सीआईडी, मेरा गांव मेरा देश और दो रास्ते जैसी एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। इसके बाद वो कौन थी, मेरा साया, दोस्ताना जैसी कई हिट फिल्में आई और मुख्य फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की जो 1978 में आई थी, इनके लिए उन्हें फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ मूवी पुरस्कार दिलाया
0: and
3: गया
0: था। वेरी ट्रू जया, यू सेड ही वाज नोन फॉर ब्रिंगिंग इन द नियो नोआ एंड द स्टाइल इन इंडियन सिनेमा एंड बिकॉज यू आर नेमिंग दीज मूवीज आई थिंक ही वाज आल्सो अ वुमेन्स डायरेक्टर बिकॉज ही शोकेस्ड एक्ट्रेसेस एट देयर बेस्ट।
3: बिल्कुल, जिस तरह से मुमताज, साधना और नूतन जैसी अभिनेत्रियों से उन्होंने उनका सर्वश्रेष्ठ अभिनय निकलवाया है। और खास बात ये थी ना कि राज साहब का म्यूजिक सेंस कमाल का था। उनकी फिल्मों के गाने आज भी हमारी प्लेलिस्ट का हिस्सा हैं। सुरों और सस्पेंस के इस बेताज बादशाह को याद करते हुए सुनते हैं उनकी एक मास्टरपीस फिल्म का यह शानदार गीत।

0: तीन अपडेट सामने आए। पहला अपडेट जो है,
1: आज भारतीय सिनेमा के बेहद सम्मानित कालजयी और दिग्गज संगीतकार वसंत देसाई साहब की भी जयंती है। आज भले ही हम कितने भी आधुनिक गाने क्यों न सुन लें, लेकिन सुबह उठकर जब स्कूलों में बच्चे गाते हैं हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करी, या फिर फिल्म दो आंखें बारह हाथ की व अमर प्रार्थना, ऐ मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हों हमारे कर्म, तो हमारा दिल अपने आप भर आता है। और इन कालजयी धुनों को तराशने वाले जादूगर वसंत देसाई जी ही थे। वसंत जी ने वी शांताराम साहब की झलक झनक पायल बाजी और जया बच्चन की डब्ल्यू फिल्म गुड्डी में बोले रे पपिहरा जैसे एक से बढ़कर एक शास्त्रीय और मधुर गीत गाए। वे ज्यादा फिल्मों के पीछे नहीं भागे, उन्होंने काम कम किया लेकिन जो किया उसे हमेशा के लिए अमर कर दिया।

0: हम याद कर रहे हैं सिनेमा के एक और ऐसे नायाब चिराग को जिन्होंने हमें हंसना भी सिखाया और अपनों के लिए रोना भी। आज मशहूर और दिग्गज फिल्म निर्देशक सत्येन बोस की भी पुण्यतिथि है। सत्येन बोस का नाम सुनते ही जहन में क्या आता है किशोर कुमार और मधुबाला की वो पागलपंथी से भरी सुपर डुपर हिट फिल्म चलती का नाम गाड़ी।
1: लेकिन अगर आप ओबीसी कैटेगरी में या फीमेल कैटेगरी में तो 290-285 में ट्राई कर सकते हैं और एसटी एससी में अगर आप एससी में तो 280-285 नंबर तक या ब्रेस्ट ले सकते हैं। फीमेल में तो 280 नंबर तक तैयारी शुरू कर सकते हैं और एसटी वाले लगभग 275 और फीमेल में 270 तक आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं।
0: कॉमेडी से लेकर संजीदा ड्रामा तक हर रंग में माहिर थे सत्येन दा। आपको याद होगा दो दोस्तों के निस्वार्थ प्यार की वो दास्तान फिल्म दोस्ती जिनके गानों ने पूरे देश को रुला दिया था।
1: यहाँ भी आपको

0: श्रोताओं और अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए जया और रेनू को आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए आप सुनते रहे आकाशवाणी एफएम गोल्ड।
1: स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट समाचार प्रभात और हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे, नमस्कार।
2: आपके पास बहुत कम समय है, लोग दो दो महीने इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, यही है कि अगर
3: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है, मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: और रिजल्ट,
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार।
2: हो सकता है कि अगर इंटरव्यू लास्ट जुलाई का हो तो अगस्त में होगा, अगस्त तक आप लोग का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और जो भी जाएगी। तो दोस्तों बहुत
5: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एमटी मारीवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की, युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमरीका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया।
2: और नंबर है
5: भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणी एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दामबुला में।
2: डेमो के लिए भी दे सकते हैं।
5: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: गृह मंत्रालय ने कहा ये प्लेटफॉर्म व्यापार सुगमता, संपर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है। LPMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भूमि बंदरगाहों के संचालन को एकीकृत प्रणाली में समाकलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली कार्गो और यात्री प्रसंस्करण के लिए स्लॉट बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सहित संपूर्ण डिजिटल कार्य प्रभावी प्रदान करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के दावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंडपोर्ट में नव विकसित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे सीमा प्रबंधन और कर्मियों के लिए बुनियादी ढांचागत सहायता मजबूत होगी। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
7: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुँच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
5: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा मजबूत करना है।
8: भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। 12 जून को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा, जिसका फोकस लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
5: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपये का स्मारक सिक्का और 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत व्यय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
2: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या था मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
1: वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
3: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रहता हूँ।
1: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवम्बर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष में भारत के कोयला और खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। हैदराबाद में कल श्री रेड्डी ने बताया कि भारत ने 1 अरब टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड हासिल कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र से लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हो गए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतकों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की है। समाचार कक्ष से मैं चाहत सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार भी जताया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली। हादसे की जांच जारी है। अमरीका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए $1,00,000 के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। H-1B वीजा के लिए जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ईरान और इसराइल के बीच एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांतिवार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में अफगानिस्तान ए की टीम भी शामिल है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा। फाइनल 21 जून को होगा। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। भारती फूलमाली ने नाबाद 56 रन और स्मृति मानधना ने 39 रन का योगदान दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में आज लू चलने की आशंका व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे और उत्तरी तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
5: धन्यवाद मुकेश। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में बगावत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, टीएमसी में टूट, 20 सांसदों का अलग गुट एनडीए के साथ। पत्र के अनुसार काकोली घोष की अगुवाई में अलग सेटिंग की भी मांग। दैनिक जागरण ने तृणमूल में एक और टूट शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जैसी आशंका थी तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों ने भी ममता बैनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी है। इससे पहले पार्टी के 80 में से 60 विधायक अलग गुट बनाकर नेता प्रतिपक्ष का चयन कर चुके हैं। पंजाब केसरी ने विपक्षीय एकता का अंतर विरोध शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली शानदार सफलता बताती है कि इंडिया गठबंधन में इतनी भी कुव्वत नहीं है कि उसके सहयोगी दलों के नेता एक साझा मंच पर इकट्ठे होकर भाजपा को ललकार सके। हिंदुस्तान ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को का साक्षात्कार देते हुए लिखा है, चीन से सिर्फ उम्मीद के भरोसे शांति संभव नहीं, थिएटर कमांड पर भी सहमत। जनसत्ता के अनुसार इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए, 8 अप्रैल के बाद यह गंभीर झड़प, ट्रंप की अपील के बाद दोनों देशों ने किया संघर्ष विराम। पत्र के अनुसार भारत ने नागरिकों को सलाह देते हुए लिखा है, ईरान और इसराइल छोड़े भारतीय और यात्रा भी ना करें। अमर उजाला ने दिया है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर पहुंचाएंगे नीट के प्रश्न पत्र, पहली बार सरकारी प्रोफेसर और शिक्षकों ने तैयार किया पेपर। बाहरी को जिम्मेदारी नहीं, लॉजिस्टिक्स सेंटर से परीक्षा केंद्र तक जीपीएस से निगरानी। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, पिछले 12 वर्ष में भारत में कई परिवर्तन आए। देशबंधु की सुर्खी है, कल्याणकारी योजनाओं से 12 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने होर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मेरिवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच

मीडियम वेव 254.45 मीटर अर्थात 1179 किलो हर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रीवा केंद्र के प्रसारण को। प्रातः 8:30 हुए हैं। श्रोताओं, आपको बताना चाहेंगे कि आज के डिजिटल युग में आपका आकाशवाणी भी अब आपके मोबाइल पर उपलब्ध है।

जी हाँ, मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR के माध्यम से इस ऐप को डाउनलोड करें और मनचाहा आकाशवाणी केंद्र चयनित करें और कार्यक्रमों का आनंद लें। श्रोताओं, आप इस ऐप पर पाएंगे ऐप जो कि न्यूज़ ऑन AIR है, आकाशवाणी रीवा केंद्र के साथ स्वस्थ मनोरंजन के और भी बहुत सारे विकल्प। और फिलहाल आपके अपने आकाशवाणी रीवा से समय है फिल्म संगीत के प्रसारण का, जिसमें हम प्रसारित करेंगे कार्यक्रम देशगान। अर्थात आज आप फिल्म संगीत में आनंद ले सकेंगे देश प्रेम से ओतप्रोत गीतों का। आरंभ मुझे जीने दो इस फिल्म के गीत से, मोहम्मद रफी और साथियों की पुरसुकून आवाज में आप इस गीत को सुनने जा रहे हैं।

0: नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें मां भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें मां भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा। इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव हैशटैग वंदे मातरम 150 के साथ जरूर भेजिए। हैशटैग वंदे मातरम 150। मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।

मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुकी भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा, इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव #वंदेमातरम150 के साथ जरूर भेजिए। #वंदेमातरम150, मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।

कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद अजीज और साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे आनंद बख्शी की कलम से निकला गीत। धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म कर्मा।

उपकार फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज में।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग हेतु संपर्क करें 8700-4242 पर।
4: 8700-4242।
5: The final step involves analysis and usage. The cloned SIM card can now be used for further forensic analysis, testing, or as evidence in legal proceedings. The original SIM card remains intact and unaltered, preserving

श्रोताओं, देशकान की अगली प्रस्तुति आशीष चटर्जी की कलम से निकली हुई है, जिसके लिए धुन बनाई सुजॉय बोस ने। इस गीत को आप सुनेंगे सुखविंदर सिंह और अनुप्रिया चटर्जी की आवाज में।

72 आवर्स इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

संदीप शिरोडकर की धुन पर सजा गीत आप सुन रहे थे फिल्म सैटेलाइट शंकर से। अब सुनिए सुखविंदर सिंह और शशि सुमन की आवाज में प्रसून जोशी का लिखा गीत।

0: शशि सुमन के संगीतबद्ध किए इसी गीत के साथ
1: केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शब्द सागर। आज इस कार्यक्रम में लीजिए पहले सुनिए वार्ता, हिंदी पत्रकारिता 2 सदियों का सफर। वार्ताकार हैं दीपक पगारे।
2: बीती 30 मई को जब हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरे हो चुके हैं, तब पत्रकारिता की वर्तमान स्थिति का अवलोकन करने से पूर्व हमें हिंदी पत्रकारिता के अग्रदूत पंडित बाबूराव विष्णु पराटकर का यह कथन ध्यान में रखना होगा। उन्होंने कहा था, पत्र निकालकर सफलतापूर्वक चलाना बड़े बड़े धनिकों अथवा सुसंगठित कंपनियों के लिए ही संभव होगा। पत्र सर्वांग सुंदर होंगे, आकार बड़े होंगे, छपाई अच्छी होगी, मनोहर, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक चित्रों से सुसज्जित होंगे, लेखों में विविधता होगी, कल्पकता होगी, गंभीर

कमिश्नर की झलक होगी, ग्राहकों की संख्या लाखों में गिनी जाएगी, यह सब कुछ होगा पर पत्र प्राणहीन होंगे। पत्रों की नीति देशभक्त, धर्मभक्त अथवा मानवता के उपासक महाप्राण संपादकों की नीति न होगी। इन गुणों से संपन्न लेखक विकृत मस्तिष्क समझे जाएंगे, संपादक की कुर्सी तक उनकी पहुंच भी न होगी। वेतन भोगी संपादक मालिक का काम करेंगे और बड़ी खूबी के साथ करेंगे। पंडित पराटकर ने यह टिप्पणी करीब 9 दशक पहले की थी, यानी तब तक हिंदी पत्रकारिता 225 साल की तो हो ही गई होगी। उसके बाद के सालों में उनकी यह टिप्पणी या चिंता दिनों दिन फलीभूत ही हो रही है। निसंदेह आज समाचार पत्रों का कलेवर आकर्षक हो चला है। कंप्यूटर क्रांति ने इसमें 4 चांद लगाए हैं। कंप्यूटर के दौर में समाचार पत्रों के दफ्तर भी आकर्षक हो गए हैं। पत्रकार भी अपनी पारंपरिक छवि तोड़कर एक लकदक जीवन जी रहे हैं, यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में वैयक्तिक और आर्थिक दोनों ही तरह की समृद्धि आई है। आज से 200 साल पहले 30 मई 1826 को कलकत्ता, जिसे अब वर्तमान में कोलकाता कहा जाता है, वहां से पंडित युगल किशोर शुक्ल ने पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड निकाला था। उस पत्र का ध्येय था हिंदुस्तानियों के हित का हेत। इस समाचार पत्र के प्रकाशन का उद्देश्य था आजादी के प्रति लोगों के मन में एक चेतना जगाना। इसके बाद भी हिंदी तथा अन्य भाषाओं में जो पत्र निकले उनका उद्देश्य भी स्वतंत्रता के लिए ही समाज में जन जागरूकता फैलाना था। इसके लिए उस दौर के पत्रकारों ने तरह तरह की प्रताड़नाएं झेली, लेकिन अपने उद्देश्यों से भटके नहीं। यदि हम इतिहास को खंगालेंगे तो पाएंगे कि देश को स्वतंत्रता दिलाने में समाचार पत्रों का अहम योगदान रहा है, और उसके बाद स्वतंत्र भारत को पुष्ट करने में भी इन्हीं पत्रों ने महती भूमिका निभाई है। लेकिन समय के साथ पत्रकारिता में कई तरह के बदलाव आए हैं। अब पत्रकारिता के नए नए माध्यम सामने आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो पत्रकारिता का एक सशक्त माध्यम है ही, अखबार के बाद यह दूसरा विश्वसनीय माध्यम माना जाता है। इसके साथ ही सोशल मीडिया एक नया घटक आया है, लेकिन यह सर्वस्वीकार्य नहीं है। हालांकि स्वप्रचार का यह एक ताकतवर साधन है। समाचार पत्रों के ई स्वरूप का चलन भी बढ़ा है, उसके साथ ही एक अनुषंग के रूप में डिजिटल अंक भी आए हैं। कुछ बड़े समाचार पत्रों के अपने चैनल भी साथ साथ चल रहे हैं। इस तरह पत्रकारिता के अन्य माध्यम जुड़ने से पत्रकारिता अब मीडिया हो चली है। इसे मीडिया इंडस्ट्री कहा जाने लगा है, इसलिए यहां काम करना भी एक कैरियर मान लिया गया है। कुल मिलाकर 200 साल में पत्रकारिता में कई तरह के बदलाव आए हैं और आना स्वाभाविक भी है। बदलाव या परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है, तो पत्रकारिता भी इससे अछूती नहीं रह सकती। लेकिन सकारात्मक बदलाव तो ठीक हैं, अपने मूल उद्देश्य या प्रकृति से बदलाव चिंताजनक है। इस तब्दीली में हम यह महसूस कर रहे हैं कि पत्रकारिता के मूल भाव में बदलाव आया है। कभी यह मिशन था, अब प्रोफेशन हो चला है। आज पत्रकारिता का स्वर बदल गया है। कभी पत्रकारिता का स्वर था हिंदुस्तानियों के हित का हेत, लेकिन आज ये हो चला है सबका अपना हेत। सब समाचारों में अपना ही हेत देख रहे हैं। कभी किसी शायर ने कहा था, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो एक अखबार निकालो। लेकिन आज कहते हुए दुख हो रहा है, सब अपनी अपनी तोप को बचाने के लिए अखबार निकाल रहे हैं। इस वजह से पत्रकारिता का जो मूल भाव है लोक कल्याण, वह मीलों पीछे छूट गया है। आज समाचार पत्रों में समाचार और विचार दोनों ही गौण हो गए हैं। जो सामग्री प्रकाशित हो रही है उसमें पाठक की रुचि नहीं, अपना हित देखा जा रहा है। यह स्थिति चिंताजनक है। बीते 2 दशकों में तो स्थिति और भी बदतर हुई है। उसके मूल में जाएं तो जैसा पहले उल्लेख किया कि समाचार पत्र का मीडिया बन जाना, मिशन का प्रोफेशन बन जाना, यही मूल कारण रहा है। इस प्रवृत्ति ने आपसी होड़ को जन्म दिया। व्यावसायिक मानसिकता के चलते समाचार पत्रों को अपने पाठक बनाने की जगह ग्राहक बनाने शुरू कर दिए हैं।
व्यावसायिक मानसिकता के चलते समाचार पत्रों ने अपने पाठकों की जगह

0: ग्राहक बनाने शुरू कर दी हैं। पंडित पराड़कर ने तो सालों पहले यह चिंता जाहिर कर ही दी थी। इन ग्राहकों को एक के साथ एक फ्री जैसी लुभावनी स्कीम दी जाने लगी है। इससे उसमें प्रकाशित होने वाली सामग्री प्रभावित हुई है। ऐसे लोग या संगठन जो समाज में अपनी बात मनवाना चाहते हैं, वे मीडिया का उपयोग अपने हित में करने लगे हैं। इसमें अखबार और टीवी चैनल दोनों ही बराबर के भागीदार हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इस प्रवृत्ति के लोगों के लिए ये दोनों ही एक समान औजार की तरह कार्य कर रहे हैं। पाठक या ग्राहक को अपनी ओर खींचने के लिए विभिन्न तरह के प्रयास होने लगे हैं। उसे आकर्षित करने के लिए राजनेताओं के बीच में विवाद, चरित्र हनन, बेवजह के स्टिंग ऑपरेशन जैसे उपक्रम चलाए जाते हैं। इस होड़ के चलते मीडिया की विश्वसनीयता संदिग्ध हो चली है। लोग इन माध्यमों में आई खबरों पर आज सहज विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। उनके मन में संशय तो फिर भी रहता ही है। पिछले कुछ समय से एक नया चलन आ गया है। अब समाचार पत्र या अन्य माध्यम पाठक या श्रोता तैयार करने की बजाय टारगेटेड रीडर्स तैयार कर रहे हैं। ये टारगेटेड रीडर्स वही हैं जो इन संस्थानों के हित साध रहे हैं, इसलिए उसकी रुचि या उसके लाभ को देखते हुए ही सामग्री परोसी जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पत्रकारिता में आए बहुत से बदलाव सकारात्मक हैं। जैसे पहले उल्लेख किया कि आज समाचार पत्रों के ई स्वरूप सामने आ रहे हैं। इसका बड़ा लाभ यह है कि देश विदेश के अखबार पलक झपकते ही पाठक के सामने होते हैं। वह उसमें प्रकाशित समाचारों या लेखों में से किसी भी घटना का वैश्विक प्रभाव आसानी से जान समझ लेता है। इसी तरह डिजिटल स्वरूप से किसी घटना को फौरी तौर पर जान लेता है। उसी पत्र के चैनल के माध्यम से वह वहां की जीवंत तस्वीर देख लेता है। हालांकि बात के दो माध्यमों में अतिरंजना की गुंजाइश ज्यादा रहती है, इससे बचना होगा। आज हम हिंदी पत्रकारिता के द्विशताब्दी वर्ष में पत्र पत्रिकाएं या विभिन्न संस्थाएं इस पूरी यात्रा के पुनरावलोकन की दिशा में कई तरह के अनुष्ठान कर रहे हैं और किए भी गए, किए भी जाएंगे। इससे साबित होता है कि अभी भी पत्रकारिता के इस गौरवशाली अतीत और उसकी बुनियाद पर उसके भविष्य को गढ़ने की ललक लोगों के मन में है। आज से 100 साल बाद जब पत्रकारिता 300 साल की होगी तो मौजूदा वक्त के हम लोगों में से शायद ही कोई जिंदा होगा, या होगा भी तो आयु के किस मुकाम पर होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन फिर भी उस पीढ़ी के लोगों में पत्रकारिता को बचाने की ऐसी ही ललक होनी चाहिए। यह तभी संभव है जब हम भावी पीढ़ी के सामने ऐसा माहौल छोड़कर जाएं जैसा हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए छोड़ा था। हम उन्हें भी ऐसा ही एक अतीत दें जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया। आज भी और तब भी पत्रकारिता को एक करियर के रूप में देखा जाए तो इस पर कोई बुराई नहीं है। इससे भौतिकता के दौर में नई पीढ़ी के बच्चे इस तरफ भी आकर्षित होंगे। लेकिन इसमें सिर्फ ग्लैमर की तलाश रास्ते से भटका सकती है। ऐसे में पत्रकारिता का मूल दायित्व लोक कल्याण का भाव इस पीढ़ी में जगाए रखना ही होगा। यदि उनमें कर्तव्य बोध रहा तो निसंदेह सोशल मीडिया की तमाम चुनौतियों से निपटने में इसे सहायता मिलेगी। यदि नई पीढ़ी के पत्रकार तमाम तरह की चमक दमक के बाद भी अपने मन में पत्रकारिता को मिशन के रूप में अपनाते हैं तो इस पवित्र पेशे का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। विशेषकर समाचार पत्रों को तो ये शुचिता बनाए ही रखनी होगी, क्योंकि तमाम आकर्षणों विकर्षणों के बाद भी आज भी सुबह सुबह सभी को पेपर वाले का ही इंतजार रहता है। ये बात और है कि वह अब ठंड धूप या बरसात में साइकिल से नहीं मोटरसाइकिल से हमारे घर आता है। बदलाव का यह भी एक रूप है। लेकिन इस सब के बावजूद हमारा नैतिक दायित्व है कि हम पत्रकारिता की उस शुचिता को बचाए रखें जिससे उस पेपर वाले का सभी को इंतजार रहे। पत्रकारिता के 200 वर्ष पूर्व होने के मैं सभी हिंदी जीवियों, हिंदी प्रेमियों और हिंदी सेवियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और भविष्य में पत्रकारिता का यही स्वरूप हमारे सामने हो यह कामना भी करता हूँ।
1: अभी आपने सुनी हिंदी पत्रकारिता 2 सदियों का सफर, इस विषय पर वार्ता। वार्ताकार थे दीपक पगारे। आकाशवाणी भोपाल से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शब्द सागर। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए डॉक्टर चित्र

0: सिंह का काव्य पाठ।
1: पहली कविता का शीर्षक है चांद की आत्मा। रात जब सो रही हो गहरी नींद की गोद में, रात जब सो रही हो गहरी नींद की गोद में, तारों से छिप छिपा कर चांद की आत्मा कर जाती है प्रवेश नदी की देह में। सतह पर बैठकर पहरा देता है जल उन मिलन के क्षणों का। सूर्य देता है अर्ध किरणों से पवित्र नदी का ध्यान भंग करने। उनके द्वारा की गई सामूहिक प्रार्थनाओं का सच केवल सुबह को पता होता है। कविता का शीर्षक लैंप पोस्ट। लैंप पोस्ट की रोशनी से बातें कर रही हूं मैं। लैंप पोस्ट की रोशनी से बातें कर रही हूं मैं। सामने से गुजरने वाली लंबी काली सड़क थम गई है। पत्तों ने भी बंद कर दी हैं आपस की बातें। अभी अभी अधनींद से जागी है कोई टहनी, पूछ रही है तने से सुबह होने में और कितनी देर बाकी है। अगली कविता का शीर्षक है हंसी की भाषा में। जैसे फिसल जाती है रेत गुपचुप जितना भी बांधो या भींचो मुट्ठियां, जैसे फिसल जाती है रेत गुपचुप जितना भी बांधो या भींचो मुट्ठियां, ऐसे ही कितने सारे शब्द जो कह नहीं पाते कभी किसी से अपना मन, कोई पदचाप किए बगैर ही होंठों के करीब से होकर गुजरते हुए हंसी की भाषा में चुपचाप झर जाते हैं। अगली कविता का शीर्षक है और यह एक दिन भी। और यह दिन भी गुजर जाएगा चुपचाप, आंखों की आस को धोखा होगा, दिखाई देगा उन्हें सुदूर चमकीला रेगिस्तान, प्यास लेती रहेगी थाह उम्मीद के कलसे की, तली में बचा रखी जमा आखिरी दो चार बूंदों से ही भरना होगा हमें अपना रीता मन। झूठ मूठ को ही सही खुद को भी रिक्त करते रहेंगे हम हर रोज यूं कुछ इसी तरह। कविता का शीर्षक छांव को चाहिए। छांव को चाहिए कि मांगे धूप से अपना हिस्सा, छांव को चाहिए कि मांगे धूप से अपना हिस्सा, उदासी के चेहरे पर मुस्कानों का स्वाद होना चाहिए, घोर निराशा को आशाओं का दामन पकड़ना चाहिए, लड़खड़ाती नाउम्मीद को उम्मीद के सहारे चलना चाहिए, भरोसे को चाहिए कि जा बैठे यकीन की किसी ऊंची मकान पर, अंधेरे को उजाले से रोशनी में मिलना चाहिए। अगली कविता का शीर्षक हरी धूप। कई रोज बाद चुआ धूप ने नम आंखों को, कई रोज बाद चुआ धूप ने नम आंखों को और जी उठे फिर कुछ स्वप्न। पेड़ों ने सीधी की अपनी रीढ़, शाखों ने भी खोली बंद मुट्ठियां, पत्तों ने जोर से झटके केश जो जा उड़े आसमानों तक, जिन्हें आखिर धरती पर वापस ले ही आई हवा और ढांप दिया महीनों से मलिन पड़े धरती के कायदार चेहरे को, उन नए सपनों का नाम हरी धूप है। अगली कविता का शीर्षक है कभी। कभी कभार उस पार देखने को बीच से एक मोटी दीवार का ढह जाना जरूरी होता है। कभी कभार उस पार देखने को बीच से एक मोटी दीवार का ढह जाना जरूरी होता है, बशर्ते कि उसकी जगह ले ले कोई झीना पर्दा केवल आड़ भर के लिए। आंखों को तब भी मिलता रहेगा स्पर्श अपने प्रिय दृश्य का, जिन्हें छूकर मैला हो जाने के इल्जाम से बरी रहेंगी उंगलियां। अगली कविता का शीर्षक है नदी का मन। आसमानी

0: लिफाफे से झांकते आखिरी खत ने भी नहीं बांचा उसका नाम और पता। आंखें खोजती रह गईं महफूज सी जगह उस पीड़ा को छिपाने की। दरख्तों के मजबूत कंधे भी नहीं सह पाए जिनका बोझ। कोरे इंतजार का मौसम रीत चुका है बादलों सा बहकर करीब करीब पूरा। मटमैला तो यूं ही था अब अनमना भी हो गया है नदी का मन। अगली कविता धरती की गोद भराई। पृथ्वी एक केंद्र बिंदु है वृत्ताकार गोले का जिसकी परिधि के इर्द गिर्द असंख्य स्त्रियां नृत्य कर रही हैं। वे अपने सधे पैरों से देती हैं जब थाप तो व्रत के भीतर हलचल और कोलाहल पैदा होता है। बिंदु के गर्भ में पड़ा एक बीज आंखें मल उठ खड़ा होता है। स्त्रियों के चेहरे पर सिंदूरी आभा बिखर जाती है। वे उसे नाम देती हैं शुभकामनाओं का फूल जो धरती की गोद भराई से उपजा है। मौसम और धरती इस कविता का शीर्षक है। मौसम का अपना वक्त है आने जाने का। मौसम का अपना वक्त है आने जाने का। धरती का क्या है, धरती का क्या है, वो तो बिछी है उसके इंतजार में। उसके बस का कुछ नहीं, न धूप न कोहरा न बारिश। मौसम के हवाले हो गई है धरती पूरी की पूरी। शीर्षक है कविता का किनारे की मिट्टी। देख आते ही दूर से पानी के व्यग्र आवेग को अपनी ओर सरक आती है थोड़ा और ज्यादा। देख आते ही दूर से पानी के व्यग्र आवेग को अपनी ओर सरक आती है थोड़ा और ज्यादा। किनारे की मिट्टी है वह, बहाव से बचना उसे भली भांति आता है। एक छोटी सी कविता है नदी की प्यास। नदी ने किनारे की पीठ पर लिखी है अपने हिस्से की थोड़ी सी प्यास। नदी ने किनारे की पीठ पर लिखी है अपने हिस्से की थोड़ी सी प्यास। अगली बार मिलो तुम जब किसी नदी से तो उसे पढ़ना जरूर। कविता का शीर्षक है हंसी के पंख। एक चिड़िया जिसके पास पंख हैं हंसी के। एक चिड़िया जिसके पास पंख हैं हंसी के बैठी है एक डाल पर। खुली खिड़कियां जिसका स्वागत करने को हैं आतुर। चिड़िया अपनी चोंच में दबाए है जाने कितनी अच्छी अच्छी प्यारी बातें जो नहीं मिलेंगी तुम्हें किसी किताब में। कविता का शीर्षक है उसकी आंखें। उसकी आंखें एक सघन जंगल हैं। उसकी आंखें एक सघन जंगल हैं। घर से निकलते ही सूर्य की किरणें पूछती हैं सबसे पहले जिसका पता। उसकी आंखें समुद्र का गहरा नीला पानी है जिसमें तैरती असंख्य रंगीन मछलियां गूंथती हैं मोतियों की माला। उसकी आंखें कभी न खाली होने वाली नदी का मीठा पानी है जिसकी कोरों पर रहकर ठहरे हर दुख ने बुझाई अपनी प्यास। उसकी आंखों के पास कई इंद्रधनुषी रंग हैं जो ठहर जाएं जिस किसी दृश्य पर वह दृश्य फिर देर तक रहता है हरा। अगली कविता का शीर्षक कैनवस। उसके बनाए कुछ चित्रों के चेहरे कैनवस से बाहर निकल गए हैं। उसके बनाए कुछ चित्रों के चेहरे कैनवस के बाहर निकल गए हैं और उसी रास्ते बह गए हैं उनमें जमावट से भरे रंग भी। रंग जो एकाकार हो गए हैं अपना मूल स्वरूप खोकर चित्रों के चेहरे भी बदरंग। लेकिन अपने कैनवस की बेतरतीबी से ना ही वो निराश है और ना हताश क्योंकि वह जीवन को एक बहुत बड़े कैनवस पर देखती है। कविता का शीर्षक अतीत की झांक। कभी उसका भी एक सुंदर अतीत हुआ करता था। जिसमें झांक झांक कर देखा करती है वह अपना चेहरा। अतीत की झांक से केवल उसका मन ही नहीं झुलसा है, झुलसी है उसकी आत्मा भी। आत्मा से उठती हूक फिर भी जाने किसे पुकारती है।
1: अभी आपने सुना डॉक्टर चित्रा सिंह का काव्य पाठ। इसी के साथ ही कार्यक्रम शब्द सागर यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। अरिजीत सिंह की आवाज में लीजिए सुनिए फिल्म डंकी का गीत। बोल इरशाद कामिल के हैं, संगीत है प्रीतम का।

फिल्म संगीत में लीजिए अब सुनिए फिल्म मुंजिया का गीत अरिजीत सिंह की आवाज में। गीत लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीतबद्ध किया है सचिन जिगर ने।

फिल्म संगीत का आखिरी गीत फिल्म जवान से अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाजें हैं, बोल कुमार के हैं और संगीत है अनिरुद्ध का।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रातः के 10 बजे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है नीमच जिले की चिट्ठी। आलेख दिनेश प्रजापति, वाचन स्वर दीपा सिंह। जिले में अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और अग्निकांड जैसी घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से प्रशासनिक टीमों ने निरीक्षण शुरू किए हैं। इसी क्रम में गुरुवार को एसडीएम पराग जैन और तहसीलदार संजय मालवी ने नीमच के ज्ञानोदय अस्पताल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने अस्पताल में स्थापित अलार्म सिस्टम और आपातकालीन निकास द्वार की उपलब्धता और कार्यशीलता का बारीकी से जायजा लिया। उज्जैन जोन का पदभार संभालने के बाद आईजी राकेश गुप्ता पहली बार नीमच पहुंचे। उन्होंने जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए अधिकारियों की बैठक ली। पुलिस अधिकारियों को विभिन्न मामलों में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में डीआईजी निमिष अग्रवाल, एसपी राजेश व्यास, एडिशनल एसपी नवल सिंह सिसोदिया सहित जिले के सभी थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी मौजूद रहे। नीमच जिले के जनजाति बाहुल्य ग्राम रातीखेड़ा में एक अनूठी प्रशासनिक पहल देखने को मिली। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। देर रात तक गांव में रुके और पीएम आवास योजना के लाभार्थी हरिराम के घर जमीन पर बैठकर भोजन किया। कलेक्टर चंद्रा अधिकारियों के दल के साथ बस से करीब 2 घंटे की यात्रा कर रातीखेड़ा पहुंचे। उन्होंने जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर में ग्रामीणों की शिकायतें सुनी। पेयजल, सड़क, बिजली, शिक्षा और वन राजस्व से संबंधित मामलों पर उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिए। नीमच प्रशासन ने ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए अनूठी पहल की है। कलेक्टर सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी अलग अलग वाहनों के बजाय एक ही बस में सवार होकर खातीखेड़ा जनसमस्या निवारण शिविर पहुंचे। प्रशासन की इस पहल की जिले भर में सराहना हो रही है। नीमच नगर पालिका द्वारा गौरव दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहीद पार्क में एक वृहद स्वच्छता कार्यक्रम और पौधरोपण अभियान चलाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान, नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा और एसडीएम पराग जैन सहित कई प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने शहीद पार्क परिसर की साफ सफाई की। प्रदेश के नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने नीमच जिले की रामपुरा तहसील के ग्राम खिमला में निर्माणाधीन ग्रीन को हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। इसके बाद ग्रीन को परिसर में आयोजित बैठक में अधिकारियों ने पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रोजेक्ट की वर्तमान स्थिति और भविष्य की कार्य योजना की जानकारी दी। विगत दिनों नीमच जिले के ग्राम बड़ी में राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने लगभग 3.800 हेक्टेयर बेशकीमती शासकीय भूमि को अवैध अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया। नीमच जिले के नए पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास ने शनिवार को जावद अनुभाग के विभिन्न थानों और चौकियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सिंगोली, रतनगढ़, मनासा थानों सहित सरवानिया, महाराज, टिकिन और कंजाड़ा चौकियों की कार्यप्रणाली और संसाधनों का जायजा लिया। श्री व्यास ने थानों के निरीक्षण के दौरान हवालात की सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता दी। उन्होंने रोशनदानों को सुरक्षित करने, शौचालयों की नियमित सफाई और परिसर में स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए। पिछले दिनों नीमच जिले के जीरन में सीआरपीएफ जवान संजय पाटीदार का निधन हो गया। 35 वर्षीय श्री पाटीदार सीआरपीएफ नीमच के डीआईजी रेंज कार्यालय में पदस्थ थे। गुरुवार सुबह उन्हें राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। नीमच जिले में 9,162 किसानों से कुल 4,80,511 क्विंटल गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा गया, जो कुल खरीदी का 96% है। जिला प्रशासन के अनुसार कुल उपार्जित गेहूं में से 4,56,691 क्विंटल गेहूं का सुरक्षित परिवहन कर लिया गया है। जिले के 12 उपार्जन केंद्रों ने 100% परिवहन का लक्ष्य हासिल किया है। कुल 97% प्रकरणों में स्वीकृति पत्रक जारी किए जा चुके हैं। किसानों को समर्थन मूल्य के रूप में 124.21 करोड़ रुपए और स्टेट बोनस के रूप में 1.92 करोड़ रुपए मिलाकर कुल 126.13 करोड़ रुपए दिए हैं। इसमें से 102.15 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे जा चुके हैं, जो औसत भुगतान का 86% से अधिक है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

मीडियम वेव 254.45 मीटर अर्थात 1179 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही साथ मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रीवा केंद्र को। प्रातः 10:05 हुए हैं। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए आशा भोसले की आवाज में ये गजल।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

जगजीत सिंह के स्वर में आप सुन रहे थे श्री हनुमान स्तुति। आइए अब सुने किशोरी अमोनकर से ठुमरी।

मोबाइल एप्लीकेशन और मीडियम वेव पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रीवा केंद्र को। इस समय सुगम संगीत का प्रसारण हो रहा है। आइए सुने जाजम शर्मा से ये गीत।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।

आकाशवाणी रीवा से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। लीजिए सुनिए शंकर महादेवन की आवाज में हनुमान आरती।

इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी रीवा है। अब आप सुनिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम।

0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं मैं छाया पाठक। और मित्रों कैसे हैं आप? उम्मीद है खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। श्रोताओ, हम जीवन में अनेक लोगों से मिलते हैं, उनमें से सबके स्वभाव अलग अलग होते हैं। कई बहुत गुस्से वाले स्वभाव के होते हैं तो कई शांत, कई ऐसे भी होते हैं जिन्हें गुस्सा तो आता है लेकिन बहुत जल्दी शांत भी हो जाता है, बिल्कुल पानी के बुलबुले की तरह। तो आज हमने हमारा कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में कुछ यही विषय चुना है आप सभी के लिए कि हमको जब गुस्सा आता है तो हम उस पे नियंत्रण किस प्रकार करते हैं। तो आइए बात करते हैं हमारे पहले श्रोता से। हाँ जी नमस्कार।
1: नमस्ते।
0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है।
1: नमस्ते दीदी।
0: अपना नाम बताए।
1: दयाशंकर कुशवाहा, छतरपुर मध्य प्रदेश। हेलो
0: जी, फिर से बताएं अपना नाम।
1: दयाशंकर कुशवाहा, छतरपुर से।
0: जी, हमारे आज की बातचीत का विषय है कि हम अपने गुस्से पर नियंत्रण किस तरह से करते हैं। तो गुस्सा सभी को आता है, जब हमें गुस्सा आता है बहुत तो हम किस तरह से अपने आप को रोकते हैं, कुछ बताएंगे?
1: शांत रहना पड़ता है के लिए।
0: जब गुस्सा आता है तब आप शांत हो जाते हैं।
1: शांति रहना

0: बच्चों।
1: हाँ, जो तो आपने सही कही कि भाई शांत रहकर ही गुस्से को अपन रोक सकते हैं।
0: जी
1: सामने वाला हमको शांत देखकर फिर अपने आप स्वतः ही शांत हो जाता है,
0: जी जी
1: है ना। क्योंकि एक जन गुस्सा करता है, सामने वाला भी क्रोध करे तो बात जो है बहुत बढ़ जाती है। तो आप मतलब शांत हो जाते हैं जब आपको गुस्सा आता है?
0: हाँ जी जी
1: तो घर वाले समझ जाते हैं कि आपको गुस्सा आ रहा है?
0: जी जी जी
1: चलिए, फोन करने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।
0: नमस्ते।

0: नमस्कार सर जी।
1: नमस्कार।
0: बात हमारी गीत आपके।
1: बात हमारी गीत आपके नहीं, बात आपकी, गीत हमारे। आपने हाँ उल्टा बोल दिया।
0: आपको बोलना था वो हम बोल गए।
1: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हम जान सकते हैं हम किससे बात कर रहे हैं?
0: अनोखे सिंह।
1: अनोखे सिंह।
0: हाँ हाँ
1: जी। आपसे तो पहले भी बातचीत हुई है मेरी।
0: हाँ, ये जून में पहली बार हो रही बात।
1: नहीं, पहले भी कर चुकी हूँ मैं आपसे बात। कहाँ से बोल रहे हैं?
0: बाग जिला धार।
1: धार से बोल रहे हैं।
0: हाँ
1: जी। हमारी आज की बातचीत का विषय है, जब हमें गुस्सा आता है तो उस पर हम नियंत्रण कैसे करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं गुस्से को, आप कैसे करते हैं?
0: गुस्सा तो अपने आप आता नहीं सर, बाकी कारण वंश अगर आए ऐसा तो उसको उतारना भी जरूरी है सर जी, किसी न किसी रूप में, भले नहा के उतारो के विवाद करके उतारो।
1: तो आप किस तरह उतारते हैं?
0: हम तो सर जी शासन और परमात्मा और पब्लिक का नियम है, तो हमको भी कोई गुस्सा दिला देता है या कुछ ऐसी प्रतिक्रिया होती है तो बिल्कुल हम उस गुस्से को उससे
1: उतारते हैं
0: सर,
1: सामने वाले पे उतारते हैं गुस्सा।
0: हाँ हाँ, अगर वो ऐसी परिस्थिति पैदा कर देता है तो। नहीं तो अनजाने में तो सब एक दूसरे को माफ करते हैं, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं तो माफ कर देते हैं अनजाने में कुछ बात।
1: चलिए, तो आप गुस्सा उतार के फिर आपका गुस्सा शांत हो जाता है?
0: शांत नहीं, गुस्सा जब भी उतारो कि हमको सबक मिले या सामने वालों को सबक मिले, फोकट गुस्सा थोड़ी होता है।
1: फोकट गुस्सा नहीं होते।
0: अभी कोई चीज से उत्पन्न होता है वो चीजों की तो खुराक है ही नहीं हमने।
1: जी,
0: वही आदमी की जैसी खुराक जैसी आयत जैसा वैसा उसका भगवान
1: बिल्कुल बिल्कुल। फोन करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
0: धन्यवाद।

0: नमस्कार, पुनर
1: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है। नाम बताएं।
2: नमस्ते जी।
1: नमस्ते
2: जी, मैं तुलसीराम साहू बोल रहा हूँ, खापरखेड़ा जिला रायसेन मध्य प्रदेश।
1: रायसेन से बोल रहे हैं तुलसीराम।
2: रायसेन जिला मेरा रायसेन है
1: जी,
2: ग्राम खापरखेड़ा, मतलब आपके भोपाल से 160 किलोमीटर।
1: जी जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हमारे आज की बातचीत का विषय है, जब हमें गुस्सा आता है तो हम उस पर नियंत्रण किस प्रकार करते हैं, आप कुछ बताएंगे?
2: गुस्सा का कारण हम गुस्सा कर रहे हैं तो अगर ज्यादा गुस्सा करेंगे तो हानि जरूर होगी, लेकिन जहाँ तक हो सके गुस्से को मतलब धीरे बन, धीरे से काम करो, कुछ भी काम करना, आराम से काम लो, उसमें क्या फायदा भी है, गुस्सा में बहुत सारे काम बिगड़ जाते हैं।
1: बिल्कुल सही बात कही भाई, गुस्सा जब अपन करते हैं तो विवेक काम नहीं करते, हमारी बुद्धि काम नहीं करती है ना।
2: यहाँ जो क्या गुस्से अग्नि का रूप होता, और थोड़ी धीमी बात करो या मतलब धीरे काम करो, कुछ भी काम, उसमें गुस्सा मत लाओ, तो वे एक मतलब संतुष्टि होती उसमें, असंतोष कभी नहीं होता, गुस्सा में असंतोष होता।
1: जी जी,
2: कभी करो कुछ काम, या घर है बच्चों से लड़ो या कुछ काम करो, गुस्सा में कभी मत,
0: किंतु कहने को
2: बहुत सारे काम बिगड़ जाते हैं।
1: बिल्कुल सही, गुस्से में काम बिगड़ जाते हैं, ये बात आपने अच्छी कही।
2: हम किसान, हम किसान लोग हैं, तो अभी ट्रैक्टर चल रहा है, अगर हम सोचे भैया हमें गर्मी लग रही है, घाम लग रहा है, हम छोड़ घर भाग जाए, नहीं, किसान ही काम है, मतलब थोड़ी करना भी पड़ेगा, गर्मी भी लगेगा, काम भी मतलब लगेगा, किसान तो अपन है तो करना पड़ेगा, किसान ही काम
1: करना पड़ेगा। गुस्सा दिखाएं, घर वालों पे दिखाएं कि भाई इतनी गर्मी में हम काम कर रहे हैं, सब घर में बैठे हैं आराम से, तो कोई फायदा तो होगा नहीं, है ना। आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। नमस्कार।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नमस्ते।
1: नमस्ते। रमेश कोटवानी सतना से। अच्छा,
0: सतना से कोटवानी जी, आज हमारे कार्यक्रम का नाम है बात आपकी गीत हमारे, जिसमें आज का विषय है कि जब आप गुस्सा करते हैं तो उसको रोकते कैसे हैं, जब हमको गुस्सा आता है किसी पर बहुत।
1: आता है तो रोकते हो गया, वही है, हो गया, शांत कर लेते अपने आप।
0: अच्छा, चुप हो जाते हैं एकदम से
1: हाँ
0: तो बातचीत बढ़ ही नहीं पाती है,
1: हाँ बढ़ने नहीं देते बात को।
0: बढ़ने नहीं देते हैं। बहुत अच्छी बात करते हैं आप। थोड़ी देर यदि हम उस समय शांत हो जाएं, या
1: आज
0: हम
1: पहली आज हमारा पहली बार फोन लगा है।
0: जी,
1: आप कौन बोल रहे दीदी?
0: मैं छाया पाठक बोल रही हूँ।
1: अच्छा, चाय पड़क जी, जी
0: जी
1: नमस्ते।
0: नमस्ते। चलिए, अच्छी बात बताई आपने कि आप शांत हो जाते हैं तो गुस्सा धीरे से अपने आप समय के साथ गुस्सा भी चला जाता है।
1: जी जी जी
0: नमस्कार।
1: जी नमस्ते।

0: फिर बहादुरपुर जिला अशोकनगर एमपी से सूर्य प्रताप यादव बात कर रहा हूँ।
1: अशोकनगर से सूर्य प्रताप
0: यादव।
1: यादव जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया है मैम।
1: बढ़िया। और अशोकनगर में सब बढ़िया?
0: हाँ सब बढ़िया है
1: जी। कार्यक्रम का

0: नहीं आते हैं। तो अब सबसे पहले तो यही करना चाहिए कि अपने बोलने पर थोड़ा सा अंकुश लगाएं।
1: क्या बात कही आपने, 100 बात की एक बात कह दी बिल्कुल, कि गुस्सा करें लेकिन अपने शब्दों पर कंट्रोल करें, संयमित व्यवहार करें, बोलें ऐसा जो चुभे ना लोगों को, है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: कहते भी है ना कि भाई शब्दों के जो घाव होते हैं
0: वो नहीं भरते,
1: आपके शस्त्र का घाव भर जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तीर का घाव भर जाता है लेकिन शब्दों का जो हम घाव देते हैं किसी को वो नहीं भर पाता, हमेशा याद रहता है सामने वाले को कि इसने हमसे ऐसा कहा था।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: बहुत अच्छी बात। चलिए, फोन करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार
0: जी मैम, धन्यवाद।

0: हेलो, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है।
1: हाँ जी नमस्ते।
0: नमस्ते, जोर से बोलें थोड़ा।
1: हाँ जी, योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: योगेश जांगड़े, छत्तीसगढ़ से, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से। जी, हमारी आज की बातचीत का विषय है कि जब हमको गुस्सा आता है तो हम उस पर कंट्रोल कैसे करते हैं।
1: जी, इस बारे में तो हम यही कहेंगे कि जिस भी समय हम में थोड़ी उत्तेजना और गुस्सा का भाव हो तो उस समय कोशिश ये करे कि थोड़ा सा ध्यान को भटका ले। कहने का मतलब है या तो वहां से हट जाए या फिर दूसरी चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित कर ले। फिर इससे होगा ये कि जो हमारे मनोभाव रहते हैं वो हम किसी और के ऊपर उसको नहीं ये करेंगे,
0: नहीं कर पाते।
1: क्योंकि हम उस मनोदशा में जब गुस्से का भाव में होंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे कि सामने वाला को गलत लगे। तो सबसे बेहतर यही है कि उस समय हम थोड़ा सा अपने मन को काबू करें।
0: बहुत अच्छी बात आपने बताई। वैसे भी देखो ना, होता यह है कि जैसे हमें किसी पर गुस्सा आ रहा है, वो उस समय नहीं है मान लो घर में मौजूद, पर हमें उसके किसी व्यवहार से आ रहा है, और जब तक हम उससे मिलते हैं 2-4 घंटे हो जाते हैं, तो आप देखिए गुस्सा स्वतः ही बहुत कुछ शांत हो जाता है। अगर उसी समय वो सामने होता है तो हम हो सकता है बहुत कुछ कहें उससे, पर जब बहुत समय बाद मिलता है तो अपने आप गुस्सा जो है स्वतः धीरे धीरे चला जाता है। तो ये बात अच्छी बताई कि हम हमारे मन को दूसरी जगह केंद्रित कर लें। जी, नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो नमस्कार
0: नमस्कार,
1: मैं विवेक व्यास बोलता हूँ मैडम, अंबेडकर यूनिवर्सिटी डोंगरगांव महू जिला
0: जी।
1: हेलो
0: हाँ, हम कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारी बातचीत का विषय है जब हम गुस्सा करते हैं किसी पर या हमें गुस्सा आता है बहुत, तब हम क्या करते हैं उस समय, हम गुस्से को नियंत्रित कैसे करते हैं?
1: देखिए मैडम, मैं आपको बताऊं, आप मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
0: छाया पाठक।
1: छाया जी नमस्कार। देखिए मेरा ये कहना है, मेरा तो ये मानना है कि जब भी हमको गुस्सा आता है तो हमारी कोशिश ये रहना चाहिए कि हमारा ध्यान जो है वो हम कहीं और लगाने की कोशिश करें, है ना। जैसे यार सबका अपना अपना रहता है, अब मैं अपना बताऊं कि मैं तो अपने प्रभु में का नाम सिमरन करने लगता हूँ, जैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है ना, या कोई अच्छा म्यूजिक, यदि कोई अच्छा गाना है अपन को पसंद है
0: वो चला
1: गाना दिया। सोच लेता हूँ।
0: अच्छा।
1: या सबसे इजी तरीका मैं आपको बताऊं कि आप चुपचाप 10 तक गिनती गिनिए।
0: अरे वाह,
1: है ना,
0: 10 तक गिनती गिनिए मन में।
1: अपन को देखिए, क्योंकि क्या होता है
0: जी,
1: ये वो जो अपन को गुस्सा आता है, यदि अपन ने उस समय उसको कंट्रोल कर लिया तो आप फिर शांत हो जाएंगे। फिर आपके मन में ये जरूर रहेगा यार कि इसने बहुत गलत किया, लेकिन
0: गलत किया,
1: उतनी वो जो तीव्रता रहती है गुस्से की वो खत्म
0: हो जाती है। बिल्कुल, इसीलिए कई लोग लंबी सांसें लेने लगते हैं, कई लोग संगीत सुनते हैं, कई अपनी पसंद का काम करते हैं, कई कुछ एक्सरसाइज करने लगते हैं, कई घर से बाहर चले जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह से लोग अपने गुस्से को शांत करते हैं।
1: तो होता है ना मैडम, जो होता है वो अग्नि से भी तेज होता है, गा भी गया है ना, और तो अपन को समझ में नहीं आता, लेकिन जब अपना शांत होता है ना क्रोध तो अपन सोच गया अपन ने बहुत गलत किया।
0: चले, बहुत अच्छी बात आपने बताई
1: जी
0: विवेक जी, फोन करने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है। आपका नाम जान सकती हूँ मैं?
1: हरदयाल यादव जिला से अपनी मत कर दी
0: हरदयाल यादव
1: जाटव जाटव
0: जादव
1: हरदयाल जाटव
0: जी, कहाँ से?
1: सेपरी जिला से।
0: सीपरी से। हमारे कार्यक्रम में आज का विषय है कि जब हमको गुस्सा आता है तो उसको हम
1: हाँ
0: किस तरह से उस पर कंट्रोल करते हैं। आप किस तरह से
1: गुस्सा
0: करते हैं, क्या करते हैं उस समय?
1: को तो मैडम जी ये है कि अपने आप को काबू में करना पड़ता है और शांत करना पड़ता है। माने
0: कैसे काबू में करते हैं आप?
1: ऐसे करते कि अपन बगल माने शांत करने के लिए निकल जाते हैं, अंत माने
0: हाँ
1: बरकत दे जाते हैं किसी को,
0: जी,
1: माने काबू में कर लेते हैं शांत करके।
0: नहीं, हम अपने आप को कैसे, हमको जब गुस्सा आता है किसी पर, हमको आता है तो हम अपने मन को कैसे कंट्रोल करते हैं?
1: अपने मन को तो कंट्रोल मैडम जी भगवान का नाम लेते हैं, भगवान से कहते हैं भगवान
0: भगवान
1: मुझको
0: का नाम
1: तसल्ली
0: लेते
1: दो,
0: हैं।
1: कंट्रोल में अपने आप हो जाता है।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। इस बहाने एक पन दो काज।
1: हाँ जी
0: देखिए, भगवान का नाम भी हो गया
1: हाँ जी
0: तो हम तो ये चाहेंगे कि आपको हरदयाल जी बार बार गुस्सा आए
1: नहीं नहीं जी,
0: ताकि
1: गुस्सा तो
0: ताकि आप
1: अपने को
0: ईश्वर
1: नहीं
0: का नाम
1: करना है,
0: लेते रहें इसी तरह।
1: अगर सामने वाला लड़ता है तो अपन शांत रहे होते हैं, ठंडे मुंह से बात करते हैं। गुस्सा पर कभी जिंदगी में आया नहीं है।
0: नहीं आया आपको?
1: नहीं नहीं
0: बहुत
1: बिल्कुल
0: अच्छी,
1: नहीं।
0: बहुत अच्छी बात है। आए
1: मैडम
0: बिना
1: आपका नाम?
0: एक
1: मैडम
0: छाया पाठक।
1: आपसे पहले ही बात हो चुकी है?
0: जी, हो
1: हाँ
0: चुकी
1: जी,
0: बात है।
1: मैंने सर जैसे भी लगाया घंटी गई, मैं उठाया कॉल नहीं, पर मैंने लगाना बंद कर, जब देखो तो ट्राई करके।
0: अच्छा, फोन करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।

कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में आज हमारा विषय था कि हम अपने गुस्से पर नियंत्रण किस तरह करें, उसको शांत करने के लिए क्या उपाय करें। बहुत से श्रोताओं ने हमसे अपने विचार साझा किए। कभी कभी ये भी होता है कि हम उस जगह को छोड़ दें या फिर हम उल्टी गिनती शुरू कर दें, जैसे 10 से लेकर 1, 10, 9, 8, 7, या फिर ये भी हो सकता है कि भाई हम कुछ डायरी लिखने लगे, कल्पना मन में कर लें कि भाई हमें गुस्सा शांत रखना है, नहीं हमें नहीं बोलना। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं, बाहर टहलने निकल जाएं, अपनी मनपसंद संगीत सुन लें, या फिर शांत होकर के गहरी गहरी सांसें लें। ये बहुत से उपाय हैं जो हमारे गुस्से को नियंत्रित कर सकते हैं। इन्हीं विचारों के साथ आज के कार्यक्रम से आपसे अनुमति लेती हूँ। आज्ञा दीजिए छाया पाठक को। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, प्रस्तुति छाया पाठक की थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ करेंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य नवजात मृत्यु दर को कम करना है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत आज प्रदेश भर में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि सुरक्षित मातृत्व प्रत्येक महिला का अधिकार है। उन्होंने अपील की है कि वे शिविरों में पहुंचकर स्वास्थ्य जांच अवश्य कराएं। इंदौर में आज ब्रिक्स कृषि सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, इंडोनेशिया, चीन, ईरान, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। 5 दिवसीय सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों को मजबूत बनाने जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। प्रदेश में संविदा कर्मियों के वेतन में 4.5% से अधिक की बढ़ोतरी की गई है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अप्रैल 2026 से 1,00,000 संविदा कर्मियों को बढ़े हुए वेतन का लाभ मिलेगा। राज्य एचपीवी टीकाकरण अभियान में शीर्ष राज्यों में शामिल है। स्वास्थ्य अमले, सहयोगी विभागों की प्रतिबद्धता, सतत मॉनिटरिंग के परिणाम स्वरूप प्रदेश में 7.63 लाख से अधिक पात्र बालिकाओं का सफलतापूर्वक टीकाकरण किया जा चुका है। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश, गरज चमक का अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि राज्य में मानसून 15 से 18 जून के बीच प्रवेश कर सकता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है आपके पसंद के गीतों से सजा कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जिसे लेकर आपके साथ हूं मैं आकांक्षा। नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, जिसे हमने लिया है फिल्म साया से। आवाज अलका याग्निक और उदित नारायण की है, बोल आनंद बख्शी के हैं। इसे संगीत से सजाया है MM करीम ने। पसंद भेजी है आप सभी श्रोताओं ने। उपाध्याय नगर देवास से मुरारीलाल वर्मा, मनीष वर्मा, शिवम वर्मा। राजा राम नगर देवास से ही राजू अग्रवाल, मधु महाजन, राकेश अग्रवाल। रूपा खेड़ी से हरिराम माली, विष्णु माली, कपिल, निरंजन माली। सुपरमार्केट देवास से प्रकाश चंद जसवानी, पंकज जसवानी, सनी जसवानी। गंगेड़ी जिला उज्जैन से गोपाल बागवान, गोविंद सालग्राम और दशरथ बागवान। आप सभी की पसंद है फिल्म साया का ये गीत सुनने की। लीजिए सुनिए।

सारणी जिला बैतूल से गणेश सिमैया, विजय, अमित खातरकर, निहारिका खातरकर, शिवपाल यादव, अनामिका अवंतिका, शिवालिका पारसमणि वाद्य, पंजाब राव और संदीप पाटिल, सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकेश, साक्षी मनन और तान्या, आप सभी की फरमाइश पर लीजिए सुनिए फिल्म ना तुम जानो ना हम का गीत अभिजीत और पमेला जैन की आवाजों में। बोल आनंद बख्शी के हैं, संगीत है राजेश रोशन का।

नीलेश मिश्रा का लिखा गीत सुनिए, जिसे संगीत से सजाया है MM करीम ने। आवाज़ श्रेया घोषाल की है और फिल्म का नाम है जिस्म। पसंद आप सभी श्रोताओं की है। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राजू शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरव शर्मा की। इसी गीत को सुनना चाहा है औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश ने। साथ ही सिंगापुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा ने। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म जिस्म का ये गीत।

महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले, प्रिया, जीत और इच्छा। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म राज का गीत, जिसे गाया है अलका याग्निक ने, गीत लिखा है समीर ने और इसे संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने। लीजिए सुनिए।

मोबाइल एप्लीकेशन और मीडियम वेव पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रीवा केंद्र को। दिन के 12:25 हुए हैं।

0: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
1: के 12:30 होने वाले हैं। आइए अब सुने आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम।
2: पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
3: सफर में
2: आपके साथ
3: आकाशवाणी।
4: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक जंग लगी तलवार की चौथी कड़ी।
5: सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना, नारायणी को प्रसव का दर्द शुरू होता है। वो एक लड़के को जन्म देती है जो पैदा होते ही मर जाता है। नारायणी भगवान की इच्छा को अपने पाप के बोझ से मुक्त मिलने की बात सोचकर इस दुख को सहन कर लेती है। शिबू यशवंत के यूनियन में प्रतिनिधि बनने की खुशी में भगवान सत्यनारायण की कथा का आयोजन करवाता है। ब्राह्मण पंडित दलितों की पूजा करवाने से इनकार कर देता है तो यशवंत स्वयं पंडित की भूमिका निभाता है। चारेंगखेरा से ठाकुर साहब का साई नदी पर तबादला हो जाता है। रामू बामू नामक दो जुड़वा भाइयों के चेहरे ठाकुर साहब को देखते ही खिल जाते हैं। विजिलेंस ब्रांच का एसपी ठाकुर साहब से मिलता है और सीमेंट घोटाले के मामले में सन 1974 की फाइल मांगता है। फाइल लेकर एसपी चला जाता है। यूनियन की बैठक होती है। बलबीर स्वामी मजदूरों की मांगे मनवाने के लिए हड़ताल को अंतिम अस्त्र बताता है। उधर नारायणी एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है। शिबू बहुत खुश होता है और सभी को यह खुशखबरी सुनाने जाता है। अब आगे

0: जगन्नाथ।
1: अरे बेटा जगन्नाथ।
2: क्या है बापू?
0: बेटा एक गिलास पानी तो पिला।
2: अभी लाया बापू।
0: बेचारा जगन्नाथ, अरे अभी 10 बरस का ही तो है, पढ़ने लिखने का कितना शौक है इसे। मैं खुद तो पढ़ लिख नहीं सका, लेकिन लेकिन जगन्नाथ को पढ़ा लिखा कर बड़ा बाबू बनाने की बड़ी तमन्ना है मेरी, लेकिन कहाँ से।

पेट भरने लायक भी तो नहीं कमा पाता हूं, फिर भला इसे स्कूल कैसे भेज सकता हूं? हाँ, कैसे भेज सकता हूं? और वो जगन्नाथ की मां बेचारी ने 2 बरस पहले बीमारी और भूख के कारण दम तोड़ दिया। अरे, मजबूरन साई नदी में बहा देना पड़ा। तब बेचारे नन्हे जगन्नाथ ने अपनी मां की लाश की कैसी दुर्दशा देखी थी, कैसी दुर्दशा।

0: अरे शंभू, तू यहाँ क्या कर रहा है?
1: जगन्नाथ, चल नदी में नहाते हैं।
0: नहीं, मेरा बापू कहता है कि नदी में नहाने से मैं डूब जाऊंगा। ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाऊंगा।
1: गहरे पानी में जाएगा तब डूबेगा ना। देख, उस तरफ गहरा पानी नहीं है, वहाँ हम नहीं डूबेंगे, चल ना।
0: नहीं, अगर मेरे बापू को पता चल गया तो वो मुझे बहुत मारेगा।
1: तेरे बापू को कौन बताएगा, तू खुद?
0: नहीं नहीं, भला मैं क्यों बताऊंगा?
1: तो मैं भी नहीं बताऊंगा, फिर भला कैसे पता चलेगा तेरे बापू को?
0: इसका मतलब बापू को पता ही नहीं चलेगा कि मैं नदी में नहाया था।
1: यही तो।
0: चल चल, बहुत मजा आएगा। चल चल चल, चल, चल, चल।

0: अरे बाप रे, इतनी सारी चील, इतने सारे गिद्ध,
1: हाँ
0: कैसी डरावनी आवाज निकाल रहे हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
1: डर तो मुझे भी लग रहा है। मेरा बाबा कहता है कि चील और गिद्ध वहीं आते हैं जहाँ कोई लाश होती है।
0: अच्छा, तो क्या यहाँ भी कोई लाश पड़ी होगी?
1: शायद।
0: चल शंभू, घर वापस चलते हैं।
1: तू डरता क्यों है? गिद्ध लाश को नोचते हैं, जिंदा लोगों को नहीं। अरे उधर देख जगन्नाथ।
0: हाँ, किधर?
1: उधर
0: क्या है उधर?
1: वो नदी के किनारे किसी की लाश पड़ी है।
0: हाँ, हाँ। लगती तो लाश ही है, किसकी होगी शंभू?
1: क्या पता, चल चल पास चलकर देखते हैं।
0: अच्छा चल चल चल चल। शंभू,
1: हाँ
0: शायद ये किसी औरत की लाश है।
1: लाश, उसने धोती पहन रखी है।
0: हाँ चल, थोड़ा और पास चलकर देखते हैं।
1: नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा।
0: चलना,
1: मुझे डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगा।
0: चलना शंभू।
1: नहीं मैं, अरे जगन्नाथ।
0: हाँ?
1: ये तो तेरी तेरी माँ की लाश है।
0: माँ?
1: माँ?
0: ये तो सचमुच मेरी माँ की लाश है। माँ, माँ,
1: जगन्नाथ, जगन्नाथ, तू कहाँ जा रहा है?
0: मेरी माँ को किस तरह नोच नोच कर खा रहे हैं।
1: जगन्नाथ,

0: हाँ ला दे।
1: ये लो बापू।
0: हाँ, जगन्नाथ।
1: हाँ?
0: हाँ बेटा। हाँ मेरे पास बैठ।
1: अच्छा बापू।
0: जगन्नाथ
1: बापू। बापू
0: जगन्नाथ
1: बापू।
2: क्या नींद में हो शिवू भैया?
3: अरे लिचू भैया आओ आओ आओ बैठो बैठो बैठो।
2: लगता है सो रहे थे।
3: अरे नहीं लिचू भैया, सो तो मुन्ना रहा है। अपनी आंखों में नींद कहाँ। हाँ वैसे एक बात है, भगवान ने हमें धन भले ही ना दिया हो मगर नींद खूब दी है। अरे इतनी नींद दी है कि बस हम तो छक गए। अरे नींद से ऊब गए हैं हम तो।
2: मतलब शिवू भैया कि खटिया भी हमसे पनाह मांग गई है।
3: लिचू भैया और सुनाओ। लिचू भैया क्या कोई नई खबर है?
2: अरे खबर क्या है शिवू, हड़ताल होगी हड़ताल, यानी महाभारत होगा।
3: अच्छा?
2: अरे फिर पिसेंगे हम गरीब। कौन है हम गरीबों की सुध लेने वाला? कोई नहीं कोई नहीं, सब अपनी अपनी रोटियां सेकते हैं।
3: हाँ लिचू भैया ये सब तो दादा परदादा के समय से चला ही आ रहा है।
2: हाँ भैया
3: पहले खेतों में मजदूरी करते थे, अब कंपनी में काम करते हैं। पहले साहूकार खून चूसते थे, अब कंपनी वाले चूसते हैं। लिचू भैया हमारे लिए तो वो मरे हुए जानवरों का धंधा ही अच्छा था।
2: अजी काहे का अच्छा था, पहले तो मरे हुए जानवरों की खाल उधेड़ो, हड्डियां इकट्ठी करो, फिर जिस गांव में जाकर बैठो वहीं लात और घूंसे मिलते थे। अरे गालियों की तो कोई गिनती ही नहीं थी। दूसरे गांव जाओ तो वहां भी यही कहानी। अरे हर गांव की एक सी कहानी है शिवू, एक सी।
3: हाँ लिचू ठीक कहता है। तो अच्छा लिचू
2: हाँ
3: एक बात सोची है तूने कभी?
2: मैं तो रोज ही बहुत सी बातें सोचता हूँ शिव, मगर तू किस बात की बात कर रहा है?
3: अरे लिचू मैं ये सोच रहा था कि अगर कोई हमारी जिंदगी की सच्ची सच्ची कहानी लिखे तो क्या हो?
2: तू भी कैसी अजीब बात सोचता है शिव। अरे क्या हम कोई राजा महाराजा हैं, बड़ी कंपनी के मालिक हैं, कोई जागीरदार हैं या जमींदार हैं जो कोई हमारी जिंदगी पर कहानी लिखेगा? अरे किसे है हमसे हमदर्दी शिबू, किसे है?
3: क्यों क्या फिल्मों में गरीब लोगों की कहानी नहीं दिखाते?
4: अरे सच बात तो यह है लिचू कि फिल्मों में जितना दिखाते हैं ना हमारी जिंदगी की सच्ची कहानी उससे कहीं ज्यादा दर्दनाक है।
2: हाँ तो ठीक कहता है शिबू, जितना दर्द हमारी जिंदगी में है अरे उतना तो रोज पीटे जाने वाले जानवरों की जिंदगी में भी नहीं होता।
4: लिचू कभी सोचा है तूने ये हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है?
2: बहुत सोचा है शिबू, एक बार नहीं हजार बार सोचा है।
4: तो कुछ समझ में आया क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है हमारे साथ?
2: हाँ आया, और इसके तीन कारण हैं।
4: तीन कारण?
2: हाँ
4: कौन कौन से तीन कारण
2: शिबू? पहला कारण तो ये है कि हमारे देश में मजदूरों की भरमार है। अरे एक मजदूर को हटाओ तो उसकी जगह लेने के लिए 10 मजदूर तैयार खड़े हैं। अब देखो ना हम मजदूरों के संतान अधिक होती है जबकि साहब लोगों के घरों में कम। अरे उनकी मांग है और हमारी दुत्कार।
4: हाँ लेचू भैया ये बात तो सच है। और दूसरा कारण?
2: और दूसरा हम मजदूरों का अनपढ़ होना। अरे हम मजदूरों का अनपढ़ होना, पढ़े लिखे को सब पूछते हैं शिबू जबकि अनपढ़ों को दुत्कार दिया जाता है उनकी अपनी किस्मत पर रोने के लिए।
4: हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब देखो ना इस दलित लाइन में यशवंत अकेला पढ़ा लिखा है तभी तो वो यूनियन का नेता बन गया जबकि हम और तुम यहां बैठे इधर उधर की बातें मनाकर समय काट रहे हैं। ये बात तो है ही। वैसे लिचू तीसरा कारण क्या है?
2: अरे तीसरी बात तो ये है शिबू कि हमारे अंदर ऊपर उठने की आत्मशक्ति ही नहीं है।
4: हा?
2: अरे हमें खुद पर ही विश्वास नहीं है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, कुछ नहीं।

0: अरे वाह, अरे लिचू तू तो बहुत बड़ा ज्ञानी ध्यानी बन गया रे।
1: अरे नहीं,
0: कमाल है, तेरी बातें किसी पढ़े लिखे विद्वान से कम थोड़ी हैं।
1: अरे अब इन बातों को छोड़ो भैया, मुझे तो मजदूरों के ऊपर संकट के बादल घिरते नजर आ रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं है शिवू जब यहाँ पर चारों ओर लाशें ही लाशें होंगी और आसमान में चील और गिद्ध उड़ेंगे।
0: चील और गिद्ध? चील और गिद्ध?
1: हाँ।
0: क्या कह रहे हो लिचू भैया?

0: अरे कमाल है, ये रामू बामू अभी तक नहीं आए, जाने कहाँ रह गए?
1: हम हाजिर हैं ठाकुर साहब।
0: अरे कहाँ थे तुम दोनों?
2: आपके सेवक आपकी सेवा में हाजिर है सरकार।
3: हाँ सरकार, हुक्म करें।
0: अब दरवाजे पर खड़े रहने का ही इरादा है या अंदर ना आने की कसम खाई है?
2: चल बाबू, ठाकुर साहब अपने पास बुला रहे हैं।
3: अरे हाँ, चल रामू।
2: सरकार,
0: और बताओ नई खबर क्या है?
3: ठाकुर साहब, आपके आदेश का पालन करते हुए हम दोनों ने यूनियन की सभाओं में जाना शुरू कर दिया है।
0: ये तो बहुत अच्छा किया।
2: सरकार,
0: अंदर का समाचार क्या है?
2: हुजूर, यूनियन हड़ताल पर आमादा है।
3: हाँ,
0: अच्छा।
3: ठाकुर साहब, आपके पैर दबा दूं?
0: चल दबा दे।
2: हुजूर, रेडियो तो बंद कर दीजिए, इसकी कान फोड़ू आवाज आपकी मधुर आवाज हमारे कानों तक नहीं पहुंचने दे रही सरकार।
0: तुम दोनों बहुत अच्छे हो।
2: मेहरबानी सरकार,
0: मैं अभी बंद करता हूँ।
3: धन्यवाद ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, एक बात कहूं, आपके पैर दबाने में, आपकी सेवा करने में मुझे बहुत आनंद मिलता है। देखो ना, कितना बलिष्ठ शरीर है आपका।
0: पुराना देसी घी खाया है रामू? जरा बाहर तो देख, आसपास कोई छिपा तो नहीं है?
2: अभी देखता हूँ सरकार, अगर कोई होगा तो हड्डी पसली तोड़कर सीधे अस्पताल पहुंचाऊंगा सरकार।
3: देखने गया हुजूर, अभी आके बताता है।
2: कोई नहीं है सरकार, कोई नहीं है। करा कौन हिम्मत करेगा, आपका रुआ भी काफी है सरकार।
3: सरकार।
0: सुना है यूनियन की कोई गुप्त सभा होने वाली है?
3: हाँ सरकार, हड़ताल की तारीख तय करने और नोटिस जारी करने के लिए गांव के चौधरी के खेत में सभा होने जा रही है सरकार। लेकिन सरकार, ये बात आपको कैसे पता चली?
2: हाँ सरकार,
0: तू मुझे नहीं जानता, मैं बहुत पहुंची हुई चीज हूँ।
3: हाँ सरकार, हाँ मेरे सरकार, इस बात को हमसे बेहतर और कौन जान सकता है? क्यों
2: रामू? ठीक कह रहा भाई तू।
0: मानता हूँ कि चापलूसी की प्रतियोगिता हो तो सोने का तमगा तुम दोनों को ही मिलेगा।
2: अरे अरे सरकार की बातें।
0: तुम दोनों को अपना काम पता है ना?
2: पता है सरकार। बिल्कुल, हम दोनों यूनियन की गुप्त सभा में जाएंगे।
3: हाँ, और वहाँ की तमाम गोपनीय खबर आप तक पहुंचाएंगे।
0: शाबाश
3: सरकार। सरकार, एक पैग और बनाऊं?
0: नहीं नहीं, मुझे नशा होने लगा है। तुम्हें पीनी हो तो अपने लिए बना लो।
2: तो सरकार, हम ये बोतल लिए जाते हैं, थोड़ी देर साई के तट पर बैठेंगे, वही इसके साथ अपना मनोरंजन कर लेंगे सरकार।
0: बहुत बड़े उस्ताद हो तुम दोनों।
3: अरे हम क्या है सरकार, ना तो हम पित्ती है ना पित्ती का शोरबा, अगर कुछ है भी तो आपकी शराफत का एक जर्रा भर है।
2: बहुत छोटा सा जर्रा सरकार।
0: भाई मैं तुम दोनों को इसलिए पसंद करता हूँ कि तुम सामने वाले को खुश कर देते हो।

0: तो ठाकुर साहब बोतल ले जाए।
1: आ जा जा जा ले जाओ
2: सरकार जिंदा।

0: अरे क्या बात है शिबू, इतना खांस क्यों रहा है?
1: अरे यशवंत नेता जी,
0: मुझे नेता कहकर हमारे इंसानी रिश्ते को ना तोड़ शिबू। अरे हम दोनों तो धर्म भाई हैं।
1: यशवंत जी आप पढ़े लिखे?
0: ना ना ना शिबू ना, अभी बिल्कुल ना बोल। देख शायद तेरी तबीयत ज्यादा खराब है, कहे तो डॉक्टर या वैद्य के पास ले चला। अरे
1: यशवंत बाबू,
0: हाँ
1: मेरी बात अधूरी रह गई। मैं कह रहा था कि आप पढ़े लिखे हैं और मजदूर यूनियन में आप पहले दलित प्रतिनिधि हैं।
0: हाँ
1: हम दलित मजदूरों को आपसे अपने उद्धार की बड़ी आस है। यशवंत बाबू,
0: हाँ शिबू,
1: जिस तरह अंबेडकर भगवान ने देश के दलितों की अगुवाई कर शोषण की दलदल से उबारा था,
0: शिबू
1: उसी तरह आप भी साइंस साइट पर काम करने वाले दलित मजदूरों के उद्धार के लिए लड़ रहे हैं। जहां तक मैं समझता हूं, एक देशभक्त नेता का यही सच्चा गुण होता है।
0: शिबू
1: तो फिर मैं आपको नेताजी ना कहूं तो और क्या कहूं यशवंत बाबू?
0: अरे शिबू, थोड़े शब्दों में तूने मेरी प्रशंसा के पुल बांध दिए। मुझे भगवान बनाने की कोशिश ना कर शिबू, इस कलयुग में इंसान को भगवान के दर्शन नहीं होते। देख मुझे इंसानों से अपने से अलग ना कर, मुझे अपने बराबर रहने दे मेरे भाई।
1: यशवंत बाबू आपकी बातें हैं, आपके विचार सरल और सच्ची इंसानियत की मिसाल हैं। आप जैसे इंसान पर किसी भी समाज को गर्व हो सकता है, खासकर दबे कुचले और उपेक्षित समाज को। दलित मजदूरों में आपका सम्मान बहुत बढ़ गया है।
0: अरे शिबू, मुझे सम्मान नहीं, तुम लोगों का सहयोग और प्यार चाहिए। देख हड़ताल की ये जो बातें चल रही है ना, उस पर मुझे संदेह है।
1: संदेह? कैसा संदेह?
0: हड़ताल की तारीख घोषित होने वाली है, लेकिन अभी तक हड़ताल का हमें मकसद नहीं मालूम है।
1: यशवंत बाबू, उस दिन बलबीर स्वामी ने कहा तो था हम मजदूरों को परमानेंट करवाने के लिए हड़ताल होगी, लेकिन कभी किसी की छटनी नहीं होगी।
0: अरे शिबू, इस तरह पहले भी कई हड़तालें हो चुकी हैं, हर बार या तो यूनियन के नेता बिक जाते हैं या फिर धन के अभाव में हड़ताल दम तोड़ देती है।
1: अरे यशवंत बाबू, आपने सुना नहीं था क्या, मजदूरों से चंदा लिया जाएगा, जरूरत पड़ने पर मजदूर यूनियन के मुख्यालय से भी मदद ली जाएगी।
0: मजदूरों के खून पसीने की गाढ़ी कमाई का चंदा तो मिल जाएगा यूनियन को शिबू, मगर इसी चंदे से बने यूनियन फंड से कोई मदद मिलेगी इसकी संभावना मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आती।
1: तो क्या यूनियन के स्थानीय नेताओं का दावा खोखला है? शास्त्री जी का सहायक झूठ बोल रहा है।
0: झूठ और दावों का सहारा नहीं लेंगे तो मजदूर बहकावे में कैसे आएंगे? बहकावे में आए बिना भला मजदूर अपनी खून पसीने की गाड़ी कमाई का चंदा देंगे? और अगर चंदा नहीं आएगा तो यूनियन के नेता गुलछर्रे कैसे उड़ाएंगे शिबू?
1: हड़ताल के पीछे यूनियन नेताओं के मौज मस्ती का षड्यंत्र?
0: हाँ शिबू हाँ।
1: यशवंत बाबू,
0: हाँ।
1: आपको इसके खिलाफ मजदूरों को सचेत करना चाहिए।
0: अरे कोई फायदा नहीं होगा शिबू, कोई फायदा नहीं होगा। मेरे पास इतने साधन नहीं हैं जितने यूनियन के नेताओं के पास हैं, और मोर्चा हमेशा साधनों से जीता जाता है शिबू।
1: ठीक कहते हैं आप, मोर्चा हमेशा साधनों से जीता जाता है, तो क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना होगा?
0: अरे फिलहाल हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है।
1: यशवंत बाबू, थोड़े ही दिनों में मैं आपका स्वभाव अच्छी तरह से पहचान गया हूं।
0: अब
1: मैं जानता हूं इस षड्यंत्र के खिलाफ आवाज उठाने वाले आप पहले आदमी होंगे, और आपके हाथ में होगी तलवार, वो तलवार जिस पर लाचारी की जंग नहीं लगी होगी। बल्कि बल्कि
0: शिव
1: बल्कि विद्रोह की चमक होगी, चमक।
0: देख शिवू, भविष्य के गर्भ में क्या है इस विषय में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।
1: ठीक कहते हैं आप, ठीक कहते हैं आप।
0: अरे शिबू, ये क्या शिबू, बलगम के साथ खून? क्या इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ है?
1: 5-7 बार हो चुका है।
0: अरे और तूने इस बात पर गौर नहीं किया?
1: अरे यशवंत बाबू, इसमें गौर करने वाली बात ही क्या है?
0: अनपढ़ समाज में स्वास्थ्य जागरूकता का अभाव है। गंदगी में रहने के लिए विवश होने के कारण भी अनपढ़ गवार मजदूर अनजाने में खतरनाक बीमारियों को पालने लगता है। अरे शिबू, तुझे टीबी की बीमारी हो सकती है। टीबी की?
1: टीबी?
0: हाँ टीबी। देख जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर को दिखा, नहीं तो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा तू। शिबू।
1: अरे यशवंत बाबू, ये तो खुशी की बात है। हे भगवान, तेरा धन्यवाद।
0: शिबू,
1: जाति शोषण और अपमान भरी जिंदगी से मैं आप लोगों से पहले मुक्त हो जाऊंगा। क्यों? हो रही है ना आपको भी मेरे भाग्य से ईर्ष्या?
0: शिबू देख, तू पागलपन की बात ना कर। मेरी मान तो अभी जा डॉक्टर के पास। देख अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो मुझसे ले ले। अब यह ठहर, मैं तेरे साथ चलता हूं डॉक्टर के पास।
1: कोई जरूरत नहीं।
0: अरे अपने आप को संभाल शिबू, चल चल मेरे साथ। आ,

अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जंग लगी तलवार। भाग लेने वाले कलाकार थे वीना होरा, दीपा रॉय, गीता वर्मा, श्याम अरोड़ा, केदारनाथ, मोहनलाल, दिनेश वर्मा, रजनीश शर्मा, कमल साथी, राजेश आहूजा, वीपी कालरा, उमेश श्रीवास्तव, सुरेंद्र सागर, बनवारी झोल, मंगत राम और संदीप। ध्वनि मुद्रण किया था रविंदर सिंह राजावत, एसपी राठौर और भगत सिंह ने। प्रस्तुति सहायक थे समीर झा।

स्वागत है संग्रहालय से इस कार्यक्रम में जंग लगी तलवार, इस धारावाहिक की चौथी कड़ी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत आज प्रदेश भर में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि सुरक्षित मातृत्व प्रत्येक महिला का अधिकार है। उन्होंने अपील की कि वे शिविरों में पहुंचकर स्वास्थ्य जांच अवश्य कराएं। इंदौर में आज ब्रिक्स कृषि सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, इंडोनेशिया, चीन, ईरान, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। 5 दिवसीय इस सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों को मजबूत बनाने जैसे अहम विषयों पर चर्चा की जाएगी। प्रदेश में संविदा कर्मियों के वेतन में 4.5% से अधिक की बढ़ोतरी की गई है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अप्रैल 2026 से 1,00,000 संविदा कर्मियों को बढ़े हुए वेतन का लाभ मिलेगा। नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम में दावे आपत्ति 15 जून तक लिए जाएंगे। दावे आपत्तियों का निराकरण 25 जून तक किया जाएगा और फोटोयुक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 18 जुलाई को होगा। जम्मू कश्मीर में होने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा को लेकर शीर्ष अधिकारियों ने व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। इसके साथ ही पुलिस, सेना, सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों से चर्चा कर यात्रा के सुरक्षित और सुचारू संचालन पर बल दिया गया है। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में आंधी, गरज चमक और बारिश का अलर्ट जारी किया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि प्रदेश में मानसून 15 से 18 जून के बीच प्रवेश कर सकता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर का योगदान है।

महिला सभा सुनने वाली सभी प्यारी सखियों का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम में। आज आपके साथ हूँ मैं प्रीति जोशी, आप सभी को मेरा नमस्कार। सखियों, आज करेंगे आपसे बहुत सारी बातें और सुनवाएंगे कुछ प्यारे से मधुर गीत, लेकिन पहले बात करते हैं डिजिटल डिटॉक्स की। जी हाँ सखियों, आज के समय में मोबाइल, कंप्यूटर और सोशल मीडिया हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। हालांकि इनके अत्यधिक उपयोग से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, ऐसे में डिजिटल डिटॉक्स यानी कुछ समय के लिए डिजिटल उपकरणों से दूरी बनाना आवश्यक हो जाता है। इसके लिए सखियों प्रतिदिन कुछ समय मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रहें, भोजन के समय फोन का उपयोग बंद करें, किताबें पढ़ने, व्यायाम करने या किसी रचनात्मक गतिविधि में समय दें, सोने के एक घंटा पहले स्क्रीन बंद करने की आदत जरूर डालें और यही सारी चीजें आप अपने बच्चों को भी सिखाएं। इससे आपको कई लाभ होंगे, आंखों पर पड़ने वाला तनाव कम होगा, नींद अच्छे से आएगी, मानसिक तनाव भी कम होगा, परिवार और मित्रों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, प्रकृति और वास्तविक जीवन के अनुभवों से जुड़ाव बढ़ता है। सखियों, डिजिटल तकनीक हमारे जीवन को आसान बनाती है, लेकिन इसका संतुलित उपयोग ही हमें स्वस्थ और खुशहाल बना सकता है। इसीलिए समय समय पर डिजिटल डिटॉक्स अपनाना बेहद जरूरी है। अब आगे आपसे और भी बातें होंगी, लेकिन पहले सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: और सखियों अब बात करते हैं व्यापार संबंधी उद्यमिता विकास सहायता योजना की। सखियों, इस योजना का उद्देश्य युवाओं, महिलाओं तथा रोजगार शुरू करने के इच्छुक व्यक्तियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करना है। हमारे प्रदेश में यह सहायता विभिन्न योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के माध्यम से दी जाती है। इस योजना के बहुत सारे लाभ हैं सखियों। नया व्यापार या उद्योग शुरू करने के लिए बैंक ऋण की सुविधा है, अनुदान सहायता प्राप्त कर सकते हैं आप इस योजना के जरिए, ब्याज अनुदान ऋण गारंटी सहायता है, उद्यमिता विकास एवं व्यवसाय प्रबंधन का प्रशिक्षण, रोजगार सृजन को बढ़ावा देना भी इस योजना का उद्देश्य है। पात्रता की बात करें सखियों तो आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी हो, स्वरोजगार या नया व्यवसाय स्थापित करने की इच्छा रखता हो, साथ ही वह शैक्षणिक योग्यता रखता हो। आवेदन करने के लिए सखियों आवेदक राज्य के MSME पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, परियोजना रिपोर्ट तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं। तो सखियों आप भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं और अब कार्यक्रम में शामिल होते हैं और भरते हैं हौसलों की उड़ान।
1: उड़ान खुशियों की,
2: उड़ान सपनों की,
1: उड़ान हौसलों की,
2: मेरी उड़ान।
0: सखियों श्रृंखला मेरी उड़ान में आज हम मिल रहे हैं क्लासिक

0: हैं डांस टीचर से, आइए इनसे जानते हैं इनका परिचय।
1: नमस्कार सखियों, मैं क्लासिकल डांस टीचर हूँ। इंदौर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में मेरी खुद की डांस एकेडमी भी है और मैं क्लासिकल गुरुकुल भी चलाती हूँ। मेरा नाम दिया सिंह ठाकुर है।
0: दिया जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आपने बताया कि आप एक डांस टीचर हैं, तो नृत्य कला के क्षेत्र में आपने कैसे सोचा कि मुझे इस फील्ड में आना है, इसे बतौर करियर लेना है?
1: मुझे बहुत ही शौक था बचपन से डांस करने का। पढ़ाई में मेरा मन लगता नहीं था, कहीं भी म्यूजिक सुनती थी तो मुझे अच्छा लगने लगता था। तब मैंने मेरे अपने पापा से बोला कि स्कूल में शंकर जी और पार्वती जी का डांस है, तो वो एज अ वंदना एज अ पूजा होगी, मुझे करने दीजिए। तब पापा एग्री हुए और वहां से डांस का सिलसिला शुरू हुआ और आज मैंने डबल एमए कंप्लीट करके पीएचडी में हूँ कथक में। और मैं आप सभी को ये भी मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आपके अंदर कोई कला है तो उसे मत छुपाइए, लोगों को बताने की अलग अलग तरीके से कोशिश कीजिए। कोई तो ऐसा तरीका होगा आपके बताने का जो आपके पेरेंट्स को आपके घर वालों को समझ में आएगा।
0: बहुत अच्छी बात कही। तो आप इस फील्ड में जब आई तो आपने किस तरह के कोर्स करे, क्योंकि हमारी कोई श्रोता सखी इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती है, एक डांस टीचर बनना चाहती है, तो उन्हें किन बातों को जानना जरूरी है, आप बताइए।
1: देखिए, जैसे बॉलीवुड वेस्टर्न फिल्मी आजकल की तो देखा जाए तो पूरी दुनिया ही दीवानी है डांस और म्यूजिक की। हम चाहें तो इसमें हमारी आय का जरिया बहुत अच्छे से बना सकते हैं। अगर आपको घर से कोई कोर्स करने की परमिशन नहीं है तो आप ऑनलाइन भी काफी सारे कोर्सेज हैं वो कर सकते हैं, वो करके आप अपने घर पे भी क्लासेस खोल सकते हैं जिससे आप अपनी आय कमा सकते हैं। इसके अलावा क्लासिकल में डिग्री होती है, बीए होता है, एमए होता है, पीएचडी होता है, डिपेंड ऑन यू। आपको कुछ भी अगर करने मिलता है तो यूनिवर्सिटीज खुली हुई हैं आजकल क्लासिकल की, कथक भरतनाट्यम बहुत सारे आर्ट फॉर्म है क्लासिकल में जिसकी डिग्रियां होती हैं, जिसका पे स्केल शुरू होता है फर्स्ट ईयर से 20,000। मतलब कि अगर आप चाहें तो बहुत अच्छी आय कर सकती हैं, अपने परिवार को भी चला सकती हैं, अपने हस्बैंड का भी सपोर्ट कर सकती हैं।
0: जब आप इस क्षेत्र में आई तो किस तरह की परेशानियों का सामना आपने किया?
1: एक्चुअली घर वालों का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं था, कुछ पता भी नहीं था कि मैं क्या करूं, कैसे आगे बढूं, तो ये बड़ा चैलेंज था कि घर वालों को कैसे मनाए। फिर पापा ने कहा कि नहीं, बिल्कुल डांस में नहीं जाना है, अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करा। तब मैंने पापा से कहा कि नहीं पापा, मैं पढ़ाई भी प्रॉपर करूंगी और मुझे डांस में भी डिग्री करनी है। फिर धीरे धीरे घर वाले मानने लगे, सिचुएशन सेट होती गई और आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही कि आप अपने पैरों पर खड़ी हैं। आर्थिक उपार्जन की बात करें तो आप संतुष्ट हैं इस फील्ड में आकर?
1: हाँ जी मैम, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सखियों को मैं मैसेज देना चाहूंगी कि अगर आप लोग भी चाहें तो जस्ट आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, इतना ज्यादा स्कोप है। और होता ये कि ना किसी का कोई बर्डन है कि हमें ये काम, ये फाइल कंप्लीट करके देनी है, शाम तक हमारा एक टारगेट है वो पूरा है, कुछ नहीं करना है। बच्चों के साथ मस्ती करनी है, इंजॉय करना है, शौक पूरा करना है और साथ साथ में हमारी आय भी कर लेनी है। और मैं आप सभी को एक और मैसेज देना चाहूंगी कि यदि आप लोगों को अपने घर से परमिशन नहीं है किसी इंस्टीट्यूट में काम करने के लिए, या आप बाहर नहीं जा सकती हैं अपने परिवार की वजह से, बहुत सारी कारण होते हैं नहीं बाहर जाने के, तो उसके जगह पे आप बहुत अच्छे से अपनी एकेडमी भी ओपन कर सकती हैं। आजकल तो बहुत सारे लोन भी इजीली मिल जाते हैं, तो लोन लेके आप खुद की डांस क्लास ओपन कर सकती हैं जिससे आपका नाम भी होगा, आपकी आय भी होगी और आपको बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, साथ ही साथ आप अपने पूरे परिवार का ख्याल भी रख पाएंगी।
0: दिया जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके, आपकी बातें वाकई में बहुत प्रेरणास्पद है। आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: उड़ान खुशियों की,
3: उड़ान सपनों की,
2: उड़ान हौसलों की,
3: मेरी उड़ान।

सखियों गीत सुनकर तो आनंद ही आ गया। अब बढ़ते हैं हमारे ब्यूटी सेक्शन यानी कि रूप लावण्य की ओर। सखियों रूप लावण्य में आज बात होगी सनबर्न से हाथ पैर अगर हो गए हैं काले तो लगाएं ये एंटीऑक्सीडेंट पैक। जी हाँ सखियों, आज हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसे ही पैक जिनसे आपके जो हाथ जो काले हो गए हैं वो एकदम गोरे और सुंदर हो जाएंगे। तेज धूप में पसीना और लगातार यूवी किरणों के संपर्क में रहने से गर्मियों में हाथ पैरों की जो त्वचा होती है वो जल्दी टैन हो जाती है। इससे स्किन का रंग आसमान जैसा दिखने लगता है, कई बार रूखापन भी आ जाता है। ऐसे में जो एंटीऑक्सीडेंट पैक होते हैं और एक्सोफोलेट जो गुणों से भरपूर होते हैं, जैसे कि हम बात करें टमाटर की, आलू की, चावल के आटे की, दही और शहद का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो आप सनबर्न और टैनिंग में राहत पाते हैं। तो आइए कुछ ऐसे ही पैक आपको हम बता देते हैं। चावल के आटे और दही का एक पॉलिशिंग पैक हम आपको बता रहे हैं। 2 चम्मच चावल का आटा और दही मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनाएं। इसे हाथों और पैरों पर लगाकर 15 मिनट बाद हल्के हाथों से रगड़ लें। अब हम बता रहे हैं आलू का जो पैक है वो बता रहे हैं। आलू का रस निकालकर आइस ट्रे में जमा दीजिए। इन क्यूब्स को टैन हुई त्वचा पर 5 मिनट रगड़ें। इसमें मौजूद एंजाइम्स त्वचा की रंगत हल्की करने में मदद करते हैं। ग्रीन टी जो होती है वो भी बहुत मददगार होती है। ठंडी ग्रीन टी में हाथ पैर 10 मिनट डुबो कर रखें। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट सन डैमेज कम करते हैं और त्वचा को राहत देते हैं। ऐसे ही सखियों, टमाटर और शहद का ब्राइटनिंग एक मास्क है वो हम आपको बता रहे हैं। तो टमाटर के रस में शहद मिलाकर 20 मिनट लगाइए। इसमें मौजूद जो लाइकोपिन है वो धूप से हुई क्षति को कम करता है। ऐसे ही सप्ताह में 1 से 2 बार आप कॉफी पाउडर, नारियल तेल और चीनी मिलाकर स्क्रब करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। साथ ही सखियों, कच्चे दूध में 3 से 4 केसर के धागे भिगोकर कॉटन से लगाएं। यह त्वचा को पोषण देकर रंगत निखारता है। तो ये कुछ एंटीऑक्सीडेंट पैक है जो आप लगाएंगे तो सनबर्न से दूर रहेंगे और आपकी त्वचा भी निखरी निखरी नजर आएगी। और अब सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत।

और सखियों अब बढ़ते हैं महिला सभा के किचन में। सखियों गर्मी के मौसम में आपने पुदीना, धनिया और टमाटर की चटनियां तो कई बार खाई होंगी, लेकिन क्या कभी ककड़ी, खीरा और लौकी की चटनी ट्राई की है? नहीं ना, तो चलिए आज हम आपको बता रहे हैं ऐसे ही कुछ स्वादिष्ट चटनियां। ककड़ी की चटनी की बात करें सखियों, तो आपको चाहिए एक कप कद्दूकस की हुई ककड़ी, आधा कप दही, एक हरी मिर्च, एक चम्मच भुना जीरा, नमक स्वाद अनुसार और थोड़ा सा हरा धनिया। विधि बहुत ही आसान है सखियों। ककड़ी को हल्का निचोड़ लें ताकि अतिरिक्त जो पानी है वो निकल जाए। अब इसमें दही, हरी मिर्च, जीरा और नमक के साथ मिक्सी में हल्का सा इसे पीस लें। ऊपर से हरा धनिया डालकर सर्व करें। यह चटनी रायते जैसी ठंडी और स्वादिष्ट लगेगी। सखियों, एक बड़ा खीरा छिला हुआ, दो चम्मच पुदीना पत्ते, एक हरी मिर्च और आधा नींबू का रस, थोड़ा सा काला नमक, ये आप ले लें। और इसके साथ ही बनाने की जो विधि है इसकी, जो खीरे की हम जो ताजगी भरी जो चटनी आपको बता रहे हैं उसकी विधि बहुत ही आसान है। खीरे को टुकड़ों में काट लें, पुदीना मिर्च के साथ पीस लें, इसमें नींबू का रस और नमक मिलाएं। ठंडी ठंडी चटनी स्नैक्स के साथ जरूर खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। सखियों अब आपको बता रहे हैं लौकी की हेल्दी चटनी। इसके लिए आपको सामग्री चाहिए एक कप उबली हुई लौकी, दो लहसुन की कलियां, एक हरी मिर्च, एक चम्मच दही, नमक आधा छोटा चम्मच, सरसों के दाने एक चम्मच और थोड़ा सा हमें चाहिए इसके लिए तेल। लौकी का पानी निकालकर लहसुन, मिर्च, दही, नमक के साथ इसे अच्छे से मिक्सर में पीस लें। अब एक पैन में तेल गर्म करके सरसों के दाने डालें, तड़का लगाकर चटनी में मिलाएं। सखियों ये लो कैलोरीज और हाई फाइबर युक्त जो चटनियां हैं वो जलन और एसिडिटी कम करती है। पाचन सुधारने के साथ साथ यह वजन नियंत्रण में भी सहायक होती है। यह शरीर में टॉक्सिन पदार्थ बाहर निकालने में भी मददगार है। तो आज इन चटनियों को आप अपने रसोई घर में जरूर ट्राई करें। और अब सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत।

सखियों, काम की बातों में आज बातें होंगी एसी की। जी हाँ सखियों, गर्मी का मौसम है तो अक्सर हम कूलर और एसी का उपयोग करते हैं। इससे हमारा जो बिजली का बिल है वो भी बहुत ज्यादा आता है, इसीलिए इसको कम करने के लिए कुछ जरूरी उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। कई बार सखियों एसी को 16 से 18 डिग्री पर चला देते हैं, जिससे बिजली ज्यादा खर्च होती है। विशेषज्ञों के अनुसार 24 से 26 डिग्री जो तापमान होता है वो शरीर और बिजली दोनों के लिए बेहतर माना जाता है। तो आप इस मोड पर अपना जो एसी है वो चलाएं, साथ ही फिल्टर की सफाई पर भी ध्यान दें। गंदे फिल्टर की वजह से एसी सही तरीके से कूलिंग नहीं कर पाता है, इसीलिए हर 15 से 20 दिन में फिल्टर साफ करना बहुत जरूरी है, ताकि हवा भी साफ मिले और मशीन पर दबाव भी न पड़े। और साथ ही सखियों, एसी के साथ साथ सीलिंग फैन चलाने से ठंडी हवा चारों तरफ फैलती है, इसीलिए आप एसी तो चलाएं लेकिन सीलिंग फैन भी जरूर चलाएं। और स्लीप या टाइमर मोड पर भी आप एसी को रख सकते हैं। रात भर एसी चलाने के बजाय टाइमर या स्लीप मोड सेट करना बेहतर होता है सखियों, यह रूम टेम्परेचर के अनुसार सेट हो जाता है। तो इन बातों का आप जरूर ख्याल रखें सखियों, और इन गर्मियों में आप अपने बिजली का बिल कम कर सकती हैं इन तरीकों को अपनाकर। सखियों, समय इशारा कर रहा है कि आपसे अनुमति ली जाए। आपको बता दें, आज के इस खूबसूरत से कार्यक्रम का संयोजन किया था डॉक्टर प्रीति छड़ीदार ने। अब प्रीति जोशी को दे अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर का योगदान था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है अंतराल का।

और अब एक सूचना। प्रसार भारती आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए रेडियो कार्यक्रम की सोर्सिंग हेतु पात्र प्रोडक्शन हाउस निर्माता अधिकार स्वामी एग्रीगेटर कंटेंट क्रिएटर्स को आमंत्रित करता है। यह कार्यक्रम सोर्सिंग, राजस्व साझाकरण या रेवेन्यू शेयरिंग प्रायोजित अथवा स्पॉन्सर्ड एवं निःशुल्क या ग्रेटिस आधार पर किया जाएगा। यह सब प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए संशोधन आदेश के अनुरूप होगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि प्रस्ताव जमा करने से पहले वे प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देश

इशू हम आदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। यह सभी दस्तावेज प्रसार भारती आकाशवाणी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आकाशवाणी भोपाल से हिंदी उर्दू अथवा सिंधी भाषा में रेडियो कार्यक्रम की सोर्सिंग के लिए इच्छुक आवेदक ईमेल भोपाल @ प्रसार भारती .गवर्नमेंट .इन एवं

स्थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

इसके साथ ही अंतराल का समय हुआ पूरा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर का योगदान है। पहले सुनिए निमाड़ी लोकगीत भाई राम गपो जी रनसोर और साथियों के स्वर में।

इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर का योगदान था। लीजिए आप सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर का योगदान है। इस कार्यक्रम में पहले सुनिए राधा कुलकर्णी के स्वर में गजल।

इसके साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर का योगदान था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब समय है अंतराल का।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा है कि सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर चलते हुए देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की राह पर है। उन्होंने संस्कृत का एक श्लोक साझा करते हुए कहा कि सच्चा बुद्धिमान वही होता है जो दूसरों के कल्याण से ईर्ष्या के बिना नेक काम करता है, और यही भावना राष्ट्र निर्माण में सरकार की सबसे बड़ी ताकत रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उन्हें बधाई दी है। डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने खुद को हमेशा प्रधान सेवक माना और गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के जीवन में बदलाव लाए। उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों में देश में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, और आयुष्मान भारत, उज्ज्वला, किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं ने करोड़ों परिवारों की जिंदगी को बेहतर बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि धरती आबा ने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए विदेशी शासन के खिलाफ अदम्य साहस से संघर्ष किया और जनजातीय समाज के आत्मसम्मान व अधिकारों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वहीं लोकभवन में भी आज जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा का बलिदान दिवस मनाया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने जल, जंगल, जमीन की रक्षा और देश की आजादी के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में मंडी टैक्स को 1 से बढ़ाकर 1.5% करने का फैसला लिया गया, जिससे सरकार को सालाना करीब 835 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये राशि अधोसंरचना विकास और गो संवर्धन में लगाई जाएगी। वहीं कपास पर मंडी शुल्क को घटाकर प्रति गठान 50 पैसे किया गया है। मेट्रो रेल परियोजना की लागत में 3000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी गई है, जिससे यह अब करीब 10000 करोड़ रुपए की हो गई है। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि तबादलों का काम 15 जून तक पूरा कर लिया जाए। इंदौर में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन शुरू हो गया है। इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया, ईरान, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात समेत कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ पहुंचे हैं। भारत इस बार सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। आज प्रतिनिधि एक साझा घोषणा पत्र के मसौदे पर विचार विमर्श करेंगे और दिन भर कई दौर की बैठकें होंगी। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती और छोटे किसानों को मजबूत बनाने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर आज प्रदेश के सभी जिलों में विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवती महिलाओं को मुफ्त जांच, दवाएं और विशेषज्ञ परामर्श मिलेगा। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सभी गर्भवती महिलाओं और उनके परिजनों से इन शिविरों का लाभ उठाने की अपील की है। जरूरतमंद महिलाओं के लिए 108 एम्बुलेंस से मुफ्त परिवहन की सुविधा भी रहेगी। प्रदेश की शौर्य दल आज देश की सबसे बड़ी महिला सामाजिक नेटवर्क बन चुकी है। साल 2013 में महज 6 जिलों से शुरू हुई इस मुहिम में अब तक 22 लाख से ज्यादा महिलाएं और बेटियां जुड़ी हैं, जिनमें स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियों से लेकर अनुभवी गृहणियां तक शामिल हैं। ये दल घरेलू हिंसा, बाल विवाह और मानव तस्करी जैसी समस्याओं को पुलिस के पहुंचने से पहले ही सामुदायिक स्तर पर सुलझा देता है। सरकार ने इस कार्यक्रम को 2030-31 तक जारी रखने का फैसला किया है। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में मानसून अगले हफ्ते 15 से 18 जून के बीच दस्तक दे सकता है। विभाग के मुताबिक मानसून इंदौर और जबलपुर के रास्ते प्रदेश में प्रवेश करेगा। अब तक प्री मानसून गतिविधियां जारी रहेंगी। आज प्रदेश के करीब 2 दर्जन जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट है, जबकि भिंड, दतिया और बुंदेलखंड के कुछ जिलों में अगले 2 दिन

तक लू चलने की आशंका है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले में आरोग्यम नर्मदापुरम अभियान के तहत जिले की सभी पंचायतों में प्रत्येक बुधवार और शनिवार को जन स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शिवपुरी जिले के प्रत्येक विकासखंड और नगरीय निकाय मुख्यालयों में 12 से 18 जून तक 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। सिंगरौली कलेक्टर ने काठमांडू में आयोजित इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप के पदक विजेता जिले के खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और अग्निकांड जैसी घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से नीमच एसडीएम और तहसीलदार ने आज ज्ञानोदय अस्पताल का निरीक्षण किया। और खंडवा में समान नागरिक संहिता के लिए प्रदेश सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति के सदस्य प्रोफेसर गोपाल शर्मा और डॉक्टर शोभा पेटड़कर 11 जून को खंडवा आएंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। कर्नाटक, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में लू का अनुमान। और पुरुष क्रिकेट में दांबुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 वर्षों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने आम नागरिकों के लिए पासपोर्ट जारी करने और दस्तावेजों के सत्यापन को सुगम बनाया है और नागरिकों को पूरा सहयोग प्रदान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमिपत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के सीमा पार सैन्य अभियानों की निंदा की और अफगानिस्तान में हवाई हमलों के कारण हुई मौतों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है।
2: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्री स्तरीय बैठक 13 जून को होगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इससे कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर लद्दाख के मिनमर्ग में जोजिला सुरंग के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास विस्फोट किया और इसे कश्मीर तथा लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है, ताकि माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7,50,00,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। सरकार के लगातार प्रयासों के कारण भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2014-16 में जहां हर 1,00,000 प्रसव पर 130 महिलाओं की मृत्यु होती थी, वह 2022-24 में घटकर 87 रह गई है। इस योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ₹75 का एक स्मारक सिक्का और ₹5 का एक विशेष डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। सरकारी ई मार्केटप्लेस जिम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में जिम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, समावेशन और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण के बल पर भारत ने ये उल्लेखनीय वृद्धि की है। श्री कुमार ने कहा कि जिम पर भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या 2016-17 में लगभग 2300 से बढ़कर आज लगभग 12,00,000 हो गई है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तुती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पश्चिम एशिया में ईरान और इसराइल के बीच तनाव कम हुआ है, प्रत्यक्ष झड़पों में भी कमी आई है।

0: और हमारी संवाददाता से।
1: पश्चिम एशिया में पिछले कुछ दिनों से जारी ईरान इसराइल सैन्य तनाव के बाद फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील लेकिन अपेक्षाकृत शांत बनी हुई है। तनाव की शुरुआत बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल की कार्रवाई से हुई। इसके बाद ईरान की ओर से उत्तरी इसराइल की दिशा में मिसाइलें दागी गयी। जवाब में इसराइल ने ईरान समर्थित ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं और गहरा गयी। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान से जुड़ा मोर्चा फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान का कहना है कि क्षेत्र में स्थायी शांति और तनाव में कमी तभी संभव है जब गाजा और लेबनान में इसराइली सैन्य अभियान समाप्त किए जाएंगे। इस बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि स्थिति को स्थिर रखने और व्यापक समझौते की दिशा में चल रही वार्ताएं निर्णायक दौर में पहुंच रही हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि हालिया सीमा पार मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता अभी भी आगे बढ़ रही है।
2: हम एक मजबूत और प्रभावी समझौते के बेहद करीब हैं। यदि बमबारी की जाती है तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है और ऐसा कौन चाहेगा। हमारा प्रयास है कि एक ऐसा औपचारिक समझौता हो जो सैन्य कार्रवाई से भी अधिक प्रभावी साबित हो। अब तक यह देखा गया है कि नाकाबंदी का असर बमबारी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली रहा है, इसलिए हम शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं।
0: कोलंबो उच्च न्यायालय ने श्रीलंका के पूर्व उपमंत्री सरना गुणवर्धना को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया है। ये आरोप 2006 में विकास लॉटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान किराए पर वाहन खरीदने से संबंधित है। ये फैसला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद मिहाइल ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाले आयोग द्वारा दायर एक मामले में सुनाया है। फिलीपींस में कल दक्षिणी क्षेत्र के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 37 हो गई है। भूकंप में 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं जबकि 4 लोग लापता हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। भूकंप के कारण 20,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.4% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 267 अंक बढ़कर 73,791 और निफ्टी 86 अंक बढ़कर 23,209 पर था। पूरा देश आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा की। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों का पुरजोर विरोध किया बल्कि समाज में फैल रहे धर्मांतरण और लाल फीताशाही के खिलाफ भी बिगुल फूंका। आज सुबह से ही रांची के कोकर समाधि स्थल और बिरसा चौक पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के तमाम मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने यहां पहुंचकर भगवान बिरसा के चरणों में माल्यार्पण किया है। रांची के अलावा उनके जन्म स्थान खूंटी के उलिहातू सहित राज्य भर के जनजातीय बहुल इलाकों में विशेष सांस्कृतिक और जागरूकता सभाएं आयोजित की जा रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ स्थानों पर भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की आशंका है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए की टीम ने 278 रनों का लक्ष्य दिया है। ये मैच श्रीलंका के रंगिरी दाम्बुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए हैं। भारत के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के शतक और तिलक वर्मा के 150 रनों की साझेदारी ने भारत को महत्वपूर्ण भूमिका दिलाने

0: सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश के लिए ये पहली फरमाइश है हमारे इन सभी श्रोता साथियों की। ये है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोरखे, नंदा बोरखे, हनुमान, सारिका, सुरेखा, सोनम और ये साथी हैं उज्जैन से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपंक, मयंक मूड़त, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कोश मूड़त, इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमीला बामनिया, नंदनी मुस्कान, नीलम सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक कृणाल, केतन। इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है फिल्म बड़े दिल वाला, इस फिल्म का गीत जिसके लिए आवाज है लता मंगेशकर, किशोर कुमार के, गीतकार हैं मजरूह और संगीत दिया है आरडी बर्मन ने।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम में आपके फरमाइश है पंजाब रूपट से हरदेव मीका बलविंदर नीरक जैतेंग बिरक मीका बिरक भाटापारा दतरिंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा किशोर कुमार वर्मा दीपक कुमार जावेंद्र कुमार वर्मा और नांदेड़ महाराष्ट्र से प्रभाकर जोनले आरती जोनले इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है राजा रानी इस फिल्म का ये प्यारा सा गीत जिसके लिए आवाज़ है लता मंगेशकर किशोर कुमार की गीतकार है आनंद बख्शी और संगीत है आर डी बर्मन का।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और आपकी फरमाइश के लिए ये अगली फरमाइश है। फिल्म है रफू चक्कर, और इसका ये प्यारा सा गीत गाया है शैलेंद्र सिंह आशा भोसले ने। गीतकार हैं गुलशन बावरा और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। और इस गीत को सुनना चाहते हैं इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिकेश, साक्षी, मनन, तानिया, धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, सविता माखीजा, स्वाति माखीजा, सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका, रॉबिन राणा।

सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और आपकी फरमाइश के लिए ये अगली फरमाइश भेजी है बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी, मीनूराज श्रीमाली, और ये जो साथी हैं हमारे, ये हैं अमलेश्वर छत्तीसगढ़ से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रेयांश ठाकुर, और बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभय नंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित, इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है पराया धन इस फिल्म का गीत, जिसके लिए आवाज है किशोर कुमार, लता मंगेशकर की, गीतकार आनंद बख्शी और संगीत है आर डी बर्मन का।

आपकी फरमाइश के लिए ये अगली फरमाइश है। बलिया उत्तर प्रदेश से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय गाजीपुर से, प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, और सिंहपुर से राजेश नेमा, संगीता भावना, प्राची नेमा, और कटनी से संतोष सिंह ठाकुर, सुनील सिंह, अवधेश कुमार दुबे, सुमेर पटेल, शेख जमील मंसूरी, इन सभी श्रोता साथियों ने पसंद किया है फिल्म अनुरोध का ये गीत, जिसके लिए आवाज है किशोर कुमार की, गीतकार है आनंद बख्शी और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: ऐसे कुछ।
1: आपकी फरमाइश के लिए ये अगली फरमाइश है हमारे इन सभी श्रोता साथियों की। ये है खंडवा मध्य प्रदेश से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र, सन्मति पंचोलिया, और राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जास्मीन, प्रयागराज भट्ट, औरंगाबाद महाराष्ट्र से राजेश सांबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, इन सभी श्रोता साथियों ने पसंद किया है ये प्यारा सा गीत, जिसके लिए आवाज़ है किशोर कुमार आशा भोसले की और फिल्म है जवानी दीवानी।

0: इसके साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा है कि सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर चलते हुए देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की राह पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने खुद को हमेशा प्रधान सेवक माना है और गरीब युवा किसान और महिलाओं के जीवन में नया बदलाव लाए हैं। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि धरती आबा ने जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए विदेशी शासन के खिलाफ अदम्य साहस से संघर्ष किया और जनजातीय समाज के आत्मसम्मान व अधिकारों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में मंडी टैक्स को 1 से बढ़ाकर 1.5% करने का फैसला लिया गया, जिससे सरकार को सालाना करीब 835 करोड़ रुपये मिलेंगे। इंदौर में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन शुरू हो गया है। इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया, ईरान, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात समेत कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर आज प्रदेश के सभी जिलों में विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवती महिलाओं को मुफ्त

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। और अब आपको बता दें, आज शाम की सभा में कौन से कौन कार्यक्रम आप सुनेंगे।

शाम 5:02 पर सुनिए कार्यक्रम युवाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल का योगदान होगा। 5:33, 6:30, 8:35 और रात 10 बजे सुनिए फिल्म संगीत। शाम 6 बजे सुनेंगे एनसीआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। रात 8 बजे आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष आर्थिक विकास ये कार्यक्रम।

उर्दू कार्यक्रम कहकशा रात 9:30 पर, शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी आप सुनेंगे रात 10 बजे। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे राग मारू बिहाग में ख्याल गायन संगीता गोस्वामी से।

आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम ग्राम सभा आप सुनेंगे 7:21 पर। ये थी जानकारी आज शाम की सभा के कार्यक्रमों की।

मेघे में 188.32 मीटर्स अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। 3:03 हुए हैं, हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम की सभा में 5 बजे हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी, पर इस बीच डीटीएच पर हमारा प्रसारण जारी रहेगा। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए अब सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर का योगदान है। इस कार्यक्रम में पहले सुनिए निमाड़ी लोकगीत, भाईराम गप्पू जी रनसोर और साथियों के स्वर में।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि धरती आबा ने जंगल, जल और जमीन की रक्षा के लिए विदेशी शासन के खिलाफ अदम्य साहस से संघर्ष किया और जनजातीय समाज के आत्मसम्मान व अधिकारों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की है। श्री गुटेरेस ने सभी हितधारकों से हमले रोकने और संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने सभी पक्षों से लेबनान, ईरान और गाजा में हुए युद्ध विराम का पालन करने का आह्वान भी किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर स्थित रक्षा भूमि पर पहली बड़ी पैमाने की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। इंदौर में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से शुरू हो गया है। इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया, ईरान, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात समेत कुल 21 देशों के कृषि मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी तथा विशेषज्ञ पहुंचे हैं। और प्रदेश की शौर्य दल की टीम आज देश की सबसे बड़ी महिला सामाजिक नेटवर्क बन चुकी है। साल 2013 में महज 6 जिलों से शुरू हुई इस मुहिम में अब तक 22 लाख से ज्यादा महिलाएं और बेटियां जुड़ी हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। प्रस्तुत है युवा मित्रों के लिए कार्यक्रम युववाणी। आज का यह कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

दोस्तों नमस्कार। शाम के 5 बज चुके हैं। श्वेत बादल और डूबता आफताब अपनी खूबसूरती चारों ओर बिखेर चुके हैं और अब बस किसी बात की कमी है तो वो है सुरीले गानों की और मीठी बातों की। और आपकी इसी कमी को पूरा करने हम आ गए हैं लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त पहल टेवरे और हर बार की तरह मैं फिर से लेकर आ गया हूं आप सभी को सुनाने बहुत सारे गाने और बहुत सारी बातें। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें आज की इस खूबसूरत शाम को थोड़ा सलाम नमस्ते तो कह ही देना चाहिए। तो आइए इसी बात पर सुनते हैं आज का हमारा पहला गीत। ये

दोस्तों, अभी हमने सुना गीत सलाम नमस्ते, जो था फिल्म सलाम नमस्ते से, जिसमें स्वर दिए हैं कुणाल गांजेवाला और वसुंधरा दास ने। दोस्तों, जरा रुकें, बस एक पल के लिए। अभी जो भी आप कर रहे हैं वो सब छोड़कर खिड़की से बाहर देखें। क्या पता उनमें से किसी एक को खून की जरूरत हो। जी हां, हम बात कर रहे हैं रक्तदान की। क्या आप जानते हैं कि इस देश में हर साल लोगों को लगभग 1 करोड़ यूनिट की जरूरत पड़ती है? 1 करोड़। और इसमें से भी बहुत बड़ा हिस्सा पूरा नहीं हो पाता। तो आइए इसलिए जानते हैं, बात करते हैं कि आखिर रक्तदान में होता क्या है। जब भी आप किसी को खून देते हैं तो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को रक्तदान कहते हैं। जब आप वहां जाते हैं तो वहां पहले एक छोटी सी जांच होती है, बीपी यानी ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, थोड़ी सी बेसिक बातें भी पूछते हैं, जैसे जैसे कि आपने खाना खाया या नहीं, रात को ठीक से सोया या नहीं। फिर, अरे फिर क्या, 15 से 20 मिनट में एक यूनिट खून एक साफ अपैरेटस से लिया जाता है। उसके बाद आपको आराम कराकर आपके घर भेज देते हैं। इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में कोई दर्द नहीं होता, कोई कमजोरी ऐसी नहीं होती जो 1 या 2 घंटे से ज्यादा रहे, और कोई खतरा तो बिल्कुल ही नहीं है। तो अब बात करते हैं उस एक यूनिट खून की जो आपने दिया है। वो लैब में जाता है, वहां उसके 3 हिस्से किए जाते हैं। पहला हिस्सा लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड सेल, जो हादसे में घायल इंसानों को, ऑपरेशन से जूझ रहे मरीजों को चाहिए होता है। दूसरा हिस्सा प्लेटलेट्स, जो कैंसर के मरीजों को, डेंगू से लड़ते बच्चों को चाहिए होता है। और तीसरा हिस्सा होता है प्लाज्मा, जो जलने वालों को, गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को चाहिए होता है। यानी एक बार दिया खून 3 अलग अलग लोगों की जिंदगियां बचाता है। एक बूंद, 3 रास्ते और 3 घरों में जिंदगी का बचाव। और एक बात जो शायद आपको नहीं पता हो वो ये है कि रक्तदान का कोई और विकल्प नहीं है। दुनिया के सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत ही होशियार वैज्ञानिक, सबसे महंगी लैब, कोई नहीं बना सकता इंसानी खून। तो ये जो हमारे शरीर में है ना, ये दुनिया की सबसे कीमती चीज है जो दुकानों पर नहीं मिलती। अब उन लोगों की बात करते हैं जो ये कहते हैं, ये सोचते हैं कि मैं कमजोर हो जाऊंगा। अरे भाई, आप ये ध्यान रखें कि हमारे शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर खून होता है। एक बार में ली जाती है आपसे केवल 350 से 450 मिलीलीटर की डोनेशन, यानी कुल खून का 10% से भी कम, और वो भी 24 से 48 घंटों में वापस बन जाता है। हमारा शरीर समझदार है, उसे पता है कि कमी हुई है, तो वो उस कमी को खुद पूरी कर लेता है। और एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं कि ये ब्लड डोनेट करने वाले जो होते हैं, ये खुद भी बहुत फायदे में होते हैं। जब पुराना खून निकलता है तो शरीर में नया खून बनता है, ताजा, एक्टिव। दिल को कम मेहनत करनी पड़ती है। शोध कहते हैं कि जो लोग नियमित रक्तदान करते हैं उनमें दिल की बीमारी का खतरा कम होता है। साथ में हर बार डोनेशन से पहले फ्री जांच होती है, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन, हेपेटाइटिस, एचआईवी सब चेक होता है। यानी साल में 3-4 बार मुफ्त हेल्थ चेकअप। तो खून देने के फायदे बहुत हैं। अब जरा सोचें, जब इस देश में कोई भी मुश्किल होती है तो हम सब कैसे एक हो जाते हैं। बाढ़ आए या भूकंप, लोग दौड़ते हैं मदद के लिए। पर रक्त की कमी, ये कोई एक दिन की आपदा नहीं है, ये हर रोज की जरूरत है। हर रोज जब अस्पताल खुलते हैं तो वहां खून चाहिए होता है। थैलेसीमिया से लड़ते बच्चों को खून चाहिए होता है, सड़क हादसों में घायल लोगों को खून चाहिए होता है, बच्चों को जन्म देती माओं को खून चाहिए होता है, कैंसर से लड़ते बुजुर्गों को खून चाहिए होता है। ये मांग रुकती नहीं,
इसलिए खून देना जरूरी है। शर्त सिर्फ तीन, उम्र 18 से 65 साल के बीच हो, वजन 45 किलो से ज्यादा हो और उस दिन तबीयत ठीक हो, बस। कोई लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं, हर 3 महीने में एक बार दे सकते हैं आप खून, यानी साल में 4 बार, और साल में 4 बार मतलब 12 लोगों की जिंदगी, 12। अगर गिना जाए तो 10 साल में 120 जाने बचा सकते हैं आप। तो आज बस एक कदम उठाते हैं, अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल का ब्लड बैंक नंबर जानते हैं, अपने शहर में कब शिविर लग रहा है वो पता करते हैं, और जो दोस्त, जो भाई, जो पड़ोसी अभी तक नहीं गए हैं उन्हें इसकी खासियत बताते हैं। इसी बात पर चलते सुनते हैं हमारा अगला गीत, ये

दोस्तों, अभी हमने सुना गीत खून चला, फिल्म रंग दे बसंती से, बोल हैं प्रसून जोशी के। दोस्तों, अभी उठें, नहीं अभी उठें, खिड़की खोलें और एक गहरी सांस लें। अब बताएं, वहां हवा कैसी थी? ताजी या उसमें कुछ था, धुआं, धूल या एक भारीपन जो गले में अटक गया हो? अगर आप देश के किसी भी बड़े शहर में हैं तो वो शायद उतना साफ नहीं जितना होना चाहिए, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है वो गाड़ियां जो हर रोज सड़कों पर दौड़ती हैं, हवा में घोलती हैं जहर धीरे धीरे चुपचाप हर रोज। भारत दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में से एक है। हमारे कई शहर जैसे दिल्ली, कानपुर, वाराणसी दुनिया की सबसे जहरीली हवा वाले शहरों की लिस्ट में आते हैं। अस्थमा, फेफड़ों की बीमारी, दिल की तकलीफ, ये सब उस हवा का हिसाब है जो हम रोज ले रहे हैं। और इस प्रदूषण में गाड़ियों का कंट्रीब्यूशन कहीं 40% तक है, यानी लगभग आधा जहर हमारी अपनी गाड़ियों से आ रहा है। यहीं आता है ई वाहन, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल। बहुत सीधी बात है, पेट्रोल डीजल की जगह बैटरी, इलेक्ट्रिक मोटर और एग्जॉस्ट पाइप से कुछ बाहर नहीं, बिल्कुल भी कुछ बाहर नहीं। गाड़ी चलती है और पीछे छूटती है तो सिर्फ सनसनाती हुई साफ हवा, और जेब भी ढीली नहीं होती। उतनी ही दूर एक ई स्कूटर चलाने में लगता है बस 1.5 से 2 रुपए का खर्चा। 1-1.5 साल की बचत इतनी होती है कि शुरुआती फर्क पूरा हो जाता है, और रखरखाव, अरे इंजन नहीं, तेल नहीं, झंझट आधी। बदलाव दिखने भी लगा है। 2023 में भारत में करीब 15 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकी हैं, और यह रफ्तार हर साल बढ़ रही है। कई शहरों में ई बसेस भी दौड़ रही हैं, गांव में सोलर बैटरी से फोन चार्ज हो रहे हैं, ना बिजली का बिल, ना पेट्रोल पंप, बस धूप। और धूप धूप तो हमारे देश में बिल्कुल भी कम नहीं है। तो अगली बार जब भी आप दोपहिया खरीदने जाएं, तो ई स्कूटर पर एक नजर तो डाल ही दे। जहां बात हो ई बस, ई ऑटो की, वहां इसकी मांग करें और आसपास के लोगों को बताएं, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां एक इंसान कहता है कि हां, अब यह जरूरी है। ई वाहन सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, यह एक चुनाव है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, उस हवा के लिए जिससे आने वाली पीढ़ियां सांस लेंगी। हर इलेक्ट्रिक गाड़ी जो सड़क पर आती है वो एक वादा है कि हम थोड़ा और जिम्मेदार हैं, थोड़ा और जागरूक हैं। तो कल की उज्ज्वल भारत के इस धुरंधर को अपनाते हैं और सुनते हैं आज का हमारा अगला गीत, ये।

दोस्तों, अभी हमने सुना गीत इश्क जलाकर फिल्म धुरंधर से, जिसे गीत दिया है शाश्वत सचदेव ने। चलिए सुनते हैं एक और गीत फिल्म दिल धड़कने दो से,

दोस्तों, अभी हमने सुना गीत दिल धड़कने दो, जिसे स्वर दिए हैं प्रियंका चोपड़ा और फरहान अख्तर ने। दोस्तों, आज हमने बात की ब्लड डोनेशन पर। हमने जाना कि रक्तदान जीवन दान से कम नहीं होता। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें और संवेदनशील और ह्यूमन बनाती है। साथ ही हमने जाना ई व्हीकल्स के बारे में, कैसे ई वाहन और उनकी खूबियां हमारे कल के भारत के लिए आज का पहला कदम है। दोस्तों, जाते जाते मैं बस एक बात कहना चाहूंगा। आज हमारे पास अगर कुछ है तो वो सिर्फ आज है। आज ही वो समय है जहां आप अपनी जिंदगी, दूसरों की जिंदगी और आने वाले कल को और बेहतर कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि हम आज की अहमियत जानेंगे और उस पर अमल कदम भी उठाएंगे। इसी के साथ मैं पहल टेवरे आपसे लूंगा इजाजत। ये मेरी उम्मीद रहेगी कि आप अपना ध्यान रखें, अपने आसपास वालों का ध्यान रखें, जानवरों को पानी देते रहें और एक आने वाले कल की उम्मीद बने। इसी के साथ मैं लूंगा इजाजत। धन्यवाद।

आकाशवाणी भोपाल के योगदान के अंतर्गत कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण अभी किया जा रहा था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का। श्रोताओं, आकाशवाणी से प्रसारण हेतु कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रित करने हेतु आप सबके लिए सूचना। प्रसार भारती आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग हेतु पात्र प्रोडक्शन हाउस, निर्माता, अधिकार स्वामी, एग्रीगेटर, कंटेंट क्रिएटर्स को आमंत्रित करता है। ये कार्यक्रम सोर्सिंग, राजस्व साझाकरण या रेवेन्यू शेयरिंग, प्रायोजित अथवा स्पॉन्सर्ड एवं निःशुल्क या ग्रेटेस्ट आधार पर किया जाएगा। ये सब प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए संशोधनों आदेशों के अनुरूप होगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि प्रस्ताव जमा करने के पहले वे प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों एवं आदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

0: प्रस्ताव भेज सकते हैं। प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। सूचना समाप्त हुई।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

शंकर महादेवन और रवि खोटे की आवाज़ों में ये गीत आपने सुना फिल्म कल होना हो से। जावेद अख्तर के लिखे बोल और शंकर एहसान लॉय का संगीत। श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। इसी कड़ी में आइए अगला गीत हम सुनते हैं फिल्म हम तुमसे। प्रसून जोशी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है जतिन ललित ने। इस गीत में आप आवाज़ें सुनेंगे सोनू निगम और साधना सरगम की। आइए सुनते हैं।

शान, प्रिया और नीरज की आवाज़ों में ये गीत सुनिए फिल्म मैंने प्यार क्यों किया से। समीर के लिखे बोल और हिमेश रेशमिया का संगीत।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुंचा रहे हैं फिल्म धन धना धन गोल से।
1: जगाती है कयामत कोई

आनंद राज आनंद और ऋचा शर्मा की आवाज़ों में सुना आपने जावेद अख्तर का लिखा यह गीत। संगीत था प्रीतम का। श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, आइए सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के बुनियादी ढांचे, तकनीकी विकास और किसान कल्याण से जुड़े कार्यों के लिए लगभग 13,800 करोड़ रुपये की स्वीकृति के साथ कई बड़े एवं महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि धरती आबा ने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए विदेशी शासन के खिलाफ अदम्य साहस से संघर्ष किया और जनजातीय समाज के आत्मसम्मान व अधिकारों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा की जा रही है। इंदौर में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन शुरू हो गया है। इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया, ईरान, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात समेत कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ पहुंचे हैं। और प्रदेश की शौर्या दल की टीम आज देश की सबसे बड़ी महिला सामाजिक नेटवर्क की टीम बन चुकी है। साल 2013 में महज 6 जिलों से शुरू हुई इस मुहिम में अब 22 लाख से ज्यादा महिलाएं और बेटियां जुड़ चुकी हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 6 बज रहे हैं। अब प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आप सबको विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका और मन्नत जी ने। लिखते हैं
0: मानव की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती
2: जी।
0: एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जाग जाती है। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए।
2: धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
0: तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगहत परवीन अब्बासी शाहनवाज अब्बासी सरफराज अब्बासी।
2: कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी।
0: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा प्रकाश अरोड़ा चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है
2: सप्रेम नमस्ते जी। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे पेड़ पौधे लगाना पक्षियों को दाना खिलाना डायरी लिखना और दादा दादी नाना नानी के यहाँ जाना कार्य कर सकते हैं।
0: आगे आप लिखते हैं सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी उमंग कार्यक्रम में गर्मी से संबंधित विषय पर जानकारी एवं जो अन्य कार्यक्रम सुनाए जा रहे हैं बेहद पसंद आ रहे हैं। कार्यक्रम सुनकर गर्मी में भी दिल को ठंडक का एहसास हो रहा है
2: जी।
0: आपने यहीं पर विराम नहीं दिया, आपने आगे लिखा है
2: भारत के वीर सेनानियों पर आधारित कार्यक्रम की श्रृंखला वीर गाथा उमंग कार्यक्रम में सुनवाई जा रही है वो प्रशंसा योग्य है। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी एवं लांस नायक अलवर टेक्का जी पर केंद्रित कार्यक्रम सुनकर हमारी आंखें नम हो गईं। कार्यक्रम बेहद पसंद आया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए समस्त उमंग टीम का हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को। और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए।
0: तो विमलेश जी अब ये बताइए कि ये भी जानिए श्रृंखला में आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा।
2: अजीत जी इस सप्ताह हम पूरे विश्व परिवार की अनेक रोचक परंपराओं की चर्चा करेंगे
0: जी।
2: आज की चर्चा का विषय होगा जापान का चाय समारोह। इसे टी सेरेमनी भी कहा जाता है और जापानी भाषा में इसे चानो यू कहते हैं। ये दुनिया की सबसे सुंदर और अनुशासित परंपराओं में से एक है
0: जी। हाँ श्रोताओ, जापान की चाय परंपरा केवल चाय पीना नहीं लेकिन सम्मान शांति अनुशासन और व्यवहार की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो आइए जानते हैं विमलेश जी से कि ये परंपरा जापान में कब शुरू हुई।
2: जी अजीत जी, हम सब जानते हैं कि चाय की शुरुआत चीन से हुई है। 9वीं शताब्दी की बात है जब कुछ बौद्ध भिक्षु चीन से चाय की पौध लेकर जापान आए और तब चाय का प्रचलन जापान में भी शुरू हुआ।
0: लेकिन विमलेश जी, ऐसी कौन सी बातें हैं जो जापानी चाय समारोह को इतना विशेष बनाती हैं कि हम उसकी चर्चा कर रहे हैं।
2: जी अजीत जी, जापान में चाय पीना एक विशेष अर्थ रखता है।
0: जैसे?
2: जैसे कि वहाँ चाय पीना एक औपचारिक और सामान्य बात नहीं है। इस समारोह में बहुत सी बातों का खास ध्यान रखा जाता है। आइए अपने श्रोताओं को कुछ जापानी शब्दों से भी परिचित कराते हैं जो वहाँ की चाय परंपरा को खास बनाते हैं।
0: जी सचमुच चाय पीने के संदर्भ में इन जापानी शब्दों को जानना बड़ा रोचक रहेगा।
2: अजीत जी, भिक्षुओं ने इसे आध्यात्मिकता से जोड़ दिया और इसके कुछ नियम बनाए।
0: तो क्या क्या नियम है इसके?
2: जापान का चाय समारोह चार मूल सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत है वाह।
0: वाह यानी?
2: यानी हारमोनी या सामंजस्य।
0: और दूसरा शब्द क्या है?
2: दूसरा शब्द है केई।
0: जी
2: यानी रिस्पेक्ट या सम्मान।
0: और श्रोताओ, तीसरा शब्द है सेई यानी पवित्रता या प्यूरिटी। और चौथा शब्द है याकू यानी आंतरिक शांति या इंटरनल पीस।
2: श्रोताओ, इन चार सिद्धांतों पर टिकी है जापानी चाय परंपरा जिससे हम स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी अर्थपूर्ण है। तो जी जी, अब करते हैं साझा कुछ और रोचक बातें जो जापानी चाय परंपरा में अनिवार्य मानी जाती हैं।
0: जी हाँ, तो श्रोताओ, चाय समारोह में अतिथि सर झुकाकर अभिवादन करते हुए चाय का कटोरा दोनों हाथों से लेते हैं। ये सम्मान दर्शाने का प्रतीक है।
2: जी, एक और खास बात यह है कि इस परंपरा में अतिथि चाय का कटोरा लेकर कटोरे को मेजबान की तरफ देकर हाथ को हल्का सा घुमाता है। इस कार्यक्रम में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि अतिथि कहाँ बैठेंगे, उन्हें कैसे आराम दिया जाए, ये भी ध्यान दिया जाता है कि प्याला कैसा होगा।
0: जी, और अब एक जानकारी और आपको दे दें कि समारोह का आयोजन पारंपरिक तौर पर कहाँ होता है।
2: ये समारोह अक्सर एक शांत टी हाउस या चाय कक्ष में होता है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। फर्श पर परंपरागत चटाई बिछी होती है। बाहर छोटा सा बागीचा भी हो सकता है। चाय घर या कक्ष को जापानी में चा शित्सु कहा जाता है। पारंपरिक रूप से चाय पार्टी में किमोना पहना जाता है। चाय कक्ष के मार्ग में रंगीन छोटे छोटे पत्थर मार्गदर्शक के रूप में लगाए जाते हैं।
0: यानी कुल मिलाकर ये चाय समारोह सादगी विनम्रता और प्रकृति के सौंदर्य का मेल कहा जा सकता है।
2: जी
0: विमलेश जी, हमने ये तो बताया ही नहीं कि जापानी चाय समारोह में कौन सी चाय परोसी जाती है?
2: अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे। श्रोताओं, इस समारोह में माचा चाय दी जाती है। ये चाय की हरी पत्तियों को पीसकर पाउडर की तरह बनाई जाती है। जहाँ तक इसके स्वाद की बात है, स्वाद थोड़ा कड़वा हो सकता है।
0: कड़वा हो सकता है, तो इसीलिए सबसे पहले एक जापानी मिठाई दी जाती है जिसे वागाशी के नाम से जाना जाता है। पूरे जापान में ये मिठाई बहुत ही लोकप्रिय है। और श्रोताओं, एक खास बात आपको बताएं, प्रत्येक मिठाई बिल्कुल कलात्मक दिखाई देती है।
2: जी, तो श्रोताओं, जापान की चाय परंपरा हमें सिखाती है कि चाय पीना मात्र चाय पीना ही नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण को पूरी शांति और सुंदरता के साथ जीना है।
0: तो ये चाय समारोह हमें संदेश देता है कि साधारण सी चीज यानी एक कप चाय भी सम्मान

0: परस्पर सामंजस्य और व्यस्त जीवन में गहरी शांति का अनुभव बन सकती है।
1: जी, तो श्रोताओं कैसी लगी हमारी जानकारी ये जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
0: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
0: और हाँ,
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: जी, तो चलिए अब रुख करते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है संवदिया।
1: ये कार्यक्रम हमें उस समय की याद दिलाता है जब इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम नहीं थे। उन दिनों में संवाद या कोई सूचना लेकर जाने वाले को संवदिया कहा जाता था। संवदिया मात्र संदेश या पत्र वाहक ही नहीं थे, लेकिन समाज के महत्वपूर्ण सेतु थे जो एक दूसरे को जोड़ते थे। कार्यक्रम एक मार्मिक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
2: आजकल तो घर बैठे ही कहीं से कहीं खबर भेज सकते हैं और वहां का कुशल संवाद मंगवा सकते हैं। फिर आज बड़ी हवेली से, बड़ी बहुरिया की ओर से हरगोबिंद संवदिया की बुलाहट क्यों हुई?
3: हाँ, लो आ गई बड़ी हवेली। निश्चय ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है। चांद सूरज को भी ना मालूम हो, परेवा पंछी तक न जाने। हाँ। पाए लागू बड़ी बहुरिया।
4: आ गए भैया।
3: हाँ।
4: लो ये पीढ़ी सरका लो, कुछ देर बैठ जाओ।
3: हाँ। बड़ी हवेली तो अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है, जहां नौकर नौकरानियों की भीड़ लगी रहती थी। आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर भटक रही है। ओह, कहां गए वो दिन? बड़े भैया क्या गए, जैसे सब खेल खत्म।

0: तीनों भाइयों ने आपस में झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दखल कर लिया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया। कहां जाती बेचारी?
1: अरे ये मुदियाइन बूढ़ी काकी काहे बड़बड़ा रही है?
2: अरे देखो बड़ी बहुरिया, उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है पर दाम देते समय कड़वा। मैं तो आज दाम लेकर ही उठूंगी यहाँ से। हाँ।
3: अरे मोदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का ये काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है।
2: क्या कहा? काबुली कायदा? फिर काबुली का नाम लिया तो अच्छा ना होगा, कहे देती हूँ। हाँ
3: लो।
2: देखो जी, मैं फिर आऊंगी और अब की बार उधार लिए बिना हिलूंगी नहीं यहाँ से, कहे देती हूँ। बड़े आ जाते हैं उधार लेने, मांगने जाओ तो वापस नहीं करते। और हाय
4: हर गोविंद भाई, तुमको एक संवाद ले जाना है आज ही। बोलो, चाहोगे ना?
3: कहाँ बड़ी बहुरिया?
4: मेरी माँ के पास।
3: माँ के पास? कहिए क्या संवाद है?
4: माँ से कहना मैं भाभी भाभियों की नौकरी कर अपना पेट पालूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किस लिए? किसके लिए?
3: बड़ी बहुरिया।

0: हर गोबिंद भैया, ये 5 का नोट ही बचा है, अब पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी। आने का खर्च माँ से मांग लेना।
1: ना ना बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजाम कर लूंगा।
0: तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? और सुनो, लगता है सुनते ही भैया तुम्हारे साथ आ जाएंगे।
1: अरे वो तो ठीक है, लेकिन मैं इंतजाम कर लूंगा बहुरिया, आप फिकर मत करिए। ये नोट रखिए,
0: अरे
1: हारे गाढ़े काम आएंगे। अच्छा, मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही निकल जाऊंगा।
0: अच्छा, मैं तुम्हारी राह देखती रहूंगी।
1: अच्छा, चलता हूँ।
2: संवाद यानी संदेश पहुंचाने का काम सहज नहीं होता। प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से सुनाना बहुत कठिन है। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव-गांव संवाद पहुंचाए उसको और क्या कहेंगे, निठल्ला, कामचोर, पेटू और क्या क्या नहीं। पर सच ये भी है कि गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहु बेटी का संवाद हरगोबिंद ने नहीं पहुंचाया है।

0: भाई साहब,
1: हाँ
0: थाना बिहपुर में ये डाक गाड़ी रुकती है या नहीं?
1: अरे भैया, थाना बिहपुर में सभी गाड़ियाँ रुकती हैं।
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ, और मैं भी वहीं पर उतरूंगा।
0: अच्छा,
1: घबराओ मत, बता दूंगा।
0: तो कितना समय और लगेगा?
1: अरे बस थोड़ी दूर है, आने वाला है।

0: थाना बेहपुर पर गाड़ी पहुंची तो हरगोबिंद का जी भारी हो आया। बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाते समय वो अपने कलेजे को कैसे संभालेगा। बड़ी बहुरिया के संवाद रह रह कर उसके कानों में गूंज रहे थे।
1: हरगोबिंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है, किस लिए, किसके लिए? मैं बथुआ साग खाकर कब तक जियूं, कब तक जियूं?
2: बड़ी बहुरिया, हम क्या करें?
0: हरगोबिंद का मन कलपने लगा। गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी तो गांव में क्या रह जाएगा? किस मुंह से वो ऐसा संवाद सुनाएगा? ये सोचते सोचते हरगोबिंद गांव पहुंच ही गया।
3: माँ, माँ देखो, हरगोबिंद काका आए हैं।
4: पाए लागू माँ जी।
5: जीते रहो हरगोबिंद बेटा, क्या समाचार है?
4: जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है।
5: मेरी बेटी का कोई संवाद?
4: संवाद? जी संवाद तो कोई नहीं।
5: हाँ?
4: बस मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि चलकर आप लोगों के दर्शन कर लूं।
5: तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो?
4: जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे ही बड़ी बहुरिया ने कहा है कि

0: कि हाँ, अगर छुट्टी हुई तो दशहरे के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी।
1: सो तो है।
0: अरे, छुट्टी मिलेगी तो कैसे, सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही तो है।
1: अरे हर गोबिंद, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर अपनी दीदी को लिवा ला, यहीं रहेगी। अरे वहां अब क्या रह गया है उसका? जमीन जायदाद तो सब चली गई, तीनों देवर भी शहर जाकर बस गए। कोई खोज खबर भी नहीं लेता उसकी। अब तो मेरी बेटी अकेली रह गई है
0: नहीं नहीं
1: वहां।
0: नहीं नहीं माँ जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है,
1: हाँ?
0: टूट फूट गई है तो भी है तो आखिर बड़ी हवेली, बड़ी बहुरिया का गांव ही परिवार है, हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया, और गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर कैसे जाएगी माँ जी।
1: हाँ सो तो है। चलो अच्छा है। बबुआ अब
0: हाँ?
1: थोड़ा जलपान कर लो।
0: अच्छा माँ जी।
1: अरे हर गोबिंद, क्या सोच रहे हो? कुछ खाते क्यों नहीं बबुआ?
2: हर गोबिंद ने थाली की ओर देखा। थाली में दाल भात, तीन किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार, इतना सब कुछ। उधर बड़ी बहुरिया का बथुआ साग उबाल कर खाना। हर गोबिंद के मुंह में एक निवाला भी न जा सका। वो सोचने लगा, ये उसने क्या किया, वो किस लिए आया था, वो झूठ क्यों बोला। ये सोच सोच कर रात भर हर गोबिंद को नींद ही नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसकती रही। उसने जी कड़ा किया, वो संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। उसने निर्णय लिया कि वो सुबह उठते ही बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद अक्षर अक्षर सुना देगा। अगले दिन सुबह उठते ही वो माँ जी के पास जा पहुंचा।
0: माँ जी, अब आज्ञा दीजिए,
1: अरे
0: मुझे पहली गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अच्छा माँ जी, अब पैर लागू।
1: जीते रहो बेटा,
0: अब चलता हूँ।
3: क्यों भाई, रहा खर्च तो है?
0: अरे भैया जी, आपकी दया से किसी बात की कमी नहीं है।
3: अच्छा
0: अच्छा, राम राम
3: राम राम
0: राम राम।

0: हरगोबिंद के पास तो बस कटिहार तक जाने के पैसे थे। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वो कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है? बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा?
1: कटिहार आ गया। उतर लो, जाना है जलालगढ़। टिकट कटिहार तक का ही है। जलालगढ़ है 20 कोस दूर। अरे बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी, पैदल ही चलता हूं। बीस कोस की मंजिल भी भला कोई दूर की मंजिल है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय।

0: भूख से बेहाल, थकान से चूर, लड़खड़ाता हुआ हरगोबिंद बहुरिया के दरवाजे पर गिर पड़ा।
1: हरगोबिंद भाई आ गए? हाय, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ?
2: बड़ी बहुरिया।
1: हरगोबिंद भाई, लो एक घूंट दूध ले लो, मुंह खोलो। हाँ लो, आप पीलो पीलो, शाबाश शाबाश। हाँ शाबाश, अब जी कैसा है?
2: बड़ी बहुरिया, मुझे माफ कर दो।
1: कहे?
2: मुझे माफ कर दो,
1: पर
2: मैं तुम्हारा संवाद न कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ।
1: हरगोबिंद भाई,
2: मैं तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, कोई कष्ट नहीं। मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया, तुम सारे गांव की माँ हो, तुम्हारा सब काम करूंगा मैं।
1: हरगोबिंद भाई, तुम
2: मैं अब निठल्ला बैठा नहीं रहूंगा। बोलो बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? नहीं जाओगी ना? नहीं जाओगी ना?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी।
3: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम संवदिया। आशा है कि यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरूर दीजिए।
4: Join together in the Janajatiya Garima Utsav, celebration of pride, aspiration and the journey towards Viksit Bharat. Inspired by the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, tribal communities move forward with hope, dignity and determination. Celebrating Janajatiya Garima Utsav 2026, 10th May to 9th June, showcasing progress across every generation towards a stronger, inclusive and empowered Viksit Bharat.
5: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम जो हमें लेकर जाएगा मरुभूमि यानी
3: मरुस्थल में या रेगिस्तान में
5: जी,
3: और बताएगा विस्तार से रेगिस्तान के बारे में। तो आइए जानते हैं रेगिस्तान या मरुभूमि के बारे में और सुनते हैं कार्यक्रम द डेजर्ट।
6: दोज ऑफ अस हु लिव इन रीजंस कवर्ड विद फॉरेस्ट्स एंड सराउंडेड बाय हिल्स may find it difficult to imagine what a desert is really like. The popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rain falls and, therefore, no vegetation grows. It is dry, hot, waterless and without shelter. But this is not entirely correct. For those who have studied it, the desert can be a beautiful place. It is the home of a variety of people, animals and plants that have learnt to live under very hot and dry conditions. True, the ground is not always hidden by a cover of grass, plants and trees as it is in other climates. But whenever it rains, which is rare, desert flowers bloom and the sight can be as rewarding as that of any tropical garden. A desert is not always a flat, unchanging wasteland of dry sand. It may have mountains and hills. It may have an oasis, big or small. An oasis is like a green island in the middle of a desert.

0: where a spring or a well gives plants and trees a better chance to grow. A desert may be hot like the Thar or cold like Ladakh, but generally speaking, if a place has little or no water and vegetation, people usually call it a desert. Some deserts are almost totally without water. In such places, strong winds blow, raising heaps of sand and depositing them as mounds. These are called sand dunes that shift and move endlessly across the desert. Few plants can survive on such dry, shifting sands. All living things need water in order to survive. Camels can do without water for days together. The reason is they sweat very little. We sweat because we must keep our body temperature constant. We sweat when it gets hot, and this cools the body. Camels can stand high body temperature. They don't need to sweat and can, therefore, retain the water they drink for long periods of time. The smaller desert animals do not drink water. They burrow underground during the hot day and come out at night to eat. Some of them eat other animals and get the water they need from the moisture in the meat. Others eat plants and seeds and get the water they need from plant juices. Desert plants also adapt themselves to the life they lead. Cactus plants store water in their thick stems. Their roots lie close to the surface of the ground and quickly absorb the moisture from the light rains that occasionally fall. The major feature of all deserts is, of course, dryness and variations of temperature. In humid climates, the moisture in the air acts like a blanket and protects the earth's surface from the hot rays of the sun. The absence of this blanket in desert lands causes the desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at night. Deserts are an important part of nature's great plan. They are there like the dense forests and the deep oceans. Just because they are hot and dry, one should not look upon them as useless parts of the earth.
1: आशा है कि ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम के समापन की आपसे आज्ञा चाहेंगे, तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम जिसका विषय है पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 साल, बदलता बुंदेलखंड। विशेषज्ञ हैं राजेश सिरोठिया, राजीव सोनी और वरिष्ठ पत्रकार। वार्ताकार हैं सचिन चौधरी और प्रस्तुति है प्रादेशिक समाचार एकांश की।
5: तो भैया बिन्नाहरो राम राम, और हम हैं सचिन चौधरी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 12 साल पूरे हो गए हैं। साल 2014 में जब उनने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तो उस समय देश ने बड़ी उम्मीदों से उनको वोट करे, उनको बहुमत दौर के बाद एनडीए की सरकार के तौर पे उनके 12 साल पूरे हो गए हैं, तीसरा कार्यकाल चल रहा है। देश के मध्य प्रदेश के या बुंदेलखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो विकास के बहुत सारे काम भए और एक नए तरीके के ऐसे काम भी भए जिन पे पिछले कई सालों से देश के लोगों को उम्मीदें हती। यही तमाम विषयों पर चर्चा करवे के लाने आज हमारे संगे मध्य प्रदेश के और बुंदेली के दो बड़े पत्रकार राजेश सिरोठिया जी मौजूद हैं, संगे राजीव सोनी जी मौजूद हैं। सो हम उनके संगे विशेष आयोजन पर एक विशेष परिचर्चा करें। राम राम भाई साहब, आप दो ही जन्म हो।
6: राम भैया, राम राम।
5: तो शुरुआत राजेश सरोठिया जी से करें भाई साहब। मध्य प्रदेश

0: प्रचारक के रूप में पूरे देश भर में उन्होंने दौरा किया। वो दौरा कैसे करो, उन्होंने बसों में, ट्रेनों में, जनरल डिब्बों में भी किया, स्लीपर कोच में भी करी। तो काहे जनता की नब्ज को वो शुरू से समझता रहे प्रचारक के नाते। वो तब वो वास्तव में मंच पे नहीं आते थे, मंच पे नहीं आते वे, सिर्फ जनता के बीच में काम करना। आपने बुंदेलखंड में भी खूब घूमे हुए, जब प्रचारक सागर में दीपक होटल में रुकते हैं, गोपाल भार्गव
1: जी अभी
0: कृष्णगंज बैठे।
1: 98 तक की बात बता
0: नहीं
1: रहे हैं, तो
0: नहीं वो
1: जब
0: की
1: जब
0: पहले की,
1: प्रचारक।
0: पहले की बता रहे होगी। 98 में तो जब उनको 98 के चुनाव के लिए जब प्रभारी बनाओ मध्य प्रदेश को, प्रभारी महासचिव बने, और 96 में उनको मध्य प्रदेश को प्रभार था वो, तो उन्होंने बहुत कोशिश करी थी। सबसे मैंने भाजपा के दफ्तर का आधुनिकीकरण करने की, अगर कोई श्रेय है तो वो मोदी जी को जाऊ, क्योंकि उनने आते से ही सबसे पहले कही थी कि हमें कंप्यूटर चाहिए। अब आप सोचो 96-97 में कंप्यूटर तो कॉमन नहीं है, तो लेकिन पार्टी का काम उन्होंने बिल्कुल करवे के लाने, उन्होंने कहा कंप्यूटर ले आओ
2: ईमेल को जिक्र तो अभय शिवराज जी ने करे ही है, कि
1: करो ही।
2: उनने
1: हाँ
2: पूछी थी कि ईमेल की के पास
1: वो
2: है।
1: किताब में उन्होंने अपनापन किताब में उन्होंने ये बात
0: पंचानवे
1: कही।
0: पंचानवे की में जो है ईमेल आ गया तो भारत में, लेकिन वो प्रचार प्रसार बड़ा बड़ा तनक फिर जो आज 98 तक तो काफी हो गया था हुआ। तो कुल मिला के मोदी जी ने, क्योंकि जमीनी समझ थी ना, उसको फायदा जो है वो 98 के चुनाव में तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अब तो भाजपा में बहुत लट्ठा पटक चल रही थी, उठा पटक बहुत भयंकर। तो ये तो 98 में नहीं आ पाए। लेकिन मोदी जी को जब सीधे होते गुजरात को उनको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाओ, तो वो 13 साल में उनने जो विकास को, डेवलपमेंट को जो मॉडल रखो, वो एक बहुत बड़ी गुजरात की, गुजरात में भाजपा के विकास को या गुजरात स्टेट के विकास की एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। तो वो मॉडल उनने अपना दिल्ली में आए तो उनने उसको और विस्तार और आकार दो। तो उनकी सोच और समाज और दृष्टि की बात करें तो बहुत व्यापकता मारो है। आज जो ईरान की जंग शुरू हो रही है, एक चक्कर में विदेशी मुद्रा का डॉलर की कीमत, डॉलर महंगा हुआ हो आपके पास, लेकिन मोदी जी ने पहले से ही विदेशी मुद्रा का भंडार खूब बना कर रखो, तो पूरा ध्यान उनका, साल भर से 1.5 साल से जो है सोना खरीदो जा रहा हो, क्योंकि रिजर्व बैंक में जितना तो आप सोने रहे हैं उतने आप मुद्रा भी छाप सका दो आगे चल के। तो बहुत सारी चीज़ें करी। और दूसरी चीज़ ये कि आप दुनिया में वो जो जो ब्रिक्स के जरिए जो है वो जो अमेरिका की जो डॉलर की डिपेंडेंसी है, डॉलर पे आदमी में निर्भरता है, उसके कारण डॉलर के रेट बढ़ रहे हैं। वो निर्भरता को कम करने के प्रयास जो है ब्रिक्स के जरिए कर रहे हैं। 20 ब्रिक्स में अभी 12 देश थे, अब 20 देश हो गए हैं। फिर आप देखो कि हमें विदेशी मुद्रा बचाऊं है, तो उन्होंने क्या कि सबसे ज़्यादा खर्चा होता था भारत के पास सुरक्षा में, हम सब आयात करते सबको, वो मैं आपको डॉलर में पेमेंट करना पड़ता हूँ। तो आपने रक्षा के उत्पादन में आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ाए शुरू किए, अब बहुत काफ़ी कारगर हो गए। और DRDO जो है, हमने पुणे जाके देखो तो क्या काम काज कर रहे हैं वो लोग, किस स्तर को काम कर रहे हैं। ये ड्रोन टेक्नोलॉजी ये सब जो सिंदूर ऑपरेशन में जो आपको देखने मिलो, आज ये ड्रोन जो है वो तो यूक्रेन में और ईरान में जो है काफ़ी वो कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उनने करी रक्षा के क्षेत्र में। फिर उनने कहा कि टेक्नोलॉजी दूसरा, अमेरिका गर्व करता डॉलर के अलावा अपनी टेक्नोलॉजी पे, तो टेक्नोलॉजी में भारत को खड़ा करने के लिए जो सीडेक है और इसरो है, आकाश अंतरिक्ष विज्ञान के लिए इसरो, इन सब पे जो है पहले ध्यान ही नहीं दिया जाता तो सरकार, पहले की सरकारों में, लेकिन मोदी ने पूरे फोकस इन पे जड़ा कर रखो कि हम इन चीज़ों में आगे बढ़ेंगे रक्षा। और उल्टो बल की हम दे हैं दूसरे को, तो हमारे पास उल्टा पैसा आएगा, डॉलर आए। तो ये बहुत छोटी छोटी मैंने बहुत गहरी चीज़ें हैं, लेकिन आम आदमी को इतनी समझ नहीं आता। आदमी को तनक जा दिखाते कि नोटबंदी को फैसला कर दो है, या GST को लेकर विवाद हो। लेकिन मोदी जी की सबसे अच्छी खासियत एक और है कि उनको अगर जावेद जरा भी लगा था कि उनमें कोई गड़बड़ी कर रहे हैं या कुछ गलती हो गई उनसे, तो उनको सुधार करने में देर नहीं लगा। तो जो कोर्स ऑफ करेक्शन का होता है जो अंग्रेजी में कहें, तो वो कोर्स ऑफ करेक्शन की जो प्रक्रिया जो है उनमें मोदी में कूट कूट के

0: रही है। आप हो याद होगी नोटबंदी के समय जब बवाल मचा, 64 चार महीना में 64 परिवर्तन करे उनने, जैसे जैसे जनता से फीडबैक, क्योंकि जनता उनकी बहुत से जनता से टच उनका बहुत गहरा है और वो उनका एक प्रचारक के नाते वो तो रहा ही रहा है। अब उनके प्रधानमंत्री के रूप में भी उनने पूरा फीडबैक देश भर से जुटाने के लिए बहुत सारी एजेंसियां कर रखी हैं। एक ही एजेंसी पे भरोसा नहीं है कि केवल खुफिया ब्यूरो इन्फॉर्मेशन दे रही है, बहुत सारे स्रोत हैं और हर देश के हर एक इलाके के हैं। इसलिए देखो आप दक्षिण में भी भारत भाजपा को अंदर घुसड़ रहे हैं क्योंकि वहाँ की उत्तर की तो योजनाएं कुछ ऐसी डेवलपमेंट की बहुत अच्छी अच्छी उनने वहाँ चालू करी हैं। ऐसे बंगाल ने जिस दिन उनने 2014 में शपथ ली थी उनने कहा था हरियाणा और बंगाल हमारे दो पहले फोकस, और उनने कौन भेजो तो कैलाश विजयवर्गीय, पहले हरियाणा भेजो फिर तो बंगाल भेजो। तो उनने कही कि अंग्रेजी अपने 14 में ही उनने 19 की सोच चालू कर दी,
1: मतलब समय टेम से और बहुत आगे की सोच
0: कि अपनी आप 19 में जहाँ से जितनी ज्यादा सीटें मिली अपने मिल है कहूँ तो कहाँ से मिल सका था, तो 19 स्ट्रिक्ट पर फोकस करो उनने। तो जो कोलकाता से आपने 19 में जो भरपाई करी 19 सीटें आ गई थी, तो ऐसे ही आपको भरपाई वही ना कहूँ से।
2: अब जहाँ तक
1: जी राजीव भाई, जब जो है अगर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे राजेश भाई साहब ने बहुत सारी चीज़ बताई, मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर बात करें तो मध्य प्रदेश पे बहुत जब से प्रधानमंत्री बने मोदी जी, मतलब जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं उनमें समय लगा सबसे ज़्यादा दौरे मध्य प्रदेश में, बहुत दौरे भी भाई उनके अलग अलग जगह, चाहे वो निमाड़ अंचल हो, चाहे बुंदेलखंड अंचल हो, चाहे बिंद हो, चाहे मध्य बुंदेलखंड हो, मालवा हो और उज्जैन को हो या मालवा को, उनको लगातार फोकस मध्य प्रदेश पे भी शुरू मतलब जब से ही है, और मतलब एक अलग प्रेम भी नज़र आउट और उनको फोकस भी नज़र आउट।
2: नहीं, ये बात सचिन भाई आप सही कह रहे हो। मध्य प्रदेश में उनकी जो दौरा भय शुरू में, जैसे खंडवा आए थे सबसे पहले वो पावर प्लांट को,
0: सिंगाजी
2: पावर प्लांट को हम, और जो संयोग है कि हमें उनके ज़्यादा मतलब हमारे ख्याल से 70-80% उनके कार्यक्रम हमने अटेंड करे या कवर करे, मतलब ये थे सिंगाजी खंडवा, चाहे वो सीधी में 18 के चुनाव हो,
0: सिंगरौली
2: के सिंगरौली, और ये थे फिर जो अपना उज्जैन के दो दौरे उनके लगातार भय भोपाल के भय। तो मध्य प्रदेश से उनको कनेक्ट तो बहुत गहरो है और मध्य प्रदेश की स्टडी भी उनके लाने बहुत अच्छी है। और योजनाओं की जहाँ तक बात करें या रोजगार की बात करें, तो वो मैं अपन को जो राजेश भाई ने बहुत सी चीज़ें गिनाई उनकी, अपन इतने थोड़ा सा विषयांतर या थोड़ा सा मतांतर जो हो सका था कि अबे रोजगार के क्षेत्र में बहुत कछु हुए बाकी है, लेकिन एक बात जरूर है, जौन बात से मोदी आज जन जन के नेता बने भए हैं या लोगों के दिल में बैठे हैं, या मोदी का वो एक डायलॉग है जो उन्हें चला उठे बीजेपी वाले कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी है, ऐसा कुछ, तो वह बात ऐसे है कि वो सनातन को जो इनने झंडा फहराता हुए वो चीज अभी तक अपने देश में अभी तक ने दिखा रही थी, नजर नहीं आ रही थी। वही को एक बहुत बड़ा कारण है कि वो कांग्रेस आजकल हाशिया पे धकेल गई है, कि मतलब जब उनको समझ में नहीं आई यह बात कांग्रेस के नेताओं के या कांग्रेस को, कि उन ये सनातन को अनदेखी करवे को नुकसान उनको कितना झेलने पड़ सका था। अब यह चीज जब अपन के सामने दिख रही है कि आज मध्य प्रदेश में पहले तो 40 सीटें होती जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ी का, तो अब 29 में, तो आज की स्थिति में अपन बात करें 2026 में जब बैठे हैं अपन, तो 29 की 29 ही सीटें बीजेपी के पास हैं, वो केवल मतलब केवल मोदी के कारण।
1: और तो और कौनों भी प्रदेश में, चाहे छोटो प्रदेश हो मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य की अगर बात करें, अगर 100% लोकसभा की सीटें कौनों पार्टी के उनमें हैं, तो इको मतलब के जनता के मन में मोदी हैं, उनको मानने तो आए
2: तो है, तो सामने दिखा रही है अपन
1: वही लोकतंत्र में, तो कोई की लोकप्रियता या अलोकप्रियता वोटों से
2: सिर्फ,
1: अगर 100% सीटें अगर मिल रही तो लोकप्रियता तो पर है,
2: लोकप्रियता पूरी है। अब जो है कि बुंदेलखंड की अपन जहाँ तक बात करें, तो जैसे केन बेतवा की एक बहुत बड़ी उनने योजना दे दी है बुंदेलखंड के लाने, या और भी जैसे अब हम अपन और जैसे आप ही हो और राजेश भाई हैं, अपन और कब उन्हें सोची थी कि छतरपुर अपन ट्रेन से जाएं या खजुराहो ट्रेन से जाएं, अब अपन जा रहे कि नहीं जा रहे, तो और भी
1: दिल्ली से खजुराहो वंदे भारत हो गई,
2: वंदे भारत
1: पन्ना में ट्रेन पहुंच रही,
2: पन्ना में ट्रेन की वो चल रही है, तो सोचो आप, तो ये चीज़ें, अब जैसे हमारी हमारी ननिहाल है छतरपुर, हमारे जन माता जी की बड़ी इच्छा थी कि कभी छतरपुर ट्रेन से जाएं, अभी जाएं तो उनको गई उनके लाने बड़ा, मतलब उनके मन में जो खुशी हुई उनको तो अपन शब्दों में बयान कर वो बड़ा मुश्किल है। तो ये चीज़ें हैं। अब जहाँ तक बात है कि रोजगार की, ये में तो मोदी जी को तनक सोचने पड़े और करने पड़े जो काम आवे थोड़ा सा।
0: आपसे थोड़ा सा अलग राय रखना चाहते हैं। असल में देखो, रोजगार की कमी नहीं है, कमी उस आदमी में है, वो सोच रहा है कि हमारे लिए छोटा है, हमारे हिसाब से जो इसे हमें नहीं करने नो। हम तो जो है IAS बनना वो चाहते हैं, अब लेकिन हम डिप्टी कलेक्टर बन गए तो नहीं कर रहे या जो प्राइवेट क्षेत्र में जो रोजगार हो रहा है वो बहुत सारे रोजगार के साधन जो है। आप वो तो मोदी जी तो इस विजन के संग चल रहे कि आप खुद दो दूसरों को रोजगार दो, माने आप अपने काम धंधे खोलो, उसको चालू करो, छोटे छोटे MSME
1: है, स्टार्टअप योजना भी ले आए, प्रयास भाई
0: लेके आए। अब समस्या यही है तनक की कि आदमी को लगा था कि हमें तो, माने हर IIT करे वालों सोचे कि हमें अमेरिका ही में नौकरी करने हैं, तो फिर भैया भारत के संस्थान का खिलाने का भारत सरकार तो पैसा खर्च कर रहा था उनपे। तो अब वो मोदी चाहते हमारा टैलेंट बाहर न जाए, प्रतिभा का पलायन नहीं हो, वो के लाने में बहुत बहुत जगह चीजें कर रहे हैं। और जो जो अब IT सेक्टर में जो सुंदर पिचाई और ये सब गूगल सब NVIDIA सब AI सब आ रहा है, AI पे कितना जोर दे रहे वो, और आदमी कोई लगा था वो कि AI से जो है अब यही बात है नौकरी चल
2: जाएगी,
0: नहीं है सर, हमने खूब स्टडी करी होगी कि AI से, तो AI आपके काम को आपकी दक्षता बढ़ाने वाला है। वो जो है चाहे सिविल इंजीनियर हो उनमें भी AI की ज़रूरत है, आपकी कोर ब्रांचें हैं उनमें भी ज़रूरत है, और आपको कंप्यूटर साइंस और ये में तो है ही है।
2: नहीं, आपके लाने AI हम जहाँ तक देखते हैं कि AI आपके काम में आपके सहयोगी की आपकी मददगार की भूमिका ज़्यादा निभा देते हैं।
0: जैसे AI की अपनी पत्रकारिता में कहो, वो बोल देते एक बार कहीं जो पत्रकारिता के मामले में हमारे एक जगह तक जाके हमारी जानकारी रुक जाती, अंतिम निर्णय तो एडिटर ही कर रहे
1: हैं।
0: तो बाकी जगह पे भी अंतिम निर्णय जो है वो सिविल इंजीनियर को ही करना पड़ा है, लेकिन वो आपको सजेस्ट कर देगा,
1: बस केवल सजेस्ट कर दे। जैसे अपन कोई भी चीज़ की डिजाइन करो तो वो आपको बता दे कि जो ऐसा हो, जैसे कई बार आप कोई कपड़ा खरीद पे जाओ तो पैर के देख लो कि भैया चार वेरायटी, तो ऐसे AI आपको बता दे कि ई रंग पे जो अच्छा लगे ई पे जो अच्छा, अब चॉइस तो तुम्हें को
2: करना है। जो हुनर और विवेक वो तो आपके संग है, आपके आपकी एसेट है, तो वो हिसाब से तो आप,
0: लेकिन जा जरूर है कि आप उतना AI में भी अपने कैसे, देखो कहा है पूरी जिंदगी भर सोच वे समझ वे की प्रक्रिया रही है। आप पूरी साल पूरी जिंदगी आदमी विद्यार्थी भाव रखे है तो वो दिक्कत नहीं आने।
1: केन बेतवा की भाई जब बात करें, केन बेतवा बुंदेलखंड के लाने एक बहुत अहम योजना है, और अटल जी के समय एक सपनों जो देखेगा तो, और चूंकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के चूंकि कोऑर्डिनेशन से जो होने थी, और ज्यादातर बार ऐसा भाव कहते को की सरकार तो ते को की सरकार,
0: अब देखो तो डिफरेंस करें क्या आप हो चुके बुंदेलखंड में एक तरह से काम हुई है
1: जी,
0: काम मिले लोगों को वो तो ठीक है
1: जी,
0: लेकिन बांध बनने बनवे से मध्य प्रदेश बुंदेलखंड के लोगों को उतना फायदा नहीं होता
1: जी,
0: क्या कि जो वो तो जहाँ डाउन स्ट्रीम रहते बांध की वो तो ज्यादा नहर पहुंचती हैं
1: जी,
0: इधर नहीं होता उतना, तो नहीं
2: इस तरफ से उतना बह के जा रहा है,
0: इधर डूब डूब
2: डूब क्षेत्र अपना
0: जा रहा है। आज ये बुंदेलखंड जो है जिनको मतलब मुख्यमंत्री मोहन यादव कहते हैं कि मध्य प्रदेश नदियों को मायका है
1: जी, जी।
0: हम भी कहते हैं कि बुंदेलखंड जो है मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियों का मायका है
1: जी, जी।
0: तो बनो बुंदेलखंड सूखो रह जाते हैं
1: जी,
0: तो आपको कम से कम जैसे कि अभी जो बीना दसान मालो परियोजना है
1: जी,
0: ऐसा पूरा फायदा बुंदेलखंड को ही मिले है
1: जी,
0: तो जाओ धीरे चल रहा हो काम, हमने मुख्यमंत्री को भी कही थी वो कह ले तो वही हमें लिख के दे दो जो कुछ, तो लेकिन अपन के बगल में बैठे थे अफसर उनसे नहीं बोल सके कि भैया कराओ इसको ट्रैप प्रायोरिटी पे
1: जी।
0: तो ये बुंदेलखंड में सबसे बड़ा समस्या ये है कि बुंदेलखंड से नदियाँ निकलती, बुंदेलखंड जो है सूखा रहता है।
2: अबे अबे राजेश भाई, अबे पाँच तारीख को पर्यावरण दिवस है, तो 5 जून को रहते, आज अपन 9 जून को बात कर रहे हैं, 4 दिन पहले हमने नदियों पे हमने पिछले साल भी छापो तो कि बेतवा उतर उद्गम पे ही सूखी है, उतर धूल धूल उड़ रही, धूरा उड़ रही है उतर। और अब 5 तारीख को हमने स्टडी करी चंबल की, छिपरा की, और बेतवा तो है ही, और नर्मदा की। यार आज की स्थिति में राजेश भाई आपको बताते हैं, नर्मदा जो अब जीवन रेखा मानी जाते हैं अपने मध्य प्रदेश की, 16 जिला तो सीधे जुड़े हैं उसे, जो कुंड है ना, कुंड में वो गौमुख बनो है, गौमुख में से पानी नहीं टपक रहा और कुंड में जो पानी भरो है वो इतने से भर के और कुंड में से ओवरफ्लो हो तो जो ओवरफ्लो बंद होगा आज की स्थिति में, जून है हालांकि, और वो जो कुंड को पानी आगे बह के जाते हो, कपिल धारा पे एक बहुत बढ़िया वाटरफॉल बनत तो वो पहाड़ सूखो पड़ो है। तो जो अपन इतने सालों से देख रहे
0: उसका जो मैं जो उसके सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ, नर्मदा जी की खासियत ये थी कि नर्मदा जी के पास लगे हुए जो पेड़ थे साज के, साल के,
2: वही बात ना, वही बात,
0: वो क्या करते थे, हवा से नमी
2: सोखते थे और पानी जड़ों में पानी पहुंचा लेते,
0: आवे थे वृक्षारोपण के अभियान चले तो उनने ऐसे पेड़ लगा ले जो पानी नमी खींचने लगे, जमीन से नमी खींचने लगे, तो उससे नर्मदा जी के उस पे तो प्रभाव पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा।
1: तो भाई जैसे जो संत रविदास जी जो मंदिर की जो परिकल्पना बनी,
2: बिल्कुल,
1: और जो सामाजिक समरसता को जो कॉन्सेप्ट जो है मोदी के आवे के बाद, प्रधानमंत्री के तौर पे आवे के बाद, तो इन पे एक जो जगह नहीं, मतलब सब जगह बहुत काम हो, जैसे बुंदेलीखंड के लिहाज से अगर बात करें तो कोई भी निर्णय हो रहा है तो भी ये हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोगों को भी समाहित करे जाए, जैसे मान लो अभय को निर्णय देख लो आप, जैसे हालांकि राजनीतिक निर्णय है कि भाई मध्य प्रदेश की राज्यसभा से बुंदेलखंड से केवट समाज,
2: केवट समाज
1: को के एक व्यक्ति को ले आए भी, या अग्रवाल के तौर पर, मतलब इन इन जातियों के बहुत वोट नहीं है लेकिन उनकी कोशिश जा है कि हर वर्ग कोनू ना कोनू जगह जाके राजनीतिक तौर पे एडजस्ट हो जाए, कहीं ना कहीं एक
2: मतलब ये चीज, मतलब
1: एक पहले सुमित्रा वाल्मीकि जी को जैसे जबलपुर से ले आए, बुंदेलखंड से ही लगो इलाका जबलपुर है,
2: बड़ो वर्ग है। और दूसरा एक चीज और अपन ने जो देखी, जैसे अपन तीन ही जनों को बैकग्राउंड बुंदेलखंड को है, तो अपनों ने शुरू में बचपन में देखी कि जाति प्रथा ज्यादा दिखाती, अब वह चीज धीरे धीरे धीरे धीरे कम हो गई है, खत्म हो रही है लगभग। तो जो केवट समाज की अगर अपन बात करें, महेश केवट किलाने जैसे उनने कैंडिडेट बनाओ राज्यसभा किलाने, तो केवट समाज बहुत है, अमोरों के संग कितने स्कूलों में पढ़े अपन और कॉलेज में पढ़े संगे बहुत, और दूसरा वो तरफ करीब मध्य प्रदेश के क्षेत्र में हमें हमने एक आध बार खबर भी छापी, करीब 32 सीटें ऐसी हैं जो उनपे केवट समाज 25,000 से ज्यादा उनकी संख्या है, और 16 सीटें ऐसी हैं जो उनमें 30,000 के ऊपर हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी अगर कोई विजन लेकर चल रहे तो उनमें स्थानीय स्तर की सरकारें, चाहे मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, बाकी भी हों, या उके और नीचे जिला स्तर के प्रशासन के लोग उ सोच से सोच अगर उ विजन पे मिला लें तो कहीं ना कहीं बुंदेलखंड की रोजगार की समस्या पे भी, चूंकि विजन बड़ो तो आ रहो लेकिन नेचे भी संगे संगे उसे कनेक्टिविटी हो तो जुड़त रहे, और इसके संगे ही जो है समावेशी सोच को लेकर जी प्रकार से प्रधानमंत्री को विजन है तो उको लेकर लगातार काम हो रहा है, और एक बड़ो बदलाव कई बार, और जैसे काम में हर बार कई भी जात के जब कोई भी व्यक्ति 10 काम करे तो 2 में चूक भी हुई है तो उसमें सुधार की गुंजाइश भी हुई है, 100% तो कोई हो नहीं सकता है,
2: सबके संग है वो, अपन देखा थे कि ओवरऑल
1: कंप्लीट तो कोई भी नहीं हो सकता
2: है, अपन उनको स्वीकार ऐसे ही कर रहे हैं कि आपके अंदर 80% खूबियां हैं, 20% खामियां हैं, वो धीरे धीरे दूर हो जाए,
1: कहीं ना कहीं शुरू हुई है। तो कुल मिला के बहुत सारे काम, नए काम, नए विजन के संगे पिछले 12 साल में भय हैं, और उम्मीद करें कि जब तक उनको कार्यकाल रहे या आगे भी जो भी सरकारें जब भी आती हैं तो अपन तो हमेशा कोशिश यही करें और सोच भी यही रखें कि चाहे बुंदेलखंड हो, मध्य प्रदेश हो या देश हो, उनके समावेशी विकास के संगे, सबको संगे लेके चलने वाले विकास के संगे हमारे देश के प्रधानमंत्री के तौर पर काम करें। फिलहाल 12 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पूरे भय, और हमने तो अपने जीवन काल में पहली बार कौन प्रधानमंत्री को 12 साल ही देखे, मनमोहन सिंह जी, नेहरू जी को देखे नहीं, राजकरण देखे नहीं है, मनमोहन सिंह जी 10 ही साल रहे, अपन ने तो अपने जीवन में पहली बार 10 साल से ज्यादा कोई प्रधानमंत्री को देखे, तो ईश्वर उन्हें दीर्घायु प्रदान करे और ऐसे ही देश के विकास के लाने काम करें। चर्चा में आप दो जने शामिल भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद,
2: बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम।
3: अभी आप सुन रहे थे पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 साल, बदलता बुंदेलखंड, ये विशेष कार्यक्रम। विशेषज्ञ थे राजेश सिरोठिया और राजीव सोनी, वार्ताकार थे सचिन चौधरी और प्रस्तुति थी प्रादेशिक समाचार एकांश की। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही देर में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: मैं डॉक्टर अजय सिंह। आकाशवाणी 9 दशकों से भारत की आवाज रही है, जिसने हमारे समृद्ध देश की विरासत को सजोने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है। आकाशवाणी को 90 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमें उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहार के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इसे भूमि पत्तनों के बीच एकीकृत प्रणाली कायम करने के लिए बनाया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह प्रणाली आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट

0: बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबिर अल सबा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की जरूरत पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार ये सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिनों के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है। ये कमी सोने पर आयात शुल्क में बढ़ोतरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कम से कम एक वर्ष तक सोना न खरीदने की अपील का परिणाम है। रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी, जिससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए थे। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 7:05 हुए हैं और यह समय होता है कार्यक्रम विवरण का। श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण के साथ हाजिर हूं मैं आपका रेडियो साथी ऋषभ आहूजा। अब से कुछ ही देर में यानी 7:21 पर सुनिए ग्रामीण श्रोताओं के लिए दैनिक कार्यक्रम ग्राम सभा। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे समेकित कृषि प्रबंधन में पर्यावरण संरक्षण विषय पर डॉक्टर सतीश कुमार परसाई की भेंटवार्ता। रात्रि 8 सुनिए समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष आर्थिक विकास। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए 8:35 और रात्रि 10:00। उर्दू कार्यक्रम कहकशां का प्रसारण 9:30 पर किया जाएगा और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आज सुनेंगे आप संगीता गोस्वामी का ख्याल गायन, राग होगा मारू बेहाग। इसका प्रसारण रात्रि 10:30 पर किया जाएगा। ये थे इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। अब एक नजर कल यानी बुधवार 10 जून 2026 को प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। सुबह की खूबसूरत शुरुआत होगी हमारे दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल के साथ 7:20 पर। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा का आनंद आप लेंगे सुबह 8:30 पर। सुगम संगीत के अंतर्गत 9:15 पर आप सुनेंगे राजेश खरे द्वारा गाए गीत और भजन। 9:30 पर सुनिए प्रदेश की सुर्खियों में। सुबह 10:05 पर सुनिए कार्यक्रम महिला संसार और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में आप सुनेंगे ऋत्विक सान्याल का ध्रुपद गायन, राग होगा गंगे या भूषण सुबह 10:30 पर। श्रोताओं, इन सभी कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी भोपाल के अंतर्गत किया जाएगा। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुनिए फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने सुबह 11:00। कार्यक्रम आपकी फरमाइश का प्रसारण दोपहर 12:00 और दोपहर 2:30 पर किया जाएगा। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक जंग लगी तलवार का 8वां भाग आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1:00 सुनिए कार्यक्रम महिला सभा, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर के योगदान से प्रसारित किए जाएंगे। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए दोपहर 2:00, शाम 5:33, 6:30 और रात्रि 8:35 पर। शाम 6:00 सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति के अंतर्गत। ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण शाम 7:21 पर किया जाएगा। इसके अंतर्गत कल आप सुनेंगे खरीफ फसल हेतु मिट्टी की तैयारी में सावधानियां विषय पर डॉक्टर अमर बहादुर सिंह की भेंटवार्ता। रात्रि 8:00 सुनिए समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष इंफ्रास्ट्रक्चर। कार्यक्रम चर्चा का विषय है का प्रसारण रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे रेडियो नाटक तुम सही हो गार्गी। इसके लेखक हैं विमलकांत येंदे और प्रस्तुति राकेश ढूंढियाल की होगी। और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आप सुनेंगे सरवर हुसैन का सारंगी वादन, राग होगा पूरिया कल्याण 10:30 पर। श्रोताओं, ये थे कल यानी 10 जून 2026 बुधवार को प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के अमीर से फोन पर बात की, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर जताई चिंता। केंद्र सरकार ने मनरेगा की जगह नई योजना के लिए राज्यों को 95,692 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक, भोपाल मेट्रो समेत कई बड़े फैसलों को मंजूरी। और इंदौर में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का पहला दिन 21 देशों के प्रतिनिधियों ने साझा घोषणा पत्र के मसौदे पर की चर्चा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता जताई और कुवैत की संप्रभुता पर हमलों की कड़ी निंदा दोहराई। उन्होंने शांति बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति की जरूरत पर जोर दिया और कुवैत में रह रहे भारतीय समुदाय की सुरक्षा के प्रति अमीर के व्यक्तिगत ध्यान के लिए भी आभार व्यक्त किया। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपये के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ये मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण में सुचारू परिवर्तन के लिए है। ये नया कानून अगले महीने की पहली तारीख से पूरे देश में लागू होगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि पिछले साल की तुलना में बजट में 40% की बढ़ोतरी की गई है और किसी भी राज्य के आवंटन में कटौती नहीं की गई है।
1: किसी भी राज्य का मैं एक बताना चाहता हूँ, ये आशंकाएं कई बार लोग व्यक्त करते थे, इसका कम हो जाएगा उसका कम हो जाएगा, किसी का कम नहीं हुआ है। ये जो हमने दिया है 60% ही, पिछले साल मनरेगा का जो एलोकेशन था लगभग उतना तो 60% ही दिया है, मतलब 40% ये बढ़ेगा पिछले साल से, तो किसी राज्य को कमी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।
0: इंदौर में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आज पहला दिन रहा। ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया, ईरान, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात समेत कुल 21 देशों के कृषि मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों ने इसमें शिरकत की। आज दिनभर कई दौर की बैठकें हुई जिनमें प्रतिनिधियों ने साझा घोषणा पत्र के मसौदे पर गहन विचार विमर्श किया। ये सम्मेलन 13 जून तक चलेगा जिसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती और छोटे किसानों को मजबूत बनाने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक हुई जिसमें करीब 13,800 करोड़ रुपए की स्वीकृति के साथ कई बड़े फैसले लिए गए। भोपाल मेट्रो रेल परियोजना की संशोधित लागत के लिए 13,565 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी गई। प्रदेश सरकार में सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्री चैतन्य कश्यप ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।
2: विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा विभिन्न योजना संसेवाओं के लिए 235 करोड़ की योजना के निरंतरता की स्वीकृति दी गई है। एक महत्वपूर्ण निर्णय किसान कल्याण वर्ष में लिया गया है, किसानों के लिए जो कपास में मंडी शुल्क लगता है वह मंडी शुल्क अभी 1 रुपया प्रति 100 रुपए के ऊपर या 1% लगता है। अभी निर्णय करा है कि हम हमारे यहाँ पर मंडी शुल्क उसका 0.5% करेंगे। 0.5% मंडी शुल्क होने से मध्य प्रदेश के किसानों का जो कपास है वह मध्य प्रदेश की ही जिन फैक्ट्रियों के अंदर प्रोसेस होगा।
0: मंत्री श्री कश्यप ने जानकारी दी कि मंडी शुल्क से मिलने वाली 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय किसान सड़क निधि और कृषि अनुसंधान में लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उन्हें बधाई दी है। डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को हमेशा प्रधान सेवक माना है और गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के जीवन में नया बदलाव लाए हैं। उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों में देश में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं और आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं ने करोड़ों परिवारों की जिंदगी को बेहतर बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया,
4: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का, इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेगी।
3: वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया,
5: यहाँ पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है, मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रह रहा हूँ।
3: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए देश भर में अब तक कुल 942 आयुष

0: संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा कर इस महीने की 21 तारीख को होने वाली नीट परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर परीक्षा केंद्रों तक सामग्री पहुंचाने तक पूरी गोपनीयता बरती जा रही है। नीट पेपर लीक मामले में श्री प्रधान ने कहा कि सीबीआई जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे होने पर आज प्रदेश के सभी जिलों में विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवती महिलाओं को मुफ्त जांच, दवाएं और विशेषज्ञ परामर्श मिलेगा। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सभी गर्भवती महिलाओं और उनके परिजनों से इन शिविरों का लाभ उठाने की अपील की है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत प्रदेश में अब तक 10 लाख से ज्यादा पथ विक्रेताओं को लाभ मिल चुका है। योजना की पहुंच और बढ़ाने के लिए पहली जून से पूरे प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जा रहा है जो 30 जून तक चलेगा, जिसके तहत पथ विक्रेताओं को बिना गारंटी के 15,000 रुपये तक का आसान कर्ज और डिजिटल लेन देन की सुविधा दी जाएगी। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में आज भीषण गर्मी का दौर जारी रहा। मौसम विभाग ने 10 और 11 जून को भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। वहीं दूसरी तरफ मानसून के 15 से 18 जून के बीच प्रदेश में प्रवेश करने का अनुमान है। अब रुख करते हैं क्रिकेट की खबर का। ट्राई सीरीज के पहले वनडे में इंडिया ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। डांबुला में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए, जिसके जवाब में श्रीलंका ए की टीम 48.5 ओवर में 269 रन पर ही ऑल आउट हो गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर नगर निगम के अग्निशमन विभाग ने शहर के करीब 325 स्कूलों, अस्पतालों, कोचिंग संस्थानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को फायर एनओसी जमा करने के नोटिस जारी किए हैं। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति के प्रभावी क्रियान्वयन में शहडोल जिला पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। श्रम विभाग और आयुष विभाग द्वारा आज धार औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए एक दिवसीय योग शिविर एवं स्वास्थ्य जागरूक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शाहजहांपुर में मलेरिया की रोकथाम के लिए जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कटनी में बारिश में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम के द्वारा नालियों की सफाई एवं गहरीकरण का कार्य कराया जा रहा है। राजगढ़ में आज से 16 जून तक विभिन्न जनपद पंचायत मुख्यालयों और आईटीआई में रोजगार शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। छिंदवाड़ा में मृगनैनी मध्य प्रदेश प्रदर्शनी 2026 में बुनकरों और हस्तशिल्पियों के लिए एक विशेष चौपाल कार्यशाला का आयोजन किया गया। खंडवा के सभी विकासखंड एवं नगरीय निकाय मुख्यालयों पर 12 से 14 जून तक 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिवपुरी कलेक्टर अर्पित वर्मा ने आज शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित ईवीएम वेयरहाउस का औचक निरीक्षण किया। झाबुआ कलेक्टर ने आज नगर परिषद मेघनगर के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण कर जल गुणवत्ता की जानकारी ली और मंदसौर के गरोट तहसील के ग्राम कुलारसी में करीब 5 करोड़ रुपए की 6.16 हेक्टेयर सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इसके साथ ही गुना में 15 जून से 19 जून तक ब्लॉक स्तर पर सुरक्षा गार्ड और सुपरवाइजर भर्ती के शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

चौपाल कार्यक्रम केर सबै सुनैया किसान भाईकरण का हमार लखन भाई केर राम राम। सुनैयाओ, इस समय जैसे थोड़ का आंधी चलत थी तो मने ही दौड़ते बगीचा का जात है कि कहो साह न गिरी हो। मने ही का अपने आमा अजामुन की बड़ी चिंता हो थी, काहे कि वह अपन जौन होता का स्वाद ही अलग होत है, अजय वो अपन होते हुआ अपना ही होते। देखिए एंठियामा जामुन के रित है, हालांकि अब एक आध दमगरा मारी तब जामुन पकी जामुन में मिठास आई, पर आमा धीरे धीरे अब पकई कई था। भाई करो एक पहले हम पंचे आमा कटराई के उका अचार बनाए के मनी साल भर तक का रक्का के मनी स्वाद लेत है। यही से मार बहनी हरे मिर्चा मसाला इकट्ठा करय माही जतन माही लगी हैं। सुनइयो, आमा के रे जो फांकी होती अचार होत है उस अलगे भोजन माही अपन अलगे मजा देत है। मान ले दार भात के साथ उ सालन नहीं मिला और मेर से कोनो सब्जी के व्यवस्था नहीं भय, तो अगर अचारो भर है तो वह अपन काम कह देत है। सुनइयो, इतने जूना मनई बहरे सुलई के भीतरे धरे सैथा माही लगा है, ऐसे कि अब दो चार दस दिन बाद कहो न कहो दमगरा गिरे की संभावना है, और समय से पहले जो मैंने अपन काम कई लेत है तो वह बुद्धिजीवी कहावत है आन का मन ही होशियार माना थे, और पता चला कि अगर दमगरा बरसे लाग के बाद मन के हाप तमाम हापत हो जाती। सुनइयो, साथी इतनी जूना हम पंछी अपने जो छानी छप्पर अपन मड़ई ही अपन जो घर है ओहू को मनई ताय तोप के ही निकाह बना लेते, पानी निकरे की व्यवस्था बना लेते, और खपड़ा खपड़ा मैार अगर टूट हैं तो उन्हों का मनई ऐसा व्यवस्था बना लेते जब ने भादव माँ अपन खोपा न टूटे। सुनइयो, देखी कहा है कि धीरे धीरे अपन जो मन व्यवस्था बनाए रहा है वह आगे चल के हमका पाचन का ही नुकसान नहीं देता है। अब होत का है महू पाचन का ही, और मान ले जिनके घर में छानी छप्पर के काम नहीं आए लेकिन पानी निकरे के व्यवस्था मनई अपन जो नर्दा है नाली है एक बनाए रखी, ऐसे कि बरसाते के समय जब नाली नर्दा जाम हुई तो बड़ा नुकसान होता है। सहरा नगर माही अगर अपना के घरे के समय से नाली है तो ओकर अन्नी पन्नी प्लास्टिक बोरी सोरी जो उन परी रहती हैं डब्बा सब्बा प्लास्टिक के घुस जा था तो ओका ऐसे निकासी की व्यवस्था मने अपने घरे के समय तो बना ही सकत है, मने ताके रहते कि शासन करी या कि ऐसा करी ठीक है शासन के अपन व्यवस्था है लेकिन हमारे घर एक समूह है तो फेंके तो हम ही हो को अंत आएगे कोई व्यक्ति तो फेंक न गा हुई या कि पन्नी सन्नी पन्नी आपका नुकसान है तो हम ही का हुई तो कहे ना मनई अगर आधा एक घंटा श्रम कही के अया मनई अपन व्यवस्था बना सकत है। देखी जब मनई होत का है कि सब मेयर से छोट छोट व्यवस्था कर लेते हैं तो ज़्यादा नहीं चेता न रहते है, और यह देश ऐसे छोट छोट व्यवस्था से बड़ा बना थे या गावन माही गांव से लेके हर किसान मनई अपन खेती किसानी से लेके और हर मेयर की व्यवस्था बनावा थे तब देश माही बरकत होती। सुनइयो, किसान मनाई अपने लड़कन का तैयार करके देश के नेता जवान घला बनाए के देते हैं जैसे देश की सुरक्षा चौकीदारी होती। देश की सुरक्षा बने से देखिए जब मनई बहरे से मजबूत रहता है तब भीतर मजबूत होत है, और अगर बहरेन बारी टूटी है अपन तो दिन भर मवेशी घुसाई के और असुरक्षा घुसाई के अव्यवस्था घुसाई के मनई का डर रहा थे, इसे मनई सबसे पहले अपन बारी का मजबूत करत है। अय बारी का मजबूत करे की नीता न जाने देश के कतेकौ अमर बहादुर सैनिक महापुरुष अपन अपन कंधा दीनहीन अपन अपन प्राण दीनहीन अपन अपन करेजा सौंपिन। सुनइयो, जिसे जितना जहाँ से बना मन से बुद्धि से शरीर से लाठी डंडा माने जैसे जैसन बना
वह ये देश का बनाबे कि निता बचाबे कि निता बढ़ाबे कि निता अपन योगदान दिन हिन। अगर हम पंचे योगदान की बात करी तो एमा सबके कहा थे कि सबके खून शामिल है, लेकिन कुछ ऐसा है जे ये संघर्ष का ही उसासी दिन हिन, ये जो उन संघर्ष का या आंदोलन का जो बढ़ाइन या आंदोलन के अगुआ भी उनका मन ही हमेशा अग्रपंक्ति के व्यक्ति का ही स्मरण करत है, उनका याद करत है। तो तमाम मेर से महापुरुष रहे, लेकिन बिरसा मुंडा जी के जो संघर्ष रहा, उनका जो त्याग रहा, उनका जो लड़ाई रही, वह अलग तरीके के नेता जानी जाती। बिरसा मुंडा आदिवासी समुदाय के शोषण से मुक्ति और उनके अधिकारण के रक्षा के नेता मुंडा विद्रोह उल गुलान शुरू करीन अवी भूमि अधिकारण के रक्षा के नेता शोषण से मुक्ति सांस्कृतिक धार्मिक पहचान स्वराज के स्थापना जैसन विषयन कले की बड़ी लंबी लड़ाई लड़िन। अबुआ राज ते जाना महारानी राज टूट जाना माने रानी का शासन समाप्त कह के और आपन शासन स्थापित होय केर करे केर नारा दिनहिन। लोक नायक बिरसा मुंडा जिनका एक विशेष वर्ग उनका भगवान बिरसा मुंडा कहा है, एक भारतीय सेनानी जनजाति समाज का ही आगे बढ़ावे माँ, उनका जगावे माँ, उनका देश के प्रति सही राह दिखावे माँ बिरसा मुंडा जी के बड़ा योगदान माना जाता है। सुनइयो बिरसा मुंडा जी के जो जन्म है वो 15 नवंबर 1875 का ही भरा है और झारखंड के एक क्षेत्र है छोटा नागपुर, वो समय तमाम अंग्रेजन की विरासत के कारण ओकर जो भौगोलिक क्षेत्र है वह कई एक मेर के बटा रहा है। वहीं जो उन समय के बहुत मेर के झंझावात रहे हैं, कुरीति रही हैं, उनका दूर करे के नेता बिरसाई संप्रदाय का ही माँ प्रकृति पूजा और इनमें सामाजिक एकता का बढ़ावे माँ ही उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। कुरीतिन के विरोध करे माँ ही नशा जिसन शराब जो है ओका दूर करे के नेता तमाम मेर के प्रयास बिरसा मुंडा जी के प्रयासन में गिने जाते। साथ ही बिरसा मुंडा जी देश की आज़ादी के नेता कईक मेर के विद्रोह की नहीं कईक मेर के लड़ाई लड़ीन, उनके जो उन साहस का हम बच्चे नमन करी थे, उनके जो उन ये विद्रोही भावना रही है उनका हम बच्चे नमन करी थे। आज के रोज बिरसा मुंडा जी जरा माटी में ही अपने आप का ही समाय दिन उनके शहादत का हम बच्चे नमन करी थे। ऐसन जननायक देश में ही कबो कबो हो थे जो उनकी उनका योगदान हमारे सल देश के नेता जाना जाता है।

मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुकी भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा, इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव #वंदेमातरम150 के साथ जरूर भेजिए। #वंदेमातरम150, मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242।
1: हाँ।
0: लो अभी फोन लगाता हूँ, 8700014242।

0: 4242 पर।
1: किसान भाई करो आज इसे अब कि पहले मैंने बिरसा मुंडा जी के मैंने चर्चा करत रहा है, आज उनका शहादत दिवस है, आई विशेष और उनके विषय में मैंने जन बही ले उनके जब उनकर अपन आंदोलन रहा जन उनकर अपन तमाम धार्मिक और आर्थिक स्वतंत्रता के नेता जल जंगल जमीन के खातिर बचावें खातिर जो उन तमाम नेतृत्व की नहीं उकर अपन जो और जन बही ले थे राम भक्त पांडे जी से।
2: यह एक जन कभी कही नहीं कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जब हमारा देश गुलामी के जंजीरन में जकड़ा रहा वह समय भारत माता बहुत वीरन का जन्म दिहिन जैसे लक्ष्मीबाई मंगल पांडे तत्या टोपे बिरसा मुंडा जब स्वतंत्रता संग्राम के चिंगारी पूरे देश में सुलगत रही वह आगे चल के 1857 में ज्वाला बन के प्रकट भय। अपने देश में जनजातियों के लोग या बात से दूर नहीं रहे अंग्रेजी शासन के प्रति उन्हों के मन में घृणा के भावना पनपे लाग रही या बात में लेके जोरदार स्वर दे वाले रहे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के बाप के नाम रहा सुगना मुंडा और उनकर महतारी आही कर्मी हाथू। इन्हीं के घर में बिरसा मुंडा केर जन्म 15 नवंबर 1857 का झारखंड प्रदेश मा रांची के अली हाथू गांव मा भार है। इनकर शुरुआत केर पढ़ाई सालगा गांव मा और बाद केर पढ़ाई चैबासा इंग्लिश मीडियम स्कूल मा भा। इनकर मन हमेशा समाज की बुरी दुर्दशा जौन अंग्रेजन द्वारा कीन जात रही ओ पर हमेशा सोचत रहत रहे। विदेशी हुकूमत भारत से समाप्त करे के खातिर बिरसा मुंडा अपने अगुवाई में उराव मुंडा और खड़िया जनजातियन का इकट्ठा करके सहयोग मागिन कि अपने देश का ई फिरंगियन से मुक्त करे खातिर हमका पंचन का साहूत बांध के काम करे चाहिए। जैसन कि इनके संबंध में बहुत बात मलुमव है कि ई बहुत गरीब परिवार के रहे। ई अपने घर में माता पिता के साथ सभी काम में हाथ बटावत रहे। खेती बारी गाय गोरु चरावे के काम ई बड़े रुच के साथ करत रहे। गरीबी के कारण इनकर पिता इनके मामा के घर पढ़े का भेजिन रहा। वहाँ इनकर बहुत रुच पढ़े माँ नहीं लाग बल्कि वहाँ रह के बंसी बजावे सीखिन। संगीत माँ इनकर रुचि बहुते बढ़ी गए। सब काम छोड़ के बंसी बजावे माँ सुध बुध भूल जात रहे। यही कारण ई डांट जात रहे। यह सब कारण से अपने गाँव लौट आए। तब इनकर पिताजी इंग्लिश मिडिल स्कूल में नाम लिखाइन। मिशनरी स्कूल में पढ़त समय इनका गुलामी के पक्का एहसास हुआ। तबे मुंडा जनन के ऊपर अन्याय शोषण और पीड़ादायी दृश्यन का दिखिन। तबे से बिरसा के मनमा अंग्रेजन के कारनामन पर टीका टिप्पणी करे लागे। विद्यालय के शिक्षक बिरसा का यह आचरण का बंद करे चाहिन। बहुते दबाव डालिन कि फिरंगियन के निंदा कर बंद कर दे। पयू अपने विचार में दृढ़ता से जमे रहें। यही कारण इनका विद्यालय से निकाल दीन। इनकर पढ़ाई बंद हो गए। पढ़ाई बंद भई के बाद इनके जीवन में दिशा दशा सब बदल गए। उन्हों दिनन माँ 1894 मानसून के छोटा नागपुर ना आवे से भयंकर अकाल पड़ा और महामारी फैली। तब बिरसा पूरे मनोयोग से समाज सेवा में जुट गए। एक बाद वो तमाम गाँव गाँव जाए के जड़ी बूटीन के द्वारा बीमार लोगन के उपचार कहीन। यह काम से उनकर ख्याति फैल गए। यह काम के साथ साथ उन अंग्रेजन के कारनामा का अपने जनजात भाईन का समझावत बतावत रहे। कुछ दिन के बाद जनजातीय लोग अवतारी पुरुष कहे लागे रहे। काहे कि बिरसा लोगन का बताइन कि हमका भगवान सिंह बोंगा यह प्रेरणाधीन है कि हम मुंडाओं को अंग्रेजन के अत्याचार से स्वतंत्र कराओ। अब मुंडा लोग कंपनी सरकार के आदेश का ना माने कोहू के बेगार ना करें। धीरे धीरे बिरसा के प्रति लोगन के श्रद्धा बढ़े लाग और जनजातीय समाज उनकर अवतारी पुरुष माने लाग। बिरसा के पास दूर दूर के गांव के मनई आवे लागे। ऊ दिनमन आदिवासिन के आर्थिक हालत बहुते

0: खराब रही। गामन मा जौन पुरान परंपरा रही ओका अंग्रेज सब नष्ट कर दीन। उनके ऊपर जमींदार, जंगल के ठेकेदार और दलाल लाद दीन। वनवासी अपने जमीन पर मालिक से नौकर बन गए या दमन के कारण भूखन मरे लागे, पूरी तरह से असहाय हो गए। यह स्थिति मा बिरसा मुंडा 1 अक्टूबर 1894 मा नौजवान नेता के रूप में उभरे और सब मुंडन का इकट्ठा करके अंग्रेजन से लगान माफी के खातिर आंदोलन चलवाइन। तब 1895 मा इनका गिरफ्तार करके कंपनी सरकार 2 साल के कारावास के सजा दी से जौने का ही हजारीबाग केंद्रीय कारागार में काटिन। सजा पूरी होने के बाद बिरसा का अंग्रेज सरकार मुक्त कर दीस और यह चेतावनी दीस के पूरी शांति के साथ जीवन यापन करा। लेकिन कुछ दिनन के बाद बिरसा अंग्रेजन के विरुद्ध शंखनाद कीन। ऊ अपने क्षेत्र के अकाल पीड़ित जनता के सहायता करे का ठान लीन और अपने सूझबूझ से वैचारिक और सामाजिक क्रांति मचाइन दीन। जन जनमा यह भावना भर दीन कि अब भारत से फिरंगियन का भगाई दे चाहिए। ई सब कामन से बिरसा अपने जीवन काले मा एक महापुरुष के दर्जा पाइन। इनका उवा इलाके के लोग धरती बाबा के नाम से पुकारे लागे और इनकर पूजा करे लागे। यह प्रभाव के बढ़ते से पूरे इलाका से मुंडा संगठित हो गए। जौने के परिणाम यह भा कि 1857 से 1900 के बीच मुंडा और अंग्रेज सिपाहियन के बीच कई बार युद्ध भे। बिरसा अंग्रेजन के नाक मा दम कई दीन। अगस्त 1897 मा बिरसा और उनके 400 सिपाहियन तीर कमान से लैस होइ के खूंटी थाना मा धावा बोल दीन। 1898 मा तांगा नदी के किनारे मुंडव केर भिड़ंत अंग्रेजी सेना से जौने मा पहले ता अंग्रेज सेना हार गए, लेकिन बाद मा एके बदले औ इलाका के बहुत आदिवासी नेतन के गिरफ्तारियां भई। जनवरी 1900 मा डोमवाड़ी पहाड़ी पर एक और बड़ा संघर्ष हुआ, जौने मा बहुत मेहरिया और छोट छोट बच्चा मारे गए। हुआ बिरसा अपने सभा का संबोधन किहिन रहे। बाद मा बिरसा के कुछ और शिष्यन के गिरफ्तारी भय रही। अंतमा स्वयं बिरसा 3 फरवरी 1900 का चक्रधरपुर मा गिरफ्तार भे रहे। बिरसा का गिरफ्तार करके अंग्रेजी पुलिस डिप्टी कमिश्नर का सौंप दी से या गिरफ्तारी से जन्मभूमि का स्वतंत्र करावे केर बिरसा केर लक्ष्य अधूरा रहेगा। काहे कि बंदी भय के बाद बिरसा जेल मा बीमार रह लागे। धीरे धीरे जेल मा उनका स्वास्थ्य गिरते चलागा। मुकदमा के सुनवाई के दिन जब उनका अदालत मा पेश कीनगा तब उनका स्थिति बहुत बिगड़ गई रही। उनका खून केर उल्टी हो लाग रही। यह सब अंग्रेजन के क्रूरता और बर्बरता के कारण भा। यह सब होत करत आखिरकार बिरसा अपन अंतिम सांस 9 जून 1900 का रांची कारागार मा लीन। बिरसा के जन्मभूमि के स्वतंत्र करावे के लक्ष्य अधूरा रहेगा। पर समाज मा जौन स्वाधीनता के चेतना के ज्योति जलाए गए वह निरंतर जलते रह गए। यह प्रकार से मुंडा समाज के महान प्रदर्शक और बलिदानी बिरसा के डर अंग्रेज सरकार का उनके मरेव के बाद रही। यही से अंग्रेज सरकार उनका दाह संस्कार सार्वजनिक रूप से नहीं करे दी से। बिरसा मुंडा आज या संसार मा नहीं आही, पर मुंडे समाज भर नहीं पूरा देश उनकर नाम बड़े स्वाभिमान के साथ लेत है और लेते रही। बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकन मा बिरसा केर पूजा अजगो भगवान के नाई होती है। जब तक यह धरती मा आदमी रही तब तक बिरसा अमरे रही है।
1: सुनैया वावे हम पंचे बिरसा मुंडा जी के कई एक प्रसंग का मनाई सुनीस जेमा उनकर आंदोलन उनकर जौन मेर से अपने विदेशी सत्ता के विरोध के नेता खड़े भी समाज के लोगन का जगाइन, शिक्षा के प्रति सचेत किन्हीं और वहाँ जौन मेर से अनैतिक काम चलत रहे हैं। वहाँ मेर से एक मेर से तो विदेशी सभ्यता थोपी जात रही ओकर वो विरोध किन्हीं और यह हमका पाचन का जन्म ही देते रहे हैं राम भक्त पांडे।

सुनैया बाबा हम पंचैया सुनत रहने जनजाति गीत। सुनैया बहुत मेर के हमार पाचन की जो बोली भाखा है और मेर से जो लोक संगीत है जनजाति गीत हैं बहुत मेर के संदेश दे थे और जन भई दे थे। साथ है यह कहा कि बल्कि गीतन में ही कहना कहो एक बड़ा भाव है और जल जंगल जमीन के प्रति प्रकृति के प्रति जो अपन जुड़ाव है संवेदना है वो लोग गीतन के माध्यम से बाहर आवत थी। साथ है आज हम बच्चे देखे थे कि जो उन खोज वैज्ञानिक मैंने करा था वो कहाँ न कहाँ बहुत पहले से गीत इन लोग गीतन में हमका पाचन कहीं मिला थे। हर मेर के जो मनई के प्राणीन से कौन मेर से एक भाव है एक संबंध है। साथ है पशु पक्षी के पौधन से कौन मेर से संबंध है पशु पक्षी से साथ मनई के पौधन से कौन मेर से संबंध है चाहे वो सामाजिक रूप से हो चाहे वह आर्थिक रूप से हो चाहे वह सांस्कृतिक रूप से हो कहो न कहो या जो प्रकृति के समन्वय है यह एक दूसरे के माध्यम से होत है और एक दूसरे के माध्यम से एक दूसरे के जीवन यापन होत है। ऐसा तमाम हमका पाचन का ही किताबन में पढ़ाई के मिलत है इस वनस्पति शास्त्र विषय में पढ़ाई के मिलत है जैसे कि मने प्रकृति के जो अंग है उनके बीच की जो समन्वय है वह एक दूसरे का जैव रासायनिक चक्र के माध्यम से संतुलित करत है। यही में से बहुत ऐसा व्यवस्था ही आदिवासी जनजाति विभाग में ही जो उनकी आदिवासी जो अपन भाई हैं उनके उन्नयन उनके विकास में ही अपन योगदान देती हैं। जैसा कहावे बहन कि मनई का होत है कि जो उन व्यक्ति मान ले कोनो कारण से ही कमजोर है या कही कि मुख्य धारा में नहीं जुड़ पावा या कही कि व्यवस्था उतनी नहीं आए ऐसे व्यक्ति के सबसे पहले ऐसा सुविधा दी जाए व्यवस्था दी जाए को कर उन्नयन हो सके कर विकास हो सके और फसल के देश के हर व्यक्ति का हर मेर के जब व्यवस्था मिली तब ये देश की उन्नति और प्रगति का है। सुनैया भारत सरकार और राज्य सरकार अपने स्तर से हर वर्ग का मजबूत करे के तमाम ऐसा योजना बनौती हैं हई जो उनकी प्रगति में उत्थान में बड़ा सहयोग दे रही हैं और उनका जो परिणाम है उनका जो असर है वो हमका पाचन का दिखा रहा है। भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय कैद से आदिवासी भाइन के विशेष केंद्रीय सहायता और अनुदान दीन जात है। इस सब सहायतन के मूल बात यह है कि परिवार भरण पोषण के निता कृषि बागवानी लघु सिंचाई मृदा संरक्षण पशुपालन वन शिक्षा सहकारिता और मत्स्य पालन संबंधी कार्यक्रमों में सीधे तौर पर जोड़ा जाए और जैसन अनुसूचित जनजाति के लड़कन का ही मैंने बिटियन का ही पढ़ाई लिखाई के निता छात्रावास की व्यवस्था भाई का होता है सुदूर हुए के कारण दूर हो के कारण कहो न कहो पढ़ाई से दूर हो जावा करा था तो जहाँ वो मैंने पढ़ाई कह रहे हैं नगर क्षेत्र में ही या जिला स्तर में ही तो हुआ उनके रहाई के व्यवस्था हुआ छात्रावासन की व्यवस्था ऐसा रहा थी पढ़ाई के खातिर हर मेर के जो अध्ययन सामग्री है वह महाविद्यालय की तरफ से या जो उन संस्थान में पढ़ाई कर रहे हैं हुआ से उपलब्ध कराई जाती चाहे वो पेन हो चाहे वो कॉपी हो चाहे किताब हो वह मेर से ऐसा सामग्री उपलब्ध कराई जो उनका आर्थिक रूप से कौन मेर से परेशानी न हो पर लोग ऐसा जन वही है कि जो लड़का छात्रावास में नहीं रहता ही या कोनो कारण से छात्रावास में व्यवस्था नहीं बन पाई तो उनका अगर कहो अंते रहा थे तो उनका किराया भत्ता सरकार के तरफ से दिन जात है। यही मेर से व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में ही प्रवेश के निता उनका विशेष व्यवस्था रहा थी कोचिंग संस्थान जिसन मान ली जनो मेर से व्यावसायिक पढ़ाई करे का है या कनो प्रतियोगिता में शामिल होए का है वो आर्थिक रूप से कमजोर हाँ तो उनका शासन की तरफ से कोचिंग व्यवस्था दीन जाती और जो कोचिंग व्यवस्था में जहाँ भोजन पानी की व्यवस्था आवासीय व्यवस्था रहा थी माने उनका बहुत दूरी कहाँ जाए पड़ी हुआ कोचिंग की व्यवस्था हो जाए हुआ प्रशिक्षक आ जाता हुआ भोजन की व्यवस्था तमाम मेर से
की जाती। ऐसे मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति हुई के आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना के नेता महिलन के उन्नयन के नेता कई मेर से अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाती या कि लोन की व्यवस्था कराई जाती बहुत कम ऋण माही, जैसे कि अपन उद्यम खुद शुरू कर सके और अपन परिवार के भरण पोषण कर सके। इन मेर से बहुत ऐसी व्यवस्था ही जो जंगल से डायरेक्ट मानी उनके अपन उन्मूलन के खातिर उनके विकास के खातिर उनका जो श्रम है श्रम के भुगतान कीन जात है। यही में धरती आबा जनजाति ग्रामीण उत्कर्ष है, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय है जो कि जनजाति भाइन के विशेष लड़कन के पढ़ाई के खातिर उनके नज़दीक क्षेत्र में ही ऐसा व्यवस्था की जाती जिनमें से अच्छे प्रशिक्षित शिक्षकन के द्वारा शिक्षा दीन जाती। ऐसे राष्ट्रीय विशेष छात्रवृत्ति योजना, आदिवासी शिक्षा ऋण योजना और आजीविका रोजगार में जिसने आदिवासी महिला सशक्तिकरण की व्यवस्था रही है, तो इसे हर वर्ग की नीता कुछ न कुछ ऐसा व्यवस्था बनाई जाती कि जिससे कि उन्नत और विकास हो सके। यही में से वंधन विकास योजना, अंत्योदय एवं आदिवासी स्वरोजगार योजना, साथ है स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही स्वास्थ्य पोर्टल में स्किल सेल, एनीमिया उन्मूलन मिशन, ऐसे मेर के जो भारत सरकार की तरफ से योजना बनाई जाती है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, वह ऐसे कि जो मेर से गंभीर बीमारी है ही उनका उनके क्षेत्र में ही स्वास्थ्य के जो कैंप लगा था गंभीर बीमारी के प्रति जागरूकता के अभियान के नेता हुआ शिविर लगाए जाते तो आदिवासी भाई इनके जिन्हें योजना के लाभ मिल सके। सुनाइए अपना पाचे आज के कार्यक्रम के आनंद लीन हैं और ये कार्यक्रम का आनंद लेत रही। ये कार्यक्रम माँ अपना के जो मानसिक उपस्थिति है वो हमका पाचन का और उसासी दे थी। हम अपना पाचे हमारे कार्यक्रम के ही आकाशवाणी रीवा feedback@gmail.com माँ अपना पाचे अपन संदेश हमका पाचन के भेजी तो हमका पाचन का और अच्छा लागी। अब देखिए हो लागी चला केर जूना तो हम अपना पाचन से चाहब आ गया चौपाल कार्यक्रम के सब सुनैयन का हमारा लखन भाई केर जथा जोग राम राम जय जवान जय किसान।

0: सूचना और प्रसारण, रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेष साक्षात्कार कर रहे हैं पत्रकार शिशिर सिन्हा।
1: नमस्कार। 26 मई 2014 नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ सत्ता संभाली। तब से लेकर 12 वर्ष बीत चुके हैं और इन 12 वर्षों में देश की जनता ने दो बार और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। इस दौरान हमने कई परिस्थितियां बहुत ही कठिन देखी। कोविड का दौर था, फिर हमारा रूस और यूक्रेन की लड़ाई का भी असर देखने को मिला और उसके बाद अब पश्चिम एशिया का संकट। लेकिन इन सब के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था 7% या उससे ज्यादा की दर से विकास करती रही। कैसे संभव हुआ? क्या कुछ रही कहानी? आगे क्या कुछ हो सकता है? इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रेलवे, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्कार
1: सर। 12 वर्षों में आर्थिक जो परिस्थितियां रही, कई चुनौतियां भी थी, कई कठिनाइयां भी थी, लेकिन 7% या उससे ज्यादा की विकास दर को हम हासिल कर पाए। किस तरह से नीतियों ने इसमें मदद की?
2: इन 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ही एक मैच्योर तरीके से हैंडल किया है। हम अगर आज से 12 वर्ष पहले 2014 में जाएं, 2014 में हमारा पूरा फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर ऐसी अजब परिस्थिति में था कि सारी दुनिया में चिंता थी कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 में गिनी जाने लगी थी। बैंक्स के NPS बहुत हाई थे, बैंकों की बैलेंस शीट्स एकदम प्रैक्टिकली फिनिश होने के कगार पे थी, कौन सा बैंक कब इम्प्लोड हो जाएगा, ऐसी परिस्थितियां थी। आते ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले बैंक्स को बहुत सिस्टमेटिक वे में उनके NPS कम करने का प्रोसेस चालू किया, कम से कम करीब 2,50,000 करोड़ के आसपास रिकैपिटलाइज किया बैंक्स की बैलेंस शीट्स को। बैंक्स को प्रॉपर एक हेल्दी कंडीशन में लेके आए, जो आज आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्रॉफिट हाईएस्ट लेवल पे है, NPS लोएस्ट लेवल पे है। उसके बाद में एक इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस चालू किया, फिर आया कोविड। कोविड का शॉक था, बहुत बड़ा शॉक था, सारी दुनिया ने झेला।

0: भारत ने उस शॉक के दौरान भी प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण एक इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल स्टार्ट किया। उस इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल के कारण जो पहले करीब करीब 30 बिलियन डॉलर के आसपास इन्वेस्टमेंट होता था, आज 130 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है देश में। इन्वेस्टमेंट जाता है फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रा में, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाई देता है। आज हम देखें, चाहे कोई भी सेक्टर हम लें, एयरपोर्ट्स, नंबर ऑफ द एयरपोर्ट्स डबल हो गए, हाईवेज 58,000 किलोमीटर्स बने, नई रेलवे ट्रैक्स 36,000 किलोमीटर्स बनी, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 99% कंप्लीट हुआ। कंपेयर करें यूके से तो मेरे ख्याल से लेस देन 50% है। कई दूसरे देशों के कंपैरिजन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई। उसका देश में एक प्रभाव पड़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, लोगों की सुविधाएं बढ़ी, इंडस्ट्रीज को और ज्यादा ग्रो करने में मदद मिली। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक फोकस दिया इंक्लूसिव ग्रोथ। भारतीय जनता पार्टी का मूल विचारों में से एक विचार है अंत्योदय का विचार। इसमें प्रधानमंत्री जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से इस पे ध्यान दिया, और जब भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली तो जनधन अकाउंट हो, महिलाओं को सम्मान देने के अधिकार के साथ जो टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन हो, पक्के घरों का निर्माण हो, हर घर नल से जल पहुंचाने का भागीरथी संकल्प हो, ये ऐसे बड़े बड़े काम हाथ में लिए और उनको डिलीवर सक्सेसफुली किया कि सबसे बड़ा इंक्लूसिव ग्रोथ का पूरे विश्व में उदाहरण है अपने पास। मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया और इनोवेशन पे फोकस किया और बहुत बड़ा सिंप्लीफिकेशन किया। तो इस तरह की वेल थॉट थ्रू स्ट्रेटजी के कारण आज भारत 6-8% के ग्रोथ ब्रैकेट में कंसिस्टेंटली रहेगा,
1: और अब जो हम कहते थे कि फ्रेजाइल 5 में है, अब वो कहीं पीछे रह गया है। क्योंकि आप रेलवे का कार्यभार काफी समय से संभाल रहे हैं और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में करीब 56 परियोजनाओं की मंजूरी दी गई, जिसमें लगभग 2,38,000 करोड़ रुपए का निवेश है। हम कहते हैं कि जब कभी भी किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, यानी कि आप 1 रुपया खर्च करते हैं तो 3 या 4 रुपए तक उसका फायदा देखने को मिलता है। रेलवे की परियोजनाओं से जो बदलाव हुआ है उसे आप किस तरीके से परिभाषित कर दें?
0: बड़ा फंडामेंटल चेंज आया है। अगर आप 2014 से पहले देखें तो एक साल में 700-800 हजार किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन होता था। आज 6,000-7,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन साल का करके करीब करीब पूरे देश के रेलवे नेटवर्क को 99.4% इलेक्ट्रिफाई कर चुके हैं। 70,000 किलोमीटर के आसपास ट्रैक्स को अपग्रेड किया, जो पुरानी पटरियां थी, हालत बहुत खराब थी, स्लीपर्स टूटे हुए रहते थे, उन सबको रिप्लेस करके करीब 70,000 किलोमीटर को रेलवे ट्रैक्स को अपग्रेड किया। 36,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बने, 1,300 स्टेशन्स का पुनर्निर्माण, नव निर्माण हो रहा है। 1,300 स्टेशन्स में से करीब करीब 250 स्टेशन्स कंप्लीट हो चुके हैं। इस साल के अंत तक 500 स्टेशन कंप्लीट हो जाएंगे। 5,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण एक वर्ष में करना, माने स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क है 5,000 किलोमीटर का, पूरा स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क के बराबर का रेलवे नेटवर्क एक साल में ऐड करना, कई वर्षों पुराने जो प्रोजेक्ट्स पड़े थे जिनको, माने प्रधानमंत्री जी का जो प्रगति का मैकेनिज्म है जिसमें हर महीने वो जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए होते हैं देश भर में वो उन पे ध्यान देते हैं, उनका रिव्यू करते हैं चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट उन सबके साथ मिलके, तो प्रगति मैकेनिज्म के कारण बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आगे आए। ओवरऑल बहुत बड़ा चेंज आया। कई प्रोजेक्ट जैसे ये चिनाब का ब्रिज अगर आप देखते हैं तो चिनाब के ब्रिज को तो लोगों ने एक तरीके से राइट ऑफ ही कर दिया था कि ये बन ही नहीं सकता, और बारामूला से श्रीनगर तक ही रेलवे लाइन का और जम्मू से कटरा तक ही रेलवे लाइन को करके एक तरीके से अबैंडन सा ही कर दिया था इस प्रोजेक्ट को। प्रधानमंत्री जी ने इसको कम्प्लीट किया।
1: सर, हम लोग जब प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो दुनिया भर में एक नीति अपनाई जाती है, उसको हम लोग ट्रिपल पी कहते हैं, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। हमने आपके कैबिनेट ब्रीफिंग में देखा कि जब भी आप किसी परियोजना का ऐलान करते हैं तो आप प्लैनेट और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काफी जोर देते हैं, तो क्या ये समझा जाए कि अब गवर्नमेंट ने भी जो है ट्रिपल पी को पीपल, प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी के फॉर्मूले में बदल दिया है?
0: ये आपने बहुत अच्छा नाम दिया, जरा वापस बताएं क्या कहा आपने?
1: पीपल, प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी।
0: प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा नाम दिया। जनरली पीपीपी माने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं, आपने इसे अच्छा नाम दिया है। डेफिनेटली यस। देखिए, रेलवे सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस 95% लेस है कंपेयर टू द हाईवे सेक्टर। इसलिए बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट बहुत सारा हाईवे से शिफ्ट करके रेलवे की तरफ किया है, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोरिया हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे जर्मनी हो, बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट का फोकस जो आपने कहा प्लैनेट फ्रेंडली कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स में किया है, और भारत में भी इसका बेनिफिट भी साफ दिखाई देता है। माने प्रधानमंत्री जी ने आते ही जो रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन का एक बहुत बड़ा संकल्प लिया उसका रिजल्ट आज दिखाई देता है। आज वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण जो बहुत सारा मिटिगेशन उसका रेलवे के कारण हो पाया, क्योंकि इलेक्ट्रिफाइड है रेलवे पूरी और इलेक्ट्रिसिटी पूरी भारत में हम स्वयं प्रोड्यूस करते ही हैं, आत्मनिर्भर है उसमें पूरी तरह से, तो चाहे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन

0: पीपल ट्रांसपोर्टेशन हो, वी आर एबल टू डू इफेक्टिवली विद इलेक्ट्रीफाइड रेलवे।
1: सर, चूंकि आपके पास एक मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, और इसमें अगर मैं एक, वैसे तो हर उपलब्धि अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन सेमीकंडक्टर एक ऐसा है, सेमीकंडक्टर मिशन के जरिए जो उपलब्धि हासिल हुई है उससे किस तरह का बदलाव आप, चूंकि कहते हैं कि वो भी एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हम बात करें, चाहे एविएशन इंडस्ट्री की बात करें, हर इंडस्ट्री के लिए उसमें सपोर्ट जरूरी होता है, वहां पर प्रगति को आप किस तरीके से मापते हैं?
0: सेमीकंडक्टर फाउंडेशनल इंडस्ट्री है और 1960 से भारत में प्रयास चल रहा था, 1962 से भारत में प्रयास चल रहा था सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लाने का। प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सबने प्रयास किए, आखिर सफलता मिली मोदी जी को। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में प्रेजेंटेशन लेने चालू किए थे, उनका बहुत स्पष्ट था कि हमें इकोसिस्टम पूरा बनाना है, और प्रधानमंत्री जी का यह भी बहुत स्पष्ट था कि हमें 20 साल का सोचना है, हमें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं सोचना है। तीसरा, उन्होंने कहा था कि बहुत ध्यान रखना कि इसमें टैलेंट डेवलपमेंट पे पूरा फोकस रहे। ये तीन चीजें उन्होंने मूल रूप से हमको गाइडेंस दी थी, इसीलिए सेमीकंडक्टर मिशन जब चालू किया, इकोसिस्टम पे फोकस दिया, केमिकल्स, गैसेस, इक्विपमेंट, ये सब के सब इसमें इंडस्ट्री के जितने इकोसिस्टम प्लेयर्स है वो ध्यान से आए। सेकेंड, टैलेंट पे बहुत फोकस किया। टैलेंट में 324 यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर मोस्ट मॉडर्न डिजाइन टूल्स में, सेमीकंडक्टर के डिजाइन टूल्स में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। ये इसका उदाहरण है आपके सामने, देखो सिलचर, चेंबूर, इंदौर, ग्वालियर, शिवपुर, जम्मू, जालंधर, रोपड़, धनबाद, राउरकेला, मेघालय, जम्मू, कैलिकट, पूरे देश भर के स्टूडेंट्स के डिजाइन की हुई है चिप्स। ये चिप्स स्टूडेंट के डिजाइन की हुई, स्टूडेंट्स के द्वारा डिजाइन की हुई चिप्स को सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर किया और स्टूडेंट्स ने उनको वापस बोर्ड में टेस्ट करके, सर्किट में टेस्ट करके उसका यूज भी किया। हाल ही में डेवोस में मैंने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सारे लीडर्स जब बैठे थे, उनको पूछा दुनिया भर में कितनी यूनिवर्सिटीज होगी जहां पे कैडेंस, सिनॉप्सिस जैसे टूल्स को यूज, स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि हमने चिप डिजाइन की और मैन्युफैक्चर की, 20 से ज्यादा नहीं गिन पाए।
1: तो अब अगले, अगर मैं 2 वर्ष में कहूं तो सेमीकंडक्टर में भारत की स्थिति आप कहां देखते हैं?
0: बहुत सिग्निफिकेंट जंप आया है विद इन 4 ईयर्स। जो कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड चिप्स हमारी, ये माइक्रोन के प्लांट से प्रोड्यूस की हुई, ये केन्स के प्लांट से, 28 फरवरी और ये 31 मार्च, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किए थे ये दोनों प्लांट्स। तो मात्र 4 वर्षों में 12 प्लांट प्रोडक्शन स्टार्ट कर देना, डिजाइन का इकोसिस्टम बनना, टैलेंट का पूरा पाइपलाइन रेडी होना, और अगला जो सेमीकंडक्टर मिशन होगा इसमें हमारा फोकस रहेगा डिजाइन को नंबर 1 प्रायोरिटी देना, मशीन मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, केमिकल और गैस मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, और फैब और ATMP यूनिट्स और आएंगे। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह का एफर्ट अभी लगा है और जो सक्सेस अभी तक मिली है, उससे लगता है कि सारी दुनिया भारत को एक ट्रस्टेड पार्टनर की तरह देखती है।
1: सर, एक चीज हमने और भी देखा कि जो PLI इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक के लिए आपने किया, और उसका एक सबसे ज्यादा बड़ा फायदा हमें मोबाइल हेडसेट के मामले में देखने को मिला। एक ऐसा भी दौर था कि जब भारत में हर मोबाइल फोन की बड़ी तादाद जो है वो इम्पोर्टेड होता था या मेड इन कहीं और होता था, अब हम मेड इन इंडिया और असेंबल्ड इन इंडिया की बात करें, तो ये जो PLI स्कीम है, ये मोबाइल हैंडसेट और इलेक्ट्रॉनिक के मामले में किस तरीके से योगदान किया और वहां पर हम आगे का सफर कैसे देख रहे हैं?
0: बहुत फायदा हुआ। सबसे पहले तो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स थे उसकी मैन्युफैक्चरिंग चालू की, फिर कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग चालू हुई, और कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रिसीजन का काम होता है। ये एक क्लासिक एग्जांपल है, आप इसको देखें अगर जी, तो आपको ये एक फुल स्टील का ब्लॉक दिखेगा, राइट, इसमें कोई कहीं कट या कुछ नहीं दिखेगा। ये एक्चुअली इतना प्रिसीजन का मैन्युफैक्चरिंग है, ये एक्चुअल में इतने ज्यादा इसमें कट्स लगे हुए थे इसमें, राइट, इतना प्रिसीजन का काम था। जो सिंगल सॉलिड ब्लॉक दिखता था वो सिंगल सॉलिड ब्लॉक नहीं है। तो इस प्रिसीजन का काम जो स्टूडेंट्स सीख पाते हैं वही मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं आके, इस तरह का काम है। तो अब कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में आफ्टर द सक्सेस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड मॉड्यूल्स, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में 75 फैक्ट्रीज ऑलरेडी अप्रूव हो गई है जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, करीब 250 फैक्ट्री होंगी, और कंपोनेंट का एक्सपोर्ट करना भी भारत ने चालू कर दिया है। प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग के मैं कई एक एग्जांपल आपको दूंगा। रेलवे का जो प्रोपल्शन होता है, ट्रेन का जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, वो प्रोपल्शन है, रेलवे की इलेक्ट्रॉनिक्स। लास्ट ईयर वी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग रेलवे प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी टू जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड US। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। प्रधानमंत्री जी का जो मेक इन इंडिया का थ्रस्ट है, जो फोकस है, वो फोकस अब रिजल्ट दिखाने लगा है, जब ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजें भारत से एक्सपोर्ट होने लगी।
1: तो अगले, अगर मैं PLI के अगले चरण की बात करूं, तो उसमें हम क्या कुछ देख सकते हैं, क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं?
0: बहुत फोकस आएगा कंपोनेंट्स को यूज करके भारत में एक्स्ट्रा डोमेस्टिक वैल्यू

0: करना, डिजाइन की कैपेबिलिटीज बढ़ना और क्वालिटी में जो भारत ने एक पहचान बनाई है उसको एक नए लेवल पे लेके जाना, सिक्स सिग्मा लेवल पे लेके जाना।
1: सर, अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कशन की बात करूं तो दो ऐसे बिल हैं जो एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन के तौर पे कहे जा सकते हैं। एक जैसे आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन है और दूसरा जो है रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। ये दोनों कानून को लेकर के प्रतिक्रिया जैसी भी रही हो, आप इसके काफी मुखर तरीके से, आपने खासतौर पर ऑनलाइन गेमिंग की मैं बात करूं कि उस पर रियल मनी वाले ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के आपने काफी उस पर अपनी बात बहुत ही मजबूती के साथ रखा था। इन दोनों लेजिस्लेशन को आप किस तरीके से देखते हो और इनके जरिए पूरी इंडस्ट्री में किस तरह का बदलाव हुआ है वो अगर बता सकते।
0: ऑनलाइन मनी गेमिंग सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा एक अभिशाप बन के उभरा था। हजारों सुइसाइड्स, परिवार की सारी इनकम एक गेम में नष्ट हो जाना। ऑनलाइन बेटिंग, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग वॉज अ बिग बिग बिग प्रॉब्लम फॉर दिस सोसाइटी। इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कठोर निर्णय लिया और ऑनलाइन मनी गेमिंग को बैन किया। इसका बहुत बेनिफिट मिला है। अभी हाल ही में टाइटन इंडस्ट्रीज के सीईओ का इंटरव्यू था कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के बैन के कारण बहुत सारा जो लोग पैसा वेस्ट कर देते थे मनी गेमिंग में, वो पैसा आज अपने परिवार के लिए अच्छे सामान खरीदने के लिए लगा रहे हैं, घर में बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, हेल्थ केयर के लिए, घर बनाने के लिए, उस सब में लग रहा है। इसी तरह से कई एग्जाम्पल्स है। एक इंडस्ट्री है जिसमें 30,000 लोग काम करते हैं, उनके सीईओ मुझे बता रहे थे कि महीने का पहला हफ्ता करीब करीब ऐसा होता था जिसमें व्यक्ति ने जितनी सैलरी ली वो सारी सैलरी ऑनलाइन मनी गेमिंग में लूज कर देता था, और उसके बाद में एचआर डिपार्टमेंट को फोन करके किसी तरीके से परिवार कैसे चलाए उसकी व्यवस्था में चिंता रहती थी। मतलब उनका कहना था कि उनके जान पहचान के लोगों में महीने में एक सुइसाइड होता था गेमिंग के कारण। वो सारी चीजें फिनिश हो गई। अभी हाल ही में एक जगह से प्रवास से लौटने के टाइम में इंडिगो का कर्मचारी मुझे मिला, उसने कहा कि मोदी जी को धन्यवाद देना कि ऑनलाइन मनी गेमिंग आपने बंद कर दी, कि मुझे 35,000 रुपये मिलती थी सैलरी, पूरे के पूरे 35,000 रुपये मैं गेमिंग में गंवा देता था, और अब मेरा परिवार, मेरा छोटा सा बच्चा है, उसने कहा मेरा शायद 3 या 4 साल का बच्चा है, अब परिवार हमारा खुश है।
1: लेकिन
0: इस तरह के कई एग्जाम्पल्स।
1: लेकिन कई बार ये भी बात कही जाती है कि वीपीएन के जरिए और उन सब के जरिए,
0: ये बात ठीक है आपकी,
1: तो आप कैसे उस पर रोक लगा?
0: ये बात ठीक है। देखो, जब भी इस तरह के कड़े कठोर कानून आते हैं तो 90% प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लेकिन कुछ हद तक लोग गैर कानूनी तरीकों से करने का प्रयास करते हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में ले लो, चाहे ड्रग्स का ले लो, चाहे किसी भी तरह के सेक्टर को ले लो। तो इसमें प्रयास हमारा लगातार रहता है कि इस तरह की जो इलीगल साइट्स हैं उनको बैन करने का। अब तक करीब करीब 10,000 के आसपास इलीगल साइट्स को बैन किया जा चुका है।
1: और सर, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के किस तरीके की?
0: बहुत ही वेल थॉट थ्रू बिल है ये, जिसमें 7 प्रिंसिपल्स के बेसिस पे सिटीजन्स के डिजिटल डेटा को, डिजिटल पर्सनल डेटा को प्रोटेक्शन करने का मेथड है। इंडस्ट्री के साथ बातचीत करके उसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और दुनिया भर में इस बिल के कारण भारत की एक नई पहचान भी बनी, क्योंकि जो प्रिस्क्रिप्टिव मेथड यूरोप ने लगाया उसके कारण उनका इनोवेशन फिनिश हुआ। भारत के इस बिल में इस तरह से बैलेंस आया इनोवेशन और रेगुलेशन में, जिससे कि इनोवेशन भी फ्लरिश कर सके और रेगुलेशन भी प्रॉपर लेवल पे हो सके।
1: अगर मैं आखिरी में आपसे पूछूं कि हमने शुरुआत करी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से, अगर मैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो अगले 3 से 5 सालों में हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कुछ और बदलाव देखेंगे और डिजिटल इंडिया किस तरीके से आगे बढ़ेगा, अगर उसकी रूपरेखा पेश कर सके आप तो?
0: टेलीकॉम सेक्टर में बड़े बदलाव आने वाले हैं। टेलीकॉम सेक्टर में जो सबसे बड़ा चेंज आएगा वो चेंज आएगा रेजिडेंट AI। एक टेलीकॉम टावर करीब 2000 पैरामीटर्स लेता है जिसपे वो काम करता है एक साथ। उन पैरामीटर्स को अभी जो एल्गोरिदम्स होती है वो एल्गोरिदम्स बड़ी प्रिस्क्रिप्टिव टाइप की एल्गोरिदम्स होती हैं, किस सिचुएशन में क्या करना है उस पर डिफाइंड होती है। अगर उसमें AI लगता है हर टावर के अंदर तो सिग्निफिकेंट लेस पावर कंजम्पशन हो पाएगा, सिग्निफिकेंटली बेटर कॉल क्वालिटी हो पाएगी, और डिजिटल इंडिया के नेक्स्ट फेज में टेलीकॉम का जो रोल है वो रोल और टेलीकॉम में AI का रोल वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा।
1: लेकिन ये भी कहा जाता है कि AI बहुत सारी नौकरियां ले सकता है, तो जब हम डिजिटल इंडिया के एक्सपेंशन की बात करेंगे, AI के इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, हमारे लिए एक बड़ी चुनौती नौकरियां नहीं रहेंगी?
0: जितनी IT सेक्टर की इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ हम लगातार एंगेज्ड हैं, किस तरह से नए प्रकार के स्किल्स क्रिएट किए जाए, नए प्रकार की ट्रेनिंग क्रिएट की जाए। अभी हाल ही में NASSCOM के माध्यम से IT इंडस्ट्री ने अपना नया कोर्स का पूरा करिकुलम बना के दिया है, जिसको AICT के माध्यम से लागू करेंगे। जिससे कि टेक्नोलॉजिकल चेंज के कारण जब भी डिसरप्शन आता है, जब भी परिवर्तन आता है, तो उस समय में अगर इंडस्ट्री और एकेडेमिया दोनों आपस में मिल जाए तो उस चेंज को बहुत स्मूथली कर सकते हैं। तो वही प्रयास है आईटी इंडस्ट्री के साथ मिलकर नए तरह के जो जॉब्स क्रिएट होंगे उन जॉब्स के लिए हमारे युवाओं को तैयार करने का प्रयास है।
1: अश्विनी वैष्णव साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सूचना और प्रसारण, रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे पत्रकार शिशिर सिन्हा। ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत। अब सुनिए संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पराशर।
3: नमस्कार। 26 मई 2014 वो दिन था जब सिर्फ सरकार नहीं बदली थी बल्कि करोड़ों भारतवासियों की जो आकांक्षा थी, जो सपने थे, वो भी ऐसा लगा था पूरे होने की कगार पर अब आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए अब जब 12 साल पूरे हो रहे हैं तो फिर ये तो एक सवाल बनता है ना कि भाई 12 साल में इस देश में ऐसा क्या बदलाव आया कि लोग मोदी मोदी मोदी मोदी कर रहे हैं। ऐसी क्या बात हो गई कि नरेंद्र मोदी हर राज्य में विजय पताका फहराते जा रहे हैं, लहराते जा रहे हैं, और भारत जो है वो विश्व स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब अपना एक अलग मुकाम रखकर लाया है। चलिए इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज बेहद ही खास मेहमान है, और वो खास मेहमान जो कि जब नॉर्थ ईस्ट में बात होती थी ना कि कौन चेहरा है तो एक चेहरा सबसे पहले सामने आता था, किरण रिजिजू जी का। और वो अब अल्पसंख्यक मामलों के भी मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, इससे पहले कानून मंत्री रह चुके। तो एक तरीके से 2014 से लेकर अब तक का सफर इन्होंने लंबा तय किया है। बहुत बहुत स्वागत है रिजिजू जी आपका।
4: धन्यवाद।
3: और 12 साल की ये जर्नी, आप इस जर्नी को कैसे देखते हो?
4: ये जर्नी भारत का इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट किए गए थे, मंत्रिमंडल का शपथ लेने से पहले उन्होंने हम 44 लोगों को बुला करके पहला संदेश जो दिया था वो मुझे आज भी याद है। मोदी जी ने कहा था कि हम लोग सिर्फ सत्ता में कुर्सी ऑक्यूपाई करने के लिए नहीं आया है, हम देश का दशा दिशा और जनता गरीब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेने के लिए हम आए हैं। तो तब से लेकर एक एक नीति आप देखेंगे तो भारत को एक नई मोड़ पर लेकर के 2014 के बाद हमने काम शुरू किया है, और गवर्नेंस शासन करने का प्रक्रिया है उसमें बदलाव किया है। और अब तो एक आम सा बात हो गया है कि भारत सरकार कोई भी कदम उठाते हैं उसका लाभ तुरंत जनता तक मिल जाता है। नहीं तो पुराने दिनों में कांग्रेस के शासन के समय तो बातें बहुत होती थी, कई घोषणाएं भी होती थी, बजट में घोषणाएं, रेलवे बजट में नई प्रोजेक्ट का घोषणाएं, और हर समय चुनाव में तो घोषणा ही घोषणा होते थे, गरीबी हटाओ नारा लगाना, ये एक फैशन सा बन गया था उस जमाने में। लेकिन इन 12 सालों में सचमुच में जो काम हुआ है, मैं मानता हूँ कि मोदी जी का कार्यकाल है ये सचमुच में भारत को फिर से एक महान देश, और जो पुराने में भारत का एक नाम था उसको फिर से पुनर्जीवित और फिर से पुनर्स्थापित करने में कामयाब हुआ है।
3: आपने, क्योंकि रिजिजू जी गरीबों वाली बात की ना, पहले का वो स्लोगन एक याद आता है कि जब 1 रुपया भेजते थे 10 पैसे पहुंचते थे, आज 1 रुपया भेजते हैं तो कितने पैसे पहुंचते हैं?
4: आज तो जितना भेजता है उतना ही पहुंचते हैं, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री खुद ही सरेंडर हो गए थे। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और खुद ही सरेंडर करके बोल दिया कि 100 रुपया भेजता है तो 15 रुपया पहुंचते हैं, 1 रुपया में 15 पैसे पहुंचते हैं। आज तो एक बटन दबाया, केंद्र सरकार के ओर से कोई भी स्कीम घोषणा करके उसको सिर्फ बटन दबाना है, डीबीटी के माध्यम से लोगों के खाता में पहुंच जाते हैं और सारा स्कीम जो है समयबद्ध क्रियान्वित हो जाते हैं। इसलिए जो बदलाव आज देखने को मिला है, ऐसे ही सोचने से आपको पता नहीं चलेगा 12 साल पहले देश का हालत क्या था। जब कांग्रेस यूपीए सरकार थे तब हम भ्रष्टाचार से ग्रस्त होकर के, पॉलिसी पैरालिसिस होकर के, और गरीबों को सरकार का कोई भी कार्यक्रम तुरंत कुछ भी नहीं मिलते थे। तो इतना बदलाव जो आया है इसको चंद शब्दों में कहना तो मुश्किल है, मगर इतना तो कह सकता हूँ कि जो हमारा सरकार का थीम है सेवा सुशासन और गरीब कल्याण, तो गरीबों का कल्याण तो हुआ ही है,

0: सेवा तो हम कर ही रहे हैं और सुशासन देश को भला हो रहा है तो हर दृष्टि से हम कामयाब हैं।
1: तो आप कह रहे हो पॉलिसी पैरालिसिस, ये जो नारा और स्लोगन चला था उस वक्त मनमोहन सिंह सरकार के समय में, आज राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज पीएम का नारा चला रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई आपने ऐसा किया तो अब कॉम्प्रोमाइज पीएम वो बोल रहे हैं।
0: कांग्रेस के समय में जो हालत था वो हमको बताने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। देश के जिस आदमी का आप पूछो कांग्रेस जमाने में क्या हालत था, और कांग्रेस के खुद नेताओं से पूछो, कांग्रेस के नेता खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में तो अमेरिका उसका मास्टर थे। चिदंबरम साहब खुद होम मिनिस्टर थे तो खुद ही बताया कि पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला किया और भारत कुछ नहीं कर पाया क्योंकि अमेरिका ने वार्निंग दिया कि कुछ नहीं करना है। फिर चिदंबरम जी ने खुद भाषण दिया था पार्लियामेंट में जब हमारा सत्ता में आए, कहा कि आप डिजिटल इंडिया का बात करते हैं, गांव में गरीब लोगों को डिजिटल से क्या लेना देना है, और जो हमारा पेमेंट होता है यूपीआई के बारे में मजाक उड़ाया था कि गरीब जो सब्जी बेचते हैं सामान बेचते हैं उनका डिजिटल पेमेंट कैसे होगा,
1: वो बैंक के खाते का क्या करेंगे।
0: तो ये सारा चीज जो है वो तो कांग्रेस खुद ही कहते हैं। राजनीतिक दृष्टि पर कुछ भी आप कह लो लेकिन मालिक तो जनता है, तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज तो पूरी तरीके से कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस पार्टी ने देश को ही कॉम्प्रोमाइज करके रख दिया था। आज तो मोदी जी अपना निर्णय लेते हैं देश हित में, और देश हित में किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। तो राजनीतिक दृष्टि से कोई अगर कह देगा तो उसके ऊपर भारी पड़ेगा। स्पेशली कांग्रेस पार्टी तो कुछ कह नहीं सकते, उन्होंने लगभग 60 वर्ष इस देश को शासन किया और देश को बहुत गरीब राष्ट्र बना दिया था। सबको मालूम है हमारा इकोनॉमी, हमारा पर कैपिटा इनकम कांग्रेस के जमाने में कितने नीचे थे। अब हम इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं तो सपना देखता था उस जमाने में कि चाइना 8% 10% से ग्रोथ करते हैं, हम कब चाइना की तरह ग्रोथ करेंगे। और मोदी जी ने हमको चाइना से भी ज्यादा स्पीड में अपने इकोनॉमी का ग्रोथ पाथ को आगे लेके खड़ा कर दिया। तो ये सब देखिए, इसमें तो कोई भी भारतीय फख्र होगा कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हमको मिले हैं जो भारत को एक विकसित भारत की ओर ले जा रहे हैं।
1: आपने क्योंकि चाइना की बात कही ना, तो नॉर्थ ईस्ट जहाँ से आप आते हैं वो समय और वो दौर भी हम लोग देखते थे कि जब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अपनी पहचान का संकट था, पहचान बताने में भी उनको घबराहट होती थी, दिल्ली तक आने में तो उनको बहुत समय लग जाता था, वो बदलाव भी देखा है क्या हमने?
0: बदलाव तो क्या कहेंगे, मैं ये कहूंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा परिवर्तन हो गया है। बदलाव सिर्फ इंक्रीमेंटल बदलाव नहीं है ना, ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव आया है, क्रांतिकारी बदलाव आया है। क्योंकि जो दूर दराज के इलाके हैं वो तो दिल्ली से बहुत दूर महसूस करते थे। जैसे मैं अरुणाचल प्रदेश से आता हूँ, अरुणाचल के लोग दिल्ली जाने के लिए भी सोचना पड़ता था और दिल्ली वाले भी नहीं आते थे, अगर आते तो भी मेहमान की तरह आते हैं। आजकल तो चाहे लद्दाख हो, चाहे मिजोरम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, सब जगह ट्रेन से कनेक्ट हो गए हैं, एयरपोर्ट से सबको कनेक्ट किया गया है और टनल बन रहे हैं, नए नए परियोजनाएं, हाईवे कितना बन गया है, जो 1 इंच हाईवे नहीं बने थे 12 साल पहले आज वहाँ चकाचक हाईवे बन गए हैं, लोग आराम से गाड़ी लेकर के आना जाना हो रहा है। गांव गांव मोबाइल टेलीफोन पहुंच गए हैं, वो भी इतना सस्ता है डेटा कि आप आराम से एक बार आपने अपना डेटा लोड कर लिया फिर आराम से बात करो, आप इंटरनेट में काम करो। उस जमाने में तो फोन करने के लिए भी कितना चिंता करता था कि उसका जो बिल आते थे, तो आजकल तो डेटा भी दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ता भारत में है मोबाइल।
1: लेकिन इसका फायदा या नुकसान, हर गांव में बच्चा कंटेंट क्रिएटर बना हुआ है,
0: वो तो विषय अलग है, उसको एक व्यवहारिक तरीके से क्या करना चाहिए वो विषय अलग है, लेकिन सुविधा सबको मिला है ये बड़ी बात है।
1: जेन जी के बारे में क्या सोच रहे हो आप, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर हम बात कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर और जेन जी खतरा लग रहा है क्या अभी?
0: देखो जेन जी का तो ये शब्द पश्चिमी देशों से उन्होंने क्रिएट किया है, हम तो अपना पारंपरिक जो मानक है हम उसी से चलते हैं। फिर भी एक टाइटल दिया गया है नए युवाओं को, जो एक पर्टिकुलर वर्ग को जेन जी जो कहते हैं, वो आज 18 साल 20 साल 25 साल के लगभग उसमें ज्यादातर लोग हैं,
1: क्योंकि सबकी निगाह उन्हीं पर लगी, राहुल गांधी जेन जी से मिल रहे हैं, अखिलेश यादव जेन जी से मिल रहे हैं, सब जेन जी से।
0: राहुल गांधी जी हो या अखिलेश यादव जी हो, वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। लोकतंत्र में कुछ लोग तो विरोध रहेंगे ही, एक पक्ष होते हैं एक विपक्ष होते हैं, लेकिन आप दिल से अगर नहीं जुड़ेंगे तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर आपको कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में, लगभग 50% वर्ष एक साल में वो विदेश में रहते हैं, वहाँ वो छुट्टियां मनाते हैं रिजोर्ट में, छुप के कहीं कहीं जाते हैं, कभी कभी बताते भी नहीं है, और फिर जब एक बार आएंगे देश में और फिर एक स्टेटमेंट देंगे, मोदी जी को गाली देते हैं, फिर विदेश गायब हो जाते हैं, फिर वापस आएंगे मोदी जी को फिर दूसरा गाली देंगे।

0: फिर विदेश चले जाते हैं। तो ये जो पार्ट टाइम वाला राजनीति है उससे आप लोगों का दिल नहीं जीत सकते हैं और लोगों के अंदर आप नहीं घुस सकते हैं। हमारा तो नेता और हमारा पार्टी 24 घंटे हम तो देश के लिए और देश के जनता के बीच में हम रहते हैं।
1: ये विदेश वाला जो है, विदेश जाने में क्या बुराई है?
0: वो तो अच्छा है, अगर वो विदेश जाते रहे तो कांग्रेस का नैया जो है डूबते रहेंगे। राजनीतिक तौर पर हमको कुछ नहीं कहना है, अगर राहुल गांधी को राजनीति में कोई रुचि नहीं है और विदेश में ही उसका दिल है और अपने विदेशी दोस्तों के साथ ही अगर वहाँ दिल बहलाने के लिए विदेश में रहता है, हमारा क्या आपत्ति है? हम तो इसलिए कह रहे हैं कि वो कभी कभी वापस आते हैं भारत में, अपने देश में आ करके फिर गाली देते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, चुनाव के बीच में भी वो विदेश चले जाते हैं, तो नुकसान तो कांग्रेस का है, हमारा क्या नुकसान है?
1: अब वो कांग्रेस पार्टी कहती है भाई सरकार आपकी, आप पता करो विदेश में वो क्या करते हैं क्या नहीं करते।
0: देखो, किसी का जिंदगी में कौन क्या खाता है पीता है, कहाँ रहते हैं, किसके साथ में वो घूम रहे हैं, इतना हमारा रुचि नहीं है। हमारा सिर्फ इतना तक सीमित ध्यान जाता है कि वो देश के विरोधी ताकतों के साथ में मिलना जुलना होते रहते हैं विदेश में, इससे हम आपत्ति है, हम उसको आपत्ति करते हैं।
1: आपको लगता है कि ये जो विदेश वाला राहुल गांधी का है, उसके बाद वो आते हैं पार्लियामेंट में फिर वो एक एजेंडा बोलते हैं, कहीं ना कहीं वही एजेंडा वो लेकर के आते हैं क्या?
0: जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो झलकते ही है, क्योंकि देश को कोसते हैं, देश के प्रधानमंत्री को कोसते हैं, तो उससे पता चलता है कि वो देश के विरुद्ध जो लोग काम करते हैं उनसे काफी इन्फ्लुएंस हुए हैं। उदाहरण के तौर पर जो राहुल गांधी जी कहते हैं पार्लियामेंट में वो सेम चीज पाकिस्तान कहते हैं, और जो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल और इन जैसे लोग जो भी नैरेटिव चलाते हैं उसके तालियां पाकिस्तान में बजता है, तो ये तो कहीं ना कहीं एक तरीके से तो जुड़े हुए हैं। अब मैं इसको किस तरीके से समझाऊं देशवासियों को कि जो विपक्ष है वो भी तो देश के लिए सोचना चाहिए ना। विपक्ष का काम ये नहीं है कि देश के खिलाफ काम करे, वो सरकार को गाली दे सकते हैं, सरकार के खिलाफ उनका बोलने का अधिकार है, और लोकतंत्र में सरकार के खिलाफ मजबूती से अगर विपक्ष खड़ा रह करके निगरानी रखेंगे, कोई करप्शन हुआ है क्या, कहीं कोई नीति में भूल चूक हुआ है क्या, अगर उसमें विपक्ष हमला करते हैं तो ये तो स्वागत है, लेकिन कोविड का समय, ये इमरजेंसी समय है, तब भी प्रधानमंत्री को गाली देंगे, देश के खिलाफ काम करेंगे। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, देश गर्व है हमारा सेनाओं के, जो देश के प्रति उन्होंने जो बल दिखाया है उसको भी विरोध करते हैं, सवाल उठाते हैं। और अभी ईरान अमेरिका इसराइल का लड़ाई के चलते तेल गैस आने में कष्ट हो रहे हैं, ये तो एक तरीके से एक आपातकालीन टाइप का सिचुएशन हरमूज में पैदा हो गया है मिडिल ईस्ट में, तो उससे हमको दिक्कत हो रहे हैं। तो ऐसा में तो देश के साथ खड़ा होना चाहिए, ऐसा में भी देश का खिलाफ बोलते रहते हैं और मोदी जी का खिलाफ बोलते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आमतौर पर विरोध जो है सरकार के खिलाफ आप जितना कर सकता है कर सकते हैं, उसमें लोकतंत्र में कोई रुकावट नहीं है, लेकिन जब इमरजेंसी सिचुएशन होता है, जब एक विशेष परिस्थिति होता है, ऐसे समय में सबको एक साथ खड़ा होना होता है। जैसे जब 1962 में लड़ाई हुआ चीन के साथ, तो पूरा देश एकजुट खड़ा हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी में टूट हुआ, एक ग्रुप जो है चीन का समर्थन में आया, वो कम्युनिस्ट भाग हो गया। 1965 हो, 71 हो, या कारगिल के समय में भी हो, हर समय इस तरीके के जो विशेष परिस्थिति आते हैं, जब देश किसी से लड़ रहे हैं, दुश्मनों के साथ में देश मुकाबला कर रहे हैं, ऐसा समय में पूरा देश एकजुट खड़ा रहना चाहिए, ये तो सब मानते हैं, लेकिन पहली बार मैंने देखा है ऐसा विपक्ष आज का दिन में पैदा हो गया है कि देश किसी विपत्ति से जूझने के लिए, कोई आपातकाल स्थिति को नियंत्रण करने के लिए जब काम कर रहे हैं, ऐसे समय में सरकार के खिलाफ देश के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, इससे मैं बहुत दुखी हूँ।
1: संसद में आपको लगता है ये जो बर्ताव है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है इतने समय में?
0: देखिए, राहुल गांधी जी को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, मुझे लगता है, मैं इतने सालों से उसको देख रहा हूँ। पहले तो मैंने सोचा था कि वो हल्के फुल्के से इधर उधर घूमते रहते हैं, अनाप शनाप बात करते रहते हैं, लेकिन जब वो नेता प्रतिपक्ष बने तो मैंने सोचा कि वो नियंत्रित होंगे, लेकिन और बिगड़ गया। नेता प्रतिपक्ष होने के बाद तो और भी उसका भाषा पूरा बिगड़ गया है। अब तो पार्लियामेंट में जब बोलते हैं तो नियम के बाहर बोलते हैं और गाला गाली पे उतर जाते हैं, दिन भर नारा लगाते रहते हैं, अपना एमपीओ को जो पार्लियामेंट हाउस के बाहर गेट में खड़ा करके वही दिन भर वहाँ तमाशा कराते रहते हैं। तो एमपी इसके लिए नहीं आया, एक नॉर्मलसी कर दिया। अब कांग्रेस के एमपी लोग भी ये सोचने लग गया कि वो तो पार्लियामेंट में इसलिए चुन के आए कि वो इस तरह का हरकतें करना है, उसी को अपना दायित्व मान लिया है, संसद के अंदर में बोलना, अपना

लिटरेसी के बारे में बोलना और सरकार का नीति में खामियां हैं तो उसको उजागर करना और फिर जहां जरूरत है सुझाव भी दे सकते हैं या आप उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन वो संसद में बोलना, वहां प्रदर्शन करना, ये सारा चीज जो है लोग

0: मैं कह सकता हूं कि देश हित में जो भी आपको दायित्व मिला है उसको पूरी तरह से निभाना है, इसलिए हम अपना ड्यूटी से प्रतिबद्ध हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी, आपने इतनी बेबाकी से ये सब बात कही। और जाहिर तौर पर देखिए 2014 से अभी तक की ये जो जर्नी है, इसीलिए हमने इसको भारत रीलोडेड का नाम दिया है, क्योंकि इस वक्त नए भारत की बात हो रही है और नए भारत का जो सपना भारतवासियों ने देखा था वो कितना पूरा हुआ, इस पर हमसे खास बातचीत की। नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार कर रही थी रीमा पराशर।

0: ए आर रहमान, जावेद अली और मोहित चौहान की आवाज़ों में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म रॉकस्टार से। इरशाद कामिल के लिखे बोल और ए आर रहमान का संगीत। श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण होगा इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
2: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। और रक्षा मंत्रालय दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
2: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
1: अफगानिस्तान की जनता के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा सहायता से संबंधित उपायों के माध्यम से अफगानिस्तान की सहायता जारी रखे हुए है। श्री जायसवाल ने बताया कि एमटी मैरीमैक्स जहाज के चालक दल के सभी 24 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
2: जब ये हादसा हुआ उसमें तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहां ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया। तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 2400 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहां से निकाला गया। ये सभी नागरिक हमारे नागरिक सुरक्षित हैं।
1: विदेश मंत्री डॉ

0: डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने विदेश नीति और कूटनीति, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई हैं।
1: The amount of time we have spent
2: हमने उन देशों के साथ लगातार बातचीत जारी रखी जो तेल, गैस, एलएनजी, एलपीजी तथा उर्वरकों के उत्पादक हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित का विषय है। इसलिए विदेश नीति पूरी तरह से उस समय के प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप संचालित होती है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसे स्थितियां, दुनिया भर को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिन के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर कोई दबाव नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों के आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
3: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ से ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पे एक उच्च स्तरीय मीटिंग देने वाले हैं।
1: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी अधिनियम जी रामजी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
4: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया। 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं।
5: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
6: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
5: सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
7: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रह रहा हूँ।
5: सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
8: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित 3 विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों का आज स्वीकृति पत्र जारी किए। ये संस्थान ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय हैं। ये विश्वविद्यालय महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये विश्वविद्यालय व्यवसाय, कंप्यूटर विज्ञान और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में कार्यक्रम उपलब्ध कराएंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने कल पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में बिहार, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल लू चलने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों के मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. India expresses grave concern over killings of 30 civilians in deadly crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Accuses Islamabad of using fake news to mask severe human rights violations. External Affairs Minister S. Jaishankar says foreign policy under Modi-led government during past 12 years is in sync with its core national goals. Prime Minister Narendra Modi holds telephone conversation with Emir of Kuwait on evolving security situation in West Asia. Government gives financial support of 1.23 lakh crore rupees to oil marketing companies to ease burden of rising crude oil prices. Home Minister Amit Shah inaugurates land port management system to digitize and streamline cargo processing and passenger movement across land borders, and Defence Ministry to establish 250 megawatt solar power project with battery energy storage system in Uttar Pradesh for strengthening long-term energy security. And now the news in detail. The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi, spokesperson at the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses.
10: A pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are several reports of police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses.
9: Over 30 people have been killed and around 200 others have been injured in clashes between protesters and security forces in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Tensions in the region escalated after authorities banned the Joint Awami Action Committee, a prominent civil society alliance that has spearheaded protests over economic and political grievances in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India's foreign policy is now in sync with its core national goals. The minister said that foreign policy and diplomacy have got integrated with priorities of the government, focusing on social security and national development. Dr. Jaishankar made these remarks in an interview given to DD News. He said that national security in the present time is not just about protecting the borders. It includes security in terms of economy, energy, health, fertilizer and cyber strength.
11: The amount of time we have spent engaging countries who are oil providers, gas providers, within that LNG, LPG, fertilizer, manufacturers, traders, because this is a national priority. So the foreign policy continuously is in sync with what are actually the prime national goals of the moment.
9: Dr. Jaishankar said that India is safeguarding its deep strategic and economic interests in the Gulf region while also maintaining its independent ties with Iran, the United States and Israel. Dr. Jaishankar also emphasized India's balanced engagement across key regions amid growing geopolitical tensions. Prime Minister Narendra Modi held a telephone conversation this afternoon with the Emir of Kuwait, Sheikh Meshel Al Ahmad Al Jaber Al Sabah. The two leaders exchanged views on the evolving security situation in West Asia. The Prime Minister expressed deep concern over the escalation of tensions and reaffirmed India's strong condemnation of attacks on Kuwait's sovereignty and territorial integrity. He reiterated the call for de-escalation, dialogue and diplomacy for the earliest restoration of peace and stability. Mr. Modi thanked Emir of Kuwait for his personal attention to the continued well-being and the safety of the large Indian community in Kuwait. Prime Minister Narendra Modi will be on a six-day official visit to France and Slovakia from Saturday. In the first leg of the visit, the Prime Minister will visit Nice for a bilateral meeting with President Emmanuel Macron on Sunday. Both leaders will review the full spectrum of the India-France bilateral relationship, which was elevated to the level of a special global strategic partnership earlier this year. On the second leg of his visit, Mr. Modi will pay a state visit to the Slovak Republic from 14th to the 16th of this month. This will be the first ever visit by an Indian Prime Minister to Slovakia since its independence in 1993. On the third leg of the visit, the Prime Minister will participate in the G7 summit in Evian, France, on the 16th and 17th of this month. The BRICS Agriculture Conference kicked off in Indore, Madhya Pradesh today, bringing together representatives from 21 countries to discuss some of the most pressing challenges facing agriculture worldwide. India, which holds the BRICS presidency this year, is hosting the conference. The conference, running till 13th of June, will see wide-ranging discussions on food security, agricultural trade, climate-friendly farming practices, and innovation in the agriculture sector. The idea is to build stronger cooperation among member nations and find common solutions to shared challenges. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today visited the National Testing Agency headquarters and reviewed the preparations for the re-NEET exam, which is going to be held on the 21st of this month. Talking to reporters outside the NTA headquarters in New Delhi, the minister said the center has ensured that all necessary measures are being taken while maintaining complete confidentiality, from the preparation of the question papers to all subsequent procedures. Mr. Pradhan said this includes ensuring that examination materials reach the examination centers accurately and on time.
12: From setting the question papers through all subsequent stages, it is the responsibility to ensure that question papers reach the examination centers on time. A meeting of secretaries from relevant departments was held under the leadership of the cabinet secretary. I have also written to the chief ministers of all states. While they have cooperated in the past, I have requested even greater attention this time.
9: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our example at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. The central government has given financial support of approximately 1.23 lakh crore rupees to the oil marketing companies to support the consumer from the burden of rising crude oil price. According to government sources, the financial support has been provided to oil marketing companies is for the initial 78 days of the West Asia conflict. This financial support includes the excise duty cut. The sources said that

0: अनुपम मिश्रा आकाशवाणी न्यूज दिल्ली।
1: In men's cricket, India A defeated host Sri Lanka A by 8 runs in the opening fixture of the Tri-Nation A series at the Rangiri Tambula International Stadium today. IMD has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India, sub-Himalayan West Bengal and Karnataka for tomorrow. Heavy rainfall is also expected over Bihar, Kerala, Mahe, Konkan, Goa, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Telangana during the next 2 days. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India expresses grave concern over killing of 30 civilians in deadly crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, accuses Islamabad of using fake news to mask severe human rights violations. External Affairs Minister S. Jaishankar says foreign policy under Modi-led government during past 12 years is in sync with its core national goals. Prime Minister Narendra Modi holds telephone conversation with Emir of Kuwait on evolving security situation in West Asia. Government gives financial support of 1.23 lakh crore rupees to oil marketing companies to ease burden of rising crude oil prices. Home Minister Amit Shah inaugurates land port management system to digitize and streamline cargo processing and passenger movement across land borders. And Defence Ministry to establish 250 megawatt solar power project with battery energy storage system in Uttar Pradesh. That is all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। भारत ने पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुजाहिरीन पर की गई सख्त कार्रवाई के दौरान 30 शहरियों की मौत पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। भारत ने इस्लामाबाद पर फर्जी खबरों की आड़ में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को छुपाने का इल्जाम आयद किया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में गुज़िश्ता 12 साल के दौरान मुल्क की खारजा पॉलिसी अपने असल कौमी अहदाफ से हम आहंग रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया की बदलती हुई सलामती की सूरत हाल पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की है। मरकजी हुकूमत ने खाम तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से सारिफीन को राहत देने के मकसद से तेल मार्केटिंग कंपनियों को तकरीबन 1.23 लाख करोड़ रुपए की माली मदद फराहम की है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जमीनी सरहदों पर कार्गो कार्रवाई और मुसाफिर आमद और रफ्त को आसान बनाने और उसे डिजिटाइज करने के मकसद से लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह किया। वजारत दिफा तवानाई की यकीनी फराहमी के तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी तवानाई जखीरा निजाम वाला 250 मेगावाट शमसी बिजली प्रोजेक्ट कायम करेगी। अब खबरें तफसील से। भारत ने पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुजाहिरीन पर की गई सख्त कार्रवाई के दौरान 30 शहरियों की मौत पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। भारत ने इस्लामाबाद पर फर्जी खबरों की आड़ में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को छुपाने का इल्जाम आयद किया है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि नई दिल्ली पाकिस्तान से आ रहे वीडियोज और फर्जी खबरों के पैटर्न पर निगाह रखे हुए है। जनाब जायसवाल ने इन्हें पाकिस्तान की अपनी नाकामियों को छुपाने और इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने की कोशिश करार दिया है। पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में हिफाजती दस्तों और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और तकरीबन 200 जख्मी हो गए। हुकाम की जानिब से सिविल सोसाइटी के सरकर्दा इत्तेहाद ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC पर पाबंदी आयद करने के बाद खित्ते में कशीदगी बढ़ गई है। JAAC ने पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में इक्तसादी और सियासी वजूहात की बिना पर मुजाहिरों की शुरुआत की है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की खारजा पॉलिसी अब अपने बुनियादी कौमी मकासद के साथ हम आहंग है। जनाब जयशंकर ने कहा कि खारजा पॉलिसी और सिफारती अमल अब हुकूमत की जानिब से समाजी तहफ्फुज़ और कौमी तरक्की पर तवज्जो मरकूज करने को तरजीह देने के मकसद के साथ मुंसलिक हो गया है। डॉक्टर जयशंकर डीडी न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती आज के दौर में महज सरहदों की हिफाजत करना ही नहीं बल्कि इसमें माशी, तवानाई, सेहत,

0: फर्टिलाइजर्स और साइबर ताकत का तहफुज भी शामिल है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत खलीजी खित्ते में अपने मजबूत स्ट्रेटेजिक और इक्तसादी मफादात का तहफुज करने के साथ साथ ईरान, अमरीका और इसराइल के साथ अपने आजादाना ताल्लुकात भी बरकरार रखे हुए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ती हुई जुग्राफियाई सियासी कशीदगी के दरमियान कलीदी खित्तों में भारत के मुतवाजन रवाबित पर भी जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की गुज़िश्ता 12 साल के दौरान दूरंदेश क़यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के तहत भारत में खातिरख्वाह तब्दीली आई है। इस मुद्दत के दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी न्यूज़ गुज़िश्ता 12 बरसों के दौरान अहम शोबों में हुकूमत की तरफ से किए गए इकदाम के बारे में एक खसूसी फीचर पेश कर रहा है। आज हम हिफ्ज़ान सेहत की खिदमात से मुतालिक हुकूमत की जानिब से किए गए इकदामात के बारे में बात करेंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में हुकूमत ने मुल्क के हिफ्ज़ान सेहत के निज़ाम को नुमाया तौर पर मुस्तहकम किया है। अब ये खिदमात ज्यादा काबिल रसाई, कम खर्च और मेयारी हो गई हैं। साल 2018 में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दुनिया का सबसे बड़ा सेहत बीमा प्रोग्राम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की थी। इस स्कीम के तहत सामाजिक इकतसादी तौर से पसमानदा कुंभों को सालाना 5 लाख रुपए तक मुफ्त सेहत बीमा की सहूलत फराहम की जाती है। आकाशवाणी की खबरों के शोबे से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने कहा कि इस कार्ड की मदद से अब वो प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
2: फायदा होगा, क्या होता है, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे और कार्ड से क्या होता है मेरा परिवार भी स्वस्थ रहेगा और अच्छा इलाज हो सकेगा।
1: इसके अलावा हुकूमत ने हर एक नजदीकी मकाम पर बुनियादी सेहत की सहूलत फराहम करने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी कायम किए हैं। इसके अलावा तिब्बी कॉलेजों की तादाद 387 से बढ़ाकर 818 हो गई है। नीज साल 2025 तक 942 आयुष इदारे भी शुरू किए जा चुके हैं। आकाशवाणी से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर कुवैत के अमीर शेख मिशल अल अहमद अल जाबिर अल सबा से टेलीफोन पर बात की। दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशिया में बदलती हुई सलामती से मुतालिक सूरत हाल पर नजरियात का तबादला किया। वज़ीर आज़म ने मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी पर तश्वीश का इजहार किया और कुवैत के इक्तदार आला और इलाकाई सालमियत पर हमलों की भारत की जानिब से सख्त मजम्मत का इरादा किया। उन्होंने कशीदगी कम करने, जल्द अज जल्द अमन इस्तेहकाम की बहाली के लिए मुज़ाकरात और सिफारती अमल शुरू किए जाने का इरादा किया। जनाब मोदी ने कुवैत में कसीर तादाद में भारतीय बिरादरी की बहबूद और सेफ्टी के लिए मुसलसल ज़ाती तवज्जो के लिए कुवैत के अमीर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हफ्ते के रोज फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 रोजा सरकारी दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के पहले मरहले में वज़ीर आज़म मोदी इतवार के रोज फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों से नाइस शहर में दो तरफा मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों रहनुमा भारत फ्रांस दो तरफा ताल्लुकात के सभी पहलुओं का जायजा लेंगे। इन ताल्लुकात को इस साल खुसूसी आलमी स्ट्रेटेजिक साझेदारी का दर्जा दिया गया है। अपने दौरे के दूसरे मरहले में वज़ीर आज़म 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया जमहूरिया के सरकारी दौरे पर रहेंगे। साल 1993 में स्लोवाकिया की आजादी के बाद से किसी भारतीय वजीर आजम का स्लोवाकिया का यह पहला दौरा होगा। दौरे के तीसरे मरहले में वजीर आजम 16 और 17 जून को फ्रांस के एवियन में G7 चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ये आकाशवाणी है। मरकजी हुकूमत ने खाम तेल की बढ़ती हुई कीमतों के बोझ से सारफीन को राहत देने के मकसद से तेल मार्केटिंग कंपनियों को तकरीबन 1.23 लाख करोड़ रुपए की माली मदद फराहम की है। हुकूमती जराए के मुताबिक तेल मार्केटिंग कंपनियों को दी गई ये माली मदद मगरबी एशिया तनाजे के पहले 78 दिनों के लिए है। इस साल माली मदद में एक्साइज ड्यूटी कटौती भी शामिल है। जराए ने बताया कि सोने की बरामद में कमी देखी गई है। जराए ने यह भी कहा कि कम अज कम एक साल तक सोना ना खरीदने की वजीर आजम की अपील और इम्पोर्ट ड्यूटी में किया गया इजाफा सोने की बरामद में कमी की वजह बना है। जराए ने मजीद बताया कि मईशत की तरक्की दबाव का शिकार नहीं है और तेज रुझान इस बात का इशारा है कि घरेलू मईशत से मुल्क को मदद मिल रही है। जराए के मुताबिक बैन अल-अक़वामी बाजार में खाद की कीमतों में काबिल जिक्र इजाफा हुआ है, लेकिन हुकूमत किसानों को बेहद रियायती कीमतों पर खाद फराहम कर रही है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भारत की जमीन

0: सरहदों पर कार्गो कार्रवाई और मुसाफिर आमदोरफ्त को आसान बनाने और उसे डिजिटाइज करने के मकसद से आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS विनिमय का इफ्तिताह किया। ये निजाम जमीनी बंदरगाहों को मरकजी निजाम के तहत मरबूत करने की कार्रवाईयों के लिए डिजाइन किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। ये हवाई अड्डों और बंदरगाहों के लिए पहले से मौजूद डिजिटल निजाम को जमीनी बंदरगाहों के लिए दस्तयाब कराते हुए लॉजिस्टिक्स और इंजिबाती मालूमात के महफूज और हकीकी वक्त पर मबनी तबादले को मुमकिन बनाएगा। जनाब शाह ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ये पहल जदीद और टेक्नोलॉजी पर मबनी सरहदी इंतजाम के निजाम की तामीर की जानिब अहम कदम है। जनाब शाह ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म विकसित भारत 2047 के नजरिए से हम आहंग है और ये तिजारत में आसानी, कनेक्टिविटी और कौमी सलामती को मुस्तहकम करेगा।
1: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
0: जनाब शाह ने जोर देकर कहा कि हुकूमत डिजिटल टेक्नोलॉजी और मौसर इंतजामी निजाम को अपनाने के जरिए सरहदी सलामती के तई अहद बस्ता है। वजीर दाखिला ने मजीद कहा कि विनिमय प्लेटफॉर्म का आगाज सरहदी सलामती को मजीद मुस्तहकम करने और जमीनी बंदरगाहों की मजमू कारकर्दगी को बेहतर बनाने की मुल्क की कोशिशों में अहम संग मील साबित होगा। वजारत दिफा ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर एक्स कंटोनमेंट में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS के साथ 250 मेगावाट के शमसी तवानाई प्रोजेक्ट के कयाम को मंजूरी दे दी है। ये निजाम महकमा दिफा की तकरीबन 850 एकड़ खाली जमीन पर कायम किया जाएगा। ये अपनी नौयत का पहला प्रोजेक्ट है जिसे वजारत दिफा के जरिए अंजाम दिया जा रहा है, जिसे महकमा दिफा की खाली जमीन पर बड़े पैमाने पर शमसी तवानाई पैदा करने की सहूलत के लिए BESS का तावुन हासिल है। हुकूमत की रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की मनरेगा से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की जानेब आसान मुंतकली के लिए 95,692 करोड़ रुपए का उबूरी बजट मुख्तस करने की तजवीज रखी है। VBG रामजी कानून मुल्क भर में 1 जुलाई 2026 से नाफिज हो जाएगा। देही तरक्यात के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के देही तरक्यात के वजीरों के साथ आज नई दिल्ली में वर्चुअल मीटिंग के इनका के बाद मीडिया से बात करते हुए ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस कानून के निफाज के पेश नजर रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से सभी जरूरी तैयारियां करने को कहा है। ब्रिक्स जरई कॉन्फ्रेंस आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गई है। इस कॉन्फ्रेंस में 21 मुल्कों के नुमाइंदे यकजा होंगे और दुनिया भर में ज़राअत को दरपेश कुछ अहम तरीन चैलेंजों पर तबादला ख्याल करेंगे। कॉन्फ्रेंस की मेजबानी भारत कर रहा है, जिसके पास इस साल ब्रिक्स की सदारत भी है। 13 जून तक चलने वाली ब्रिक्स ज़रई कॉन्फ्रेंस के दौरान खुराक की यकीनी फराहमी, ज़रई तिजारत, माहौल दोस्त ज़रई तरीक़ेकार और ज़राअत के शोबे में जिद्दत तराजी जैसे मौजूदात पर वसी तर तबादला ख्याल किया जाएगा। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA हेडक्वार्टर का दौरा किया और इस माह की 21 तारीख को नीट के दोबारा इम्तहान मुनक़द कराने से मुतालिक तैयारियों का जायजा लिया। नई दिल्ली में NTA हेडक्वार्टर के बाहर नामानिगारों से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि मरकज ने इस बात को यकीनी बनाया है कि सवालिया पर्चों की तैयारी से लेकर इम्तहान के बाद के तमाम मराहिल तक मुकम्मल राजदारी बरकरार रखते हुए तमाम जरूरी इकदाम किए जा रहे हैं। जनाब प्रधान ने कहा कि इसमें ये यकीनी बनाना भी शामिल है कि इम्तिहान के मवाद दुरुस्त तरीके से बर वक्त इम्तिहान के मराकज तक पहुंचे। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में हुकूमत प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के जरिए हमल के दौरान खवातीन के लिए सेहत की देखभाल के निजाम को लगातार मुस्तहकम कर रही है। जनाब नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुल्कगीर पैमाने पर तकरीबात का आगाज करते हुए ये बात कही। भारतीय महकमा मौसमियात ने शिमाल मशरकी भारत, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल और कर्नाटक के बाद हिस्सों में कल के लिए शदीद से इंतहाई शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिहार, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और तेलंगाना में भी अगले 2 दिन के दौरान शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे के मुताबिक शिमाल मशरकी रियासतों के बकिया हिस्सों में जुनूब मगरबी मानसून ने मजीद पेशकदमी कर ली है। मर्दों के क्रिकेट में भारत ए ने आज रंगेरी दम्बोला

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम कहकशां।

आकाशवाणी भोपाल की जानिब से हफ्तावार उर्दू प्रोग्राम कहकशां को लेकर हाजिर हूं। मैं आपका दोस्त जावेद इस प्रोग्राम में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। सामेईन, आज के कहकशां प्रोग्राम में महफिल समा सीरीज के तहत हम बात करेंगे फर्द की जिंदगी में तौबा की अहमियत मौजू पर, और साथ ही लुत्फानंदोज होंगे मखमली आवाजों वाले गुलूकारों की कव्वालियों से। दोस्तों, किसी बर्तन में कोई अच्छी चीज डालने के लिए जरूरी है कि पहले उसको अच्छी तरह साफ कर लिया जाए और उसमें कोई गंदगी बाकी न रहे। इंसान का दिल भी एक बर्तन की तरह है, जिसकी इस्लाह से इंसान का पूरा वजूद सालेहियत के सांचे में ढल जाता है और जिसके बिगाड़ से उसका पूरा वजूद बिगाड़ का शिकार हो जाता है। जैसे जाहिरी गंदगी और मैल कुचैल से इंसान का जिस्म और उसका लिबास गंदा हो जाता है, इसी तरह गुनाह भी एक रूहानी गंदगी है जो कल्ब के पैमाने को नापाक और गंदा कर देता है, और इसको साफ करने का तरीका तौबा है। परवरदिगार की शान करीमी है कि इंसान कितना भी बड़ा गुनाह करे, तौबा से गुनाह का दाग धुल जाता है। यहां तक कि अगर कोई शख्स कुफ्र और शिर्क में मुब्तिला हो और वो उससे तायब हो जाए, तब भी उसको अपने जुर्म से मुआफी मिल जाती है। दरअसल इंसान खैर और शर का मजमुआ है, ये नेकियों पर कादिर है लेकिन बुराइयों से आजिज नहीं। ना फरिश्ता है कि बुराई का ख्याल तक दिल में ना आए, और ना शैतान है कि जिलालत और गुमराही से कभी दिल खाली ही ना हो। इसलिए उसे इस इम्तिहान गाह में रखा गया है कि देखा जाए कि उसकी नेकियां बुराइयों पर फतह पाती हैं या बुराइयां नेकियों पर गालिब आती हैं। अंबिया के सिवा कोई इंसान नहीं जो गलती और खता से यकसर महफूज हो। गलती करना इंसान की फितरत में है, अगर ये ना हो तो इंसान फरिश्ता बन जाए। अंबिया के बाद सबसे कामिल इंसान वो लोग होते हैं जिनको अंबिया की रफाकत

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम कहकशां, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए। ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 10 बज रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम में। आइए सबसे पहले सुनते हैं मिस्टर नटवरलाल फिल्म का ये गीत। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाजें हैं। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन ने।

शैलेंद्र का लिखा यह अगला गीत सुनिए फिल्म गाइड से। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं। इस गीत को संगीत दिया है SD बर्मन ने।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का।
1: अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच सच देना। डन
2: डन
1: डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है?
2: क्या?
1: मैंने पूछा, बागों में बाहर है?
2: है।
1: गर्मियों के निहार है?
2: हाँ, है।
1: तो तुमको मुझसे प्यार है?
2: नहीं।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म आराधना से। आनंद बख्शी की शब्द रचना और संगीत था SD बर्मन का। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म लव स्टोरी से। लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ें हैं, RD बर्मन का संगीत और आनंद बख्शी के बोल।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुंचा रहे हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म गोरा और काला का यह गीत, आनंद बख्शी की शब्द रचना और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

एसएच बिहारी का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। कश्मीर की कली फिल्म के इस गीत को संगीत दिया था ओपी नैयर ने।

श्रोताओं, फिल्म शागिर्द कैसे गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। अब आपको सुनवा रहे हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। इसमें आज सुनिए संगीता गोस्वामी का ख्याल गायन, राग है मारू बिहाग।

0: आपने सुना शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी।
1: राग तेलंग
2: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्व होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीत में संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
3: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
2: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, भारत दुनिया को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनिमय संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
4: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ से ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पे एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
2: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश के कश्मीर और जम्मू डिवीजन के शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन क्षेत्रों को कवर करते हुए 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा की तिथियां जारी कर दी हैं। विस्तृत और ताजा जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jkbose.jk.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिनों के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: This is Akashvani, the news read by Renuka. The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi, spokesperson at the Ministry of External Affairs Randhir Jaiswal said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses.
5: A pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are several reports of police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses.
0: Over 30 people have been killed and around 200 others have been injured in clashes between protesters and security forces in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Tensions in the region escalated after authorities banned the Joint Awami Action Committee, a prominent civil society alliance that has spearheaded protests over economic and political grievances in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India's foreign policy is now in sync with its core national goals. The minister said that foreign policy and diplomacy have got integrated with priorities of the government focusing on social security and national development. Dr. Jaishankar made these remarks in an interview given to DD News. He said that national security in the present time is not just about protecting the borders, it includes security in terms of economy, energy, health, fertilizer and cyber strength. Dr. Jaishankar said that India is safeguarding its deep strategic and economic interests in the Gulf region while also maintaining its independent ties with Iran, the United States and Israel. Prime Minister Narendra Modi held a telephonic conversation this afternoon with the Emir of Kuwait, Sheikh Mashal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. The two leaders exchanged views on the evolving security situation in West Asia. The Prime Minister expressed deep concern over the escalation of tensions and reaffirmed India's strong condemnation of attacks on Kuwait's sovereignty and territorial integrity. He reiterated the call for de-escalation, dialogue and diplomacy for earliest restoration of peace and stability. Mr. Modi thanked Emir of Kuwait for his personal attention to the continued well-being and the safety of the large Indian community in Kuwait. World leaders have congratulated Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest-serving elected Prime Minister of the country. They paid tribute to Prime Minister's transformative governance, his advocacy for the Global South, and his vision of an inclusive and economically dynamic India. President of Sri Lanka, Anurag Kumara Dissanayake, in a letter said that the milestone is a testament not only to Mr. Modi's years in office, but also to the trust and confidence that the people of the world's largest democracy have repeatedly placed in his leadership. Prime Minister of Papua New Guinea, James Marape, in his personal video message, described Prime Minister Modi as a role model and an example of leadership. Further, Prime Minister of Trinidad and Tobago, Kamala Prasad Bisesar, noted that under the leadership of Prime Minister Modi, India has evolved as a leading voice on global matters. Union Home Minister Amit Shah today inaugurated the Land Port Management System, LPMS Vinimay, in New Delhi, marking a major step towards digitizing and streamlining cargo processing and passenger movement across India's land borders.
6: Addressing the gathering, Mr. Shah said the initiative reflects the government's commitment towards building a modern, technology-driven water management system. He said, the platform is aligned with the vision of Vikasit Bharat 2047 and will strengthen trade facilitation, connectivity and national security. And with that, we end this news bulletin.

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी यह सभा यहीं विराम लेती है। कल प्रातः 5:53 पर हमारे कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।